नमस्कार। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। इस समय सुबह के 6 बजने को हैं। अब सुनिए हिंदी में समाचार जिन्हें हम रिले कर रहे हैं दिल्ली से।
1: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
2: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाईची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका

0: एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी प्वाइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध न होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी।
2: इस समय आप हैं हमारे साथ।
3: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
4: ये आकाशवाणी इंदौर है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का प्रातःकालीन कार्यक्रम वंदना।

हमारा भारत देश विविधताओं में एकता का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती है, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग वेशभूषाएं और परंपराएं हैं, फिर भी हम सभी भारतीय एक सूत्र में बंधे हुए हैं और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। देश केवल मिट्टी, पर्वत, नदियों और सीमाओं का नाम नहीं है, देश उन करोड़ों लोगों की भावनाओं, संस्कृतियों, परंपराओं और सपनों का संगम है जो मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं।

हे प्रभु, हम आपके शरणागत हैं। हमारे जीवन में अनेक कठिनाइयां, भूलें और कमजोरियां हैं। आप अपनी असीम कृपा और दया से हमारा मार्गदर्शन करें। हम संसार के दुखों और मोह माया से थक कर आपकी शरण में आए हैं। हमारी रक्षा करें और हमें सद्मार्ग पर चलने की शक्ति दें। प्रभु हम पर कृपा करना, प्रभु हम पर दया करना।

कबीर की वाणी में बार बार ये संदेश मिलता है कि अनुभव ही सच्चा ज्ञान है। जब मनुष्य भक्ति में डूबकर प्रभु का नाम गाता है तब उसे अपने भीतर परमात्मा का साक्षात्कार होने लगता है। कबीरा जब हम गावत तब जाना, संत कबीर की वाणी कि जब मैं ईश्वर का गुणगान करता हूं, भजन कीर्तन करता हूं, तब मुझे सत्य का अनुभव होता है।

हे प्रभु, आपके अनंत आशीर्वाद और कृपा से ही मेरे जीवन में सुख शांति और सफलता आई है। जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है वह मेरे प्रयासों से अधिक आपकी कृपा का परिणाम है। जब जब मैं कठिनाइयों में पड़ा आपने मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे संभाला भी। आपके स्नेह और करुणा ने मेरे जीवन को सार्थक बनाया है, इसीलिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूंगा और आपके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करता रहूंगा।

0: ये था भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन। आलेख है दक्ष चौकसे का और वाचक हैं नीलेश जोशी।
1: असफलता असल में गुरु है। जब भी हम असफलता शब्द को सुनते हैं मन में एक अजीब सी सिहरन होती है, जैसे कोई भारी पत्थर सीने पर रख दिया हो। हम उस शब्द से भागते हैं, उसे छुपाते हैं, उससे शर्माते हैं। पर क्या कभी सोचा है जो चीज हमें इतना तोड़ती है क्या वही हमें सबसे ज्यादा बनाती भी है? असफलता कोई अभिशाप नहीं, यह वो दर्पण है जो हमें वो दिखाता है जो हम देखना नहीं चाहते, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जापान में एक बहुत पुरानी कला है किट्सुंगी। जब कोई मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तो जापानी कारीगर उसे फेंकते नहीं, वो उसकी टूटी हुई दरारों में सोने को भरते हैं, और जो बर्तन पहले साधारण था वो अब और भी सुंदर हो जाता है। उसकी दरारें छुपाई नहीं जाती बल्कि सजाई जाती हैं। उनका मानना है जो टूटा है वो कमजोर नहीं, जो टूटकर जुड़ा है वो और भी मजबूत है। यही असफलता का सत्य है। हमारी हार, हमारी ठोकरें, हमारे वो पल जो सब बिखर गया, वो हमारी कमजोरी नहीं, वो हमारी वो दरारें हैं जिनमें अनुभव का सोना भरा जा सकता है, जो हमें पहले से कहीं ज्यादा गहरा और कहीं ज्यादा असली बना रहे हैं। असफलता हमें वो तीन चीजें देती है जो सफलता कभी नहीं दे सकती। पहली सच्चाई, जब हम जीतते हैं दुनिया हमें वह बताती है जो हम सुनना चाहते हैं।

0: सच्चे और गहरे अर्थों में। पर यहाँ एक और गहरी बात है, समुद्र में जब तूफान आता है तो छोटी नावें किनारे की तरफ भागती है, पर बड़े जहाज वो तूफान में आगे बढ़ते हैं क्योंकि उनकी गहराई ज़्यादा होती है। असफलता भी एक तूफान है, जो उससे भागता है वो किनारे पर रह जाता है और जो उसमें उतरता है वो और गहरा होता जाता है। असफलता तभी गुरु बनती है जब हम उससे सीखने को तैयार होते हैं। अगर हम उसे सिर्फ दर्द की तरह देखते रहते हैं तो वो हमें दर्द ही देती है। पर अगर एक पल रुककर हम पूछें इसने मुझे क्या दिखाया, तो वही असफलता एक दरवाज़ा बन जाती है। मिट्टी में गिरा बीज अंधेरे में रहता है, दबा रहता है, पर वही अंधेरा उसे अंकुरित करता है, वही दबाव उसे ऊपर की ओर धकेलता है। असफलता वो अंधेरा है जो आपके भीतर के बीज को जगाता है। अगर आप इस वक्त किसी हार के बोझ तले हैं, अगर कोई सपना टूटा है, कोई कोशिश नाकाम हुई है, कोई मेहनत रंग नहीं लाई, तो एक पल रुकिए। उस असफलता को दुश्मन की तरह मत देखिए, उससे पूछिए तुम मुझे क्या दिखाने आए हो, क्योंकि जो गुरु सबसे कठिन पाठ पढ़ाता है वही सबसे जरूरी पाठ भी सिखाता है। जो टूटा हुआ बर्तन आज भी किसी जापानी घर में रखा है सोने की दरारों के साथ चमकता हुआ, लोग उसे देखने आते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, पर कोई उसकी साबूत वाली तस्वीर नहीं जानता, क्योंकि वह टूटने से पहले साधारण था, टूटने के बाद अनमोल हो गया। शायद हम भी वही बर्तन हैं। रुकिए, सोचिए और फिर अपनी दरारों को सोने से भरिए।
1: ये था चिंतन, आलेख था दक्ष चौकसे का और वाचक थे नीलेश जोशी। लीजिए अब सुनिए खेती की बातें। इसमें आज का विषय है समृद्ध खेती का आधार बीजोपचार। वाचन है सुनीता पंडित का।
2: सभी किसान भाई बहन कवा उनकी सुनीता बन की खड़ी घड़ी राम राम। समृद्ध फसल को आधार छे बीजोपचार, अन्य बीजोपचार का महत्व का बारे में हम यूज बतावांगा कि देखो भारत एक कृषि प्रधान देश छे, अन्य हर किसान मनुष्य की यो सपनो रहे कि उनकी जो भरपूर पैदावार मिले उनका, अन्य सपना का सच करना का सबसे पहली कड़ी छे बीजोपचार करना। अपन एक यो कवांगा की वावणी का ठीक पहले बीज नख तरह तरह का रासायनिक फपुन नाशक हुआ, कीटनाशक हुआ या जैविक कीट हुआ, जैसा राइजोबियम हुयो, बीएसपी कल्चर हुयो, उनका से उपचारित करने की प्रक्रिया खज अपन बीजोपचार कवाएं। आन बिल्कुल सरल शब्द न बात करा तो बीज का वावने का पहले एक ऐसी वैक्सीन देनु जो जीवन भर उनका रोग से लड़ने की ताकत, जो बीजोपचार को मतलब हुयो। बीजोपचार का जो करा जोका से जो अपनी माटी छे ओका में जो रोग हुई जाए या मिट्टी से जनित जो रोग छे उनका से सुरक्षा हुई जाए। कहने को मतलब यो कि बीज नमण माटी में ऐसा कोई अदृश्य फंगस लगेला हो, बैक्टीरिया लगेला हो, जो अंकुरित होना का समय नष्ट कर दी हो जाए अगर उनका, तो बीजोपचार से उनका चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनी जाए। अना यो कवच जड़ सलन से हो या उखटा जैसी जो जानलेवा बीमारी पौधा न कहुई जाए उनका से बचाव, बस शुरुआती कीटन से भी रक्षा हुई जाए। कसो जमीन का अंदर अगर मौजूद दीमक हुई, सफेद ग्रब हुआ या अरु कई का भी कीड़ा कुरकुट हुआ, तो कहो कि अपने छोटे छोटा सब जो पौधा छे उनकी जड़ न का कुचरी ना कच। अन एकालेन जो कीटनाशक छे या जो बीजोपचार कराए वो इना कीट न पण जो बीज का पास छे उनका फटकना नहीं देतो ऐसा कीड़ा कुरकुट न का, अन पौधों की अपनी जो नाजुक अवस्था छे जेका में सुरक्षित रहनु चाहिए उनी अवस्था का अच्छा तरीका से पार करी जाए, अन अच्छो बड़ो पौधो बनी जाए। अंकुरण को भी एक बड़ो फायदो छे बीजोपचार करने से, क्योंकि अक्सर यो देखना मायल छे किसान भाई बहनों ने कि अगर अनुपचारित बीज न का खेत में अपन नाकी देवाए तो सड़ी जाए, कई कई जगह उगता नहीं है, जमीन की छेटी रही जाए, जमीन खाली पड़ी जाए, पर बीजोपचार करने का बाद अंकुरण क्षमता बढ़ी जाए बीज की, आना सभी बीज एक साथ एक सरी का एक सार खेत में उंगज आने का से अपन का जो

0: बारिश की जो दर छे वा भी कम हुई जाए अने पौधा सही सही संख्या में सही तरीका से हो जड़ नख भी मजबूती मिले अच्छो ओका में पोषण भी हुई जाए। जब हम जैविक खाद नसे जैसे राइजोबियम हुयो बैक्टीरिया शरीर का जो छे उनका नसे उपचारित कर लेवा तो ये पौधा की जड़ को विकास तेजी से करे आना जो जड़ छे वो मजबूती से मिट्टी में गहराई में उतरी जाए आना अपना हिस्सा को जो पानी छे या पोषक तत्व छे वो खींचने की उनकी क्षमता भी बढ़ी जाए। खास करी ना अगर हम दलहनी फसल की बात कर ले वहाँ हवा से नाइट्रोजन सोखने की अगर क्षमता की बात कर ले वहाँ तो वो दुगनी हुई जाए। मौसम की मार से भी सुरक्षा हुई जाए। अब बदलता मौसम की बात करा तो कभी पानी पड़े कभी कम पानी पड़े कभी देखो तो लंबी खेच हुई जाए तो ओका में ये उपचारित पौधा छे ये विपरीत परिस्थिति में भी अपन सहने की क्षमता दे उनकी क्षमता बढ़ावज अने कम पानी हो या खराब मौसम हो ओकाम भी अपनो बीज सुरक्षित बनेल रहेगा अने सही समय पर अंकुरण होएगा। एक फायदो सबसे बड़ो छे कि कम लागत में हम अधिक मुनाफा ले सकन बीजोपचार की खेती करनो ओका सस्तो से सस्तो निवेश कहेलो छे कि बुआई का बाद जो खड़ी फसल में बीमारी हुई जाए उनका में 1000 रुपया अपन का दवाई ने छिटकनो पड़े पण अगर बुआई का पहला अगर अपन बीजोपचार कर लेवा तो इन्हीं बीमारी ने अपन रोकी सकान आने की किसान भाई बहन ने अपन कम लागत ओकी लगज लागत घटी जाए आना पैदावार बढ़ी जाए। तो हम योज कवांगा कि अंधेरा में तीर नहीं दागने से बेहतर छे या चलाने से बेहतर छे कि सावधानी बरती जाए आना बीजोपचार करियो जाए। कृषि विज्ञान केंद्र छे अथवा अपना कृषि विभाग का अधिकारी उन छे वो बीजोपचार को तरीको भी बतावज आना बिना बीजोपचार का वावणी नहीं करनो यो एक खेती को बड़ो हिस्सो अपन का बनानो पड़ेगा अगर अपन का अपना अन्न भंडार भरा भरा रखनो तो। आज खेती की बात नमर एतरोज कहनुज राम राम।
1: ये थी खेती की बातें। आज का विषय था समृद्ध खेती का आधार बीजोपचार। वाचन था सुनीता पंडित का। आकाशवाणी इंदौर से लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग।

मुनि याज्ञवल्क्य ने ऋषि भरद्वाज को राम कथा सुनाते हुए पार्वती की कठोर तपस्या का वर्णन किया। शिव पार्वती के विवाह के प्रसंग में उन्होंने संक्षेप में कार्तिकेय के जन्म की कथा भी सुनाई। शिवजी का चरित्र सुनकर मुनि भरद्वाज अत्यंत प्रसन्न हुए। उस कथा को आगे सुनने की उनकी लालसा और भी बढ़ गई। ये जानकर मुनि याज्ञवल्क्य अतिशय प्रेरित हुए, बोले, शिवजी के चरणों में जिनकी प्रीति नहीं होती उन्हें श्री राम की कृपा भी प्राप्त नहीं होती।

ये था श्री रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग। कलाकार थी वाणी जयराम, संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

सुबह 7:20 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम साहित्य की। इसमें आज सुनवाई जाएगी डॉक्टर सुनीता जैन की कहानी बचपन की पिंक फ्रॉक। सुबह 7:35 पर होगा सदाबहार नगमों का कार्यक्रम सुनहरे पल। सुबह 8:30 भोपाल से रिले किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।

रतनदास बैरागी के गाए लोकगीत आप सुन सकेंगे सुबह 9 बजे और शाम 6:45 पर। जसपिंदर नरूला के स्वर में सुगम संगीत प्रसारित करेंगे सुबह 9:15 पर और शाम 6:30। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:30 आज आप सुन सकेंगे राजस देश पांडे का गाया राग गुजरी तोड़ी। सुबह 10:05 पर होगा श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। मन भावन कार्यक्रम आप रात 9:30 भी सुन सकेंगे।

0: सुबह 11 बजे से दिन के 3 बजे तक आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रिले किए जाने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। 11 बजे होगा फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। 12:30 बजे कार्यक्रम संग्रहालय से 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत, फिल्म संगीत प्रसारित होगा 12 बजे, 2 बजे और 2:30 पर। स्टूडियो से महिला कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा दिन में 1 बजे, जिसमें योजना क्रम में आज जानकारी दी जाएगी मिशन वात्सल्य योजना के बारे में। साथ ही सुनिएगा मीना गोदरे की कहानी श्रद्धा का उपहार। रूप लावण्य क्रम में मानसून में त्वचा की चमक बनाए रखने के लिए टिप्स दी जाएंगी और फैमिली फिटनेस क्रम में बताया जाएगा मानसून के दौरान स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें। शाम की सभा आरंभ होगी हमेशा की तरह 5 बजे युवाणी के साथ। इसमें आज का आकर्षण है गीतों भरी कहानी। 5:45 पर होगा फिल्म संगीत। 6 बजे आप सुन सकेंगे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। शाम 7:20 पर हमेशा की तरह किसान श्रोताओं के लिए प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम खेती गृहस्थी। इसमें आज आप सुन सकेंगे सज्जाद अहमद कुरैशी का कविता पाठ। 8:15 पर दिल ने फिर याद किया। रात्रि 10:30 से दिल्ली से आईसीसी विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल के अंतर्गत इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले मैच की कमेंट्री का खेल समाप्ति तक सीधा प्रसारण किया जाएगा। ये था कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। थोड़ी देर में दिल्ली से रिले करेंगे संस्कृत में समाचार और फिर हिंदी में समाचार।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां स्वीय समकक्षया सानिताकाई चेत्यनया सह वार्षिक शिखरसम्मेलनस्तरीयां वार्तां करिष्यति। शिखरसम्मेलनमिदं उभाभ्यां पक्षाभ्यां द्वैपाक्षिक सहयोगं समीक्षितुं सुदृढीकर्तुं सहैव पारस्परिक हिताय क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणां आदान प्रदानं कर्तुं अवसरं प्रदास्यति। द्वयोः प्रधानमन्त्रिणोः मध्ये संवादानन्तरं नैकेषां सन्धिपत्राणाम् आदानप्रदानं भविष्यति। जापानस्य प्रधानमन्त्री भारतस्य त्रिदिवसीय यात्रायै ह्यः सायं नवदिल्ल्यां सम्प्राप्ता। प्रधानमन्त्री ताकाइची इत्येतस्याः इयं भारतस्य प्रथमा आधिकारिक यात्रा वर्तते। विदेशमन्त्रालयेनोक्तं यत् इयं यात्रा भारत जापानयोः मध्ये विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् अग्रे वर्धनदिशि महत्वपूर्णा वर्तते। सामाजिक संचारपटले एकस्मिन् सन्देशे श्रीमोदिना लिखितं यत् असौ जापानस्य प्रधानमन्त्रिणा सह व्यापक चर्चायाः आशां करोति, यया भारत जापानयोः विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् इतोऽपि गहनं भविष्यति। दिल्ल्यां वसन्तकुञ्ज क्षेत्रस्य नेल्सन मण्डेला मार्गेण सह द्वारका द्रुतमार्गं संयोजयन् दिल्ली नगरे 48.1 AE राष्ट्रिय राजमार्गस्य कृते 6-मार्गीय सुरंगस्य निर्माणाय ह्यः प्रशासनेन अनुमतिः प्रदत्ता। राष्ट्रिय राजधान्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् उत्तरप्रदेशे राष्ट्रिय राजमार्गस्य 34 इत्यस्य 17.7 किलोमीटर मितस्य सुदीर्घस्य कानपुर कबराई खण्डस्य 4-मार्गीय अभिगमन नियंत्रित मार्गस्य निर्माणमपि प्रशासनेन अनुमोदितम् अस्ति, यत्र संरचनाः 6 मार्गाणि यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पिताः सन्ति।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: विकसित भारत जी राम जी अधिनियमस्य पंचविंशत्यधिक द्विसहस्रतमस्य अंतर्गतम वर्धितानि पारिश्रमिक मूल्यानि ह्यः आरभ्य समग्र देशे कार्यान्वितानि। ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रसारितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं सर्वेषु राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशेषु च पारिश्रमिक अनुपातेषु श्लाघनीया वृद्धिः कृता। मंत्रालयेन प्रोक्तं यत् प्रथमवारं प्रतिदिनं 300 रूप्यकाणां कश्चन पारिश्रमिकानुपातः निर्धारितः। अनेन सुनिश्चितं भविष्यति यत् देशस्य कस्मिन्नपि भागे अधिसूचितः न्यूनतम पारिश्रमिकः अस्मात् स्तरात् अल्पं न भवेत्। ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीय वर्षे 25 उत्तरैकशत दिनानां सवेतन वृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीण भारतस्य सशक्तीकरणं विधास्यति। दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः कार्यालयेन संसूचितं यत् ह्यः पर्यन्तं राष्ट्रिय राजधान्यां 32,000+ गणना प्रपत्राणाम् अंकीकरणं सम्पूर्णम्। दिल्ल्यां मतदात्री सूच्याः विशेष गहन संशोधनस्य भागरूपेण प्रायः 99,000+ प्रपत्राणि वितरितानि। सम्प्रति दिल्ल्यां नैर्वाचनिक गणना प्रपत्राणां प्रतिगृहं वितरणं प्रचलति। विश्वस्य प्रमुखा कंदुक क्रीडा प्रतियोगिता ड्यूरंड कप इत्यस्य 35,100+ संस्करणं मासस्यास्य 25 दिनांकात् कोलकातायाम् आरप्स्यते। इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय दान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की। 12वीं उप समिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी प्वाइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश

0: सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। अभियान में हर तहसील में भूमि सीमांकन और मापन से जुड़े मामलों का समाधान नई तकनीक से किया जाएगा। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटीकरण किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक करीब 9,99,000 प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हो चुका है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को रवाना किया। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गो से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: सुनते रहिए मालवा किसान, आकाशवाणी इंदौर।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे भोपाल केंद्र से।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच आज होगी द्विपक्षीय वार्ता। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, धान की फसल पर भावांतर राशि दी जाएगी। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय, लोगों को झमाझम बारिश का इंतजार। और भारत इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण ड्रॉ रहा, दूसरा मैच शनिवार को होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता करेंगे। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री ताकाइची की ये पहली भारत की आधिकारिक यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है और ये यात्रा इसे आगे ले जाने में सहायक होगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के 2 तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान

0: जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के धान उत्पादक किसानों के हित में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब धान की फसल पर भी भावांतर योजना का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि हमारे हालधर किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, इस धरा के वास्तविक शुभंकर हैं। किसानों की खुशहाली ही हमारी सरकार का संकल्प है, क्योंकि किसान समृद्ध होगा तभी हमारा प्रदेश और देश समृद्ध होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि महाकौशल की धरती धान उत्पादन के लिए जग प्रसिद्ध है। क्षत्रिय धान को अब भौगोलिक संकेतक जाई टैग मिल गया है। श्री यादव ने कहा,
2: धान पर भी हम भावांतर देने वाले, जोरदार ताली बजाए, भावांतर योजना। आप धान लगाओगे, जो भाव आपको मंडी में बेचे अच्छे से अच्छा भाव दिलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर नहीं मिला तो बीज का अंतर वो हमारी सरकार आपको देने वाली है। आपके माध्यम से हमारी सरकार खेत से लेकर कारखाने तक और बाग से लेकर बाजार तक हरेक क्षेत्र में मूल्य संवर्धन श्रृंखला लगा रही है। हरेक किसान को उसकी फसल का ठीक से लाभ मिले, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कल सिवनी जिला मुख्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय धान महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि जीएसटी को लागू करना एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की अवधारणा तक सीमित नहीं होकर एक राष्ट्र एक संकल्प और एक साझा उत्तरदायित्व का जीवंत प्रतीक है। राज्यपाल श्री पटेल कल जीएसटी के 9वें वर्ष के अवसर पर भोपाल के रविन्द्र भवन में सुगम कर सशक्त भारत थीम पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जीएसटी की 9 वर्षों की इस यात्रा से देश को दशकों पुराने इंस्पेक्टर राज और जटिल कर तरीकों के जाल से मुक्ति मिली है। यह ऐतिहासिक यात्रा इस बात का प्रमाण है, जब केंद्र और राज्य एकजुट होकर कार्य करते हैं तो आर्थिक सुधार केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं रह जाते बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लेते हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में कल फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा पथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने उसका उद्घाटन किया। गैलरी में भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं के चित्र शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान पंडित रूपक कुलकर्णी द्वारा बांसुरी वादन प्रस्तुत किया गया। इस दौरान प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी तथा DD न्यूज के महानिदेशक राजीव कुमार जैन उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए श्री द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा,
4: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 24 घंटे नवकरणीय ऊर्जा उपलब्ध कराने के महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत कर दी है। उन्होंने बताया कि दावोस में की गई घोषणा के अनुरूप प्रदेश 24 घंटे हरित ऊर्जा देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मध्य प्रदेश भवन नई दिल्ली में आयोजित प्री बिड मीटिंग को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय है। कल उज्जैन, बालाघाट, कटनी, सीहोर, उमरिया, धार और मंडला समेत 7 जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल और सागर संभाग को मॉनसून पूरी तरह कवर कर चुका है, जबकि उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग में दस्तक बाकी है। राजधानी भोपाल में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं। कल भी दिनभर यहां रुक रुक कर बारिश होती रही। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय होने के बाद लोगों को झमाझम बारिश का इंतजार है। मौसम विभाग ने कल के लिए बालाघाट,

और डिंडौरी में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला गया पहला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। इसके साथ ही श्रृंखला 0-0 से बराबरी पर है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 189 रन बनाए। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले की पिपरिया स्थित शहीद भगत सिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कल से 9 प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए 3 दिवसीय दीक्षांत कार्यक्रम का आयोजन शुरू हुआ। मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी की स्मृति में कल जबलपुर के मानस भवन में गौरव शिखर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। शिवपुरी में अवैध कब्जों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने पोहरी के ग्राम अनभौरा में लगभग 3 करोड़ रुपए की 150 बीघा से अधिक पट्टे की भूमि को दबंगों के कब्जे से मुक्त कराया। खंडवा में बीबी जी रामजी योजना का जिला स्तरीय शुभारंभ आज विकासखंड की ग्राम पंचायत बमन गांव आखई में होगा। वहीं बीबीजी रामजी योजना का आगरमालवा में जिला स्तरीय शुभारंभ 2 जुलाई को यानी आज सुबह ग्राम पंचायत पिपलिया चाचा में किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य बारेलाल अहिरवार आज अशोकनगर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक लेंगे। झाबुआ कलेक्टर ने रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया। शिविर में 67 यूनिट रक्तदान हुआ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
1: छह सौ 48 किलोहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम साहित्य की। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर सुनीता जैन की कहानी बचपन की पिंक फ्रॉक।
2: उस समय मेरी उम्र लगभग 7 या 8 वर्ष रही होगी। बचपन का वह समय जब दुनिया बहुत छोटी हुआ करती थी। घर, स्कूल, आंगन, कुछ दोस्त, कुछ रिश्तेदार और मन में पलते छोटे छोटे सपने। उस उम्र में खुशियां भी कितनी सरल होती थी ना। नई पेंसिल मिल जाए तो खुशी, टॉफी मिल जाए तो खुशी, और अगर बाजार में अपनी पसंद की कोई ड्रेस दिख जाए तो बस मन उसी में अटक जाता था। मैं एक मध्यम वर्गीय साधारण परिवार की बच्ची थी। हमारे घर में जरूरतों का ध्यान रखा जाता था, इच्छाओं का नहीं। मम्मी पापा ने कभी हमें अभावों में नहीं रखा, लेकिन हर चाहत पूरी हो जाए इतनी गुंजाइश भी नहीं थी। शायद इसी वजह से जो चीज़ मिल जाती थी उसकी कीमत बहुत गहराई से महसूस होती थी। उन दिनों दीपावली आने वाली थी। जैसे जैसे त्यौहार पास आता पूरा घर बदलने लगता। मम्मी सुबह से शाम तक सफाई में लगी रहती, पुराने अखबार निकलते, अलमारियां खाली होती, बर्तन चमकाए जाते, और रसोई तो जैसे दीपावली के आने की घोषणा कर देती थी। कभी बेसन भुनने की खुशबू, कभी गुजिया की भरावन, कभी चाशनी में डूबती मिठाइयों की मीठी महक, आज भी वो खुशबुएं याद है। शाम को पापा ऑफिस से लौटते तो घर में चर्चा शुरू हो जाती। इस बार कौन कौन आएगा,

दादी के घर कब जाना है? पूजा का सामान आ गया क्या? मिठाई कितनी बनानी है? सब अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त थे, लेकिन मेरे लिए दीपावली का मतलब कुछ और था। मेरे लिए दीपावली का मतलब था नई ड्रेस। नई ड्रेस पहनना, पूरे मोहल्ले में घूमना, पटाखे चलाना और हर मिलने वाले को अपनी ड्रेस दिखाना। उस उम्र में त्योहारों का सबसे बड़ा आकर्षण यही होता है। फिर एक दिन मैं मम्मी के साथ बाजार गई और वहीं एक दुकान की खिड़की पर मेरी नज़र जाकर ठहर गई। वह एक पिंक रंग की फ्रॉक थी। आज भी उसकी तस्वीर मेरी स्मृतियों में वैसी ही सुरक्षित है। उसका घेर बहुत सुंदर था। उस पर छोटे छोटे फूल बने थे और झालर थी। कपड़े में हल्की सी चमक थी जो रोशनी पड़ते ही झिलमिलाने लगती थी। मुझे वह किसी कहानी की राजकुमारी की ड्रेस जैसी लगी। उस दिन के बाद जब भी हम उस रास्ते से गुजरते, मेरी नज़र सबसे पहले उसी फ्रॉक को खोजती। मैं कुछ पल वहीं खड़ी होकर उसे देखती रहती। मम्मी आगे बढ़ जाती और पीछे मुड़कर कहती, चलो बेटा, देर हो रही है। मैं उनके साथ चल तो पड़ती, लेकिन मेरी आंखें बार बार पीछे मुड़कर उसी फ्रॉक को देखती रहती। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन उस फ्रॉक को अपना मान लिया था। बचपन में ना हम कुछ चीजों से प्यार करने लगते हैं, इतना कि वो चीज नहीं रहती, सपना बन जाती है। फिर एक दिन न जाने कहाँ से हिम्मत आई, मैंने धीरे से मम्मी का हाथ पकड़ा और कहा, मम्मी, मुझे वो पिंक वाली फ्रॉक चाहिए। मम्मी ने पहले मेरी तरफ देखा, फिर फ्रॉक की तरफ। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, अच्छी है, देखते हैं। आज समझ आता है, माता पिता का देखते हैं कई बार उम्मीद और मजबूरी के बीच का शब्द होता है। लेकिन उस समय मुझे लगा था अब वो फ्रॉक मेरी हो जाएगी। उस दिन के बाद मैं और भी ज्यादा उत्साह से उसे देखने लगी। फिर एक शाम पापा ऑफिस से लौटे और बोले, चलो आज बाजार चलते हैं। बस इतना सुनना था कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई। पूरे रास्ते मन में बस एक ही प्रार्थना थी, भगवान आज वही फ्रॉक मिल जाए। दीपावली की वजह से बाजार रोशनी से जगमगा रहा था। हर दुकान रंग बिरंगी झालरों से सजी थी। मिठाई की दुकानों पर भीड़ थी। बच्चे खिलौनों के सामने खड़े थे, लेकिन मेरी नज़र सिर्फ एक दुकान को खोज रही थी। और आखिरकार हम वहां पहुंच गए। आज भी मुझे उस दुकान का नाम याद है, नयन ड्रेसेस। दुकान के अंदर रंग बिरंगे कपड़ों की दुनिया बसी हुई थी। हर तरफ खूबसूरत ड्रेसें थी, लेकिन मेरी नज़र सीधे उसी पिंक फ्रॉक पर जाकर रुकी। वही थी, ठीक वैसी ही जैसे मेरा इंतजार कर रही हो। मैं धीरे से पापा के पास गई और कहा, मुझे यही वाली चाहिए। पापा ने मेरी आंखों की चमक देखी। उन्होंने दुकानदार से कहा, वो पिंक वाली दिखाइए। दुकानदार ने फ्रॉक उतार कर मेरे हाथ में दी। और सच कहूं, उस क्षण मुझे लगा जैसे मैंने दुनिया की सबसे कीमती चीज पा ली हो। मैं उसे बार बार छू रही थी। उसका कपड़ा, उसकी चमक, उसका घेर, सब कुछ जादुई लग रहा था। कुछ देर बाद वह फ्रॉक पैक होकर हमारे हाथ में थी। घर लौटते समय मैं पूरे रास्ते मुस्कुराती रही। घर पहुंचकर मैंने शायद 10 बार अलमारी खोली होगी। बार बार उसे निकालती, देखती, फिर वापस रख देती। कभी गाल से लगा लेती, कभी पहनकर आईने के सामने घूमती। जब उसका घेर घूमकर फूल की तरह फैलता, तो मैं खुद को किसी कहानी की परी समझने लगती। उस रात मैं उसी फ्रॉक के बारे में सोचते सोचते सोई थी। और आखिरकार दीपावली का दिन आ गया। सुबह से घर में चहल पहल थी। मम्मी पूजा की तैयारी में लगी थी। पापा पटाखों का डिब्बा देख रहे थे। हमें दादा दादी के घर जाना था। मैंने बड़े प्यार से अपनी पिंक फ्रॉक पहनी। मम्मी ने मेरे बाल संवारे, एक छोटी सी क्लिप लगाई और माथे पर काला टीका लगा दिया। आईने में खुद को देखकर मुझे लगा मैं दुनिया की सबसे सुंदर बच्ची हूँ। दादा दादी के घर पहुंचते ही पूरा आंगन लोगों से भरा हुआ था। रिश्तेदार, बच्चे, हंसी, मिठाइयाँ, पूजा की तैयारी, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। और सच कहूं, उस दिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी अपनी फ्रॉक दिखाने में आ रही थी।
मैं बार बार उसका घेर फैलाकर घूमती। मन में बस एक ही भावना थी, देखो मेरी नई फ्रॉक। तभी मेरी चचेरी बहन की नजर मेरी फ्रॉक पर पड़ी। वह कुछ देर उसे देखती रही, फिर सीधे पापा के पास जाकर बोली, बड़े पापा ये ड्रेस मुझे चाहिए। मैंने उसकी बात सुनी, फिर पापा की ओर देखा। मुझे पूरा विश्वास था कि पापा मुस्कुराकर कहेंगे, नहीं बेटा ये इसकी है, तुम्हें दूसरी दिला देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पापा ने बहुत सहजता से मम्मी की ओर देखा और कहा, ये फ्रॉक इसे दे दो, इसे दूसरी दिला देंगे। बस इतनी सी बात थी, शायद उनके लिए सचमुच बहुत छोटी सी बात। शायद उन्होंने सोचा होगा, बच्ची ही तो है, दूसरी दिला देंगे। लेकिन उस छोटी सी बच्ची के लिए वह बहुत बड़ी बात थी। मैं अचानक चुप हो गई। मेरे हाथ अपने आप फ्रॉक के घेर पर जाकर रुक गए। मैंने एक बार मम्मी की ओर देखा, एक बार दादी की ओर, एक बार आसपास खड़े लोगों की ओर। शायद कोई कह दे, नहीं ये इसकी फ्रॉक है। शायद कोई मेरे मन की बात समझ जाए, शायद कोई मेरे लिए खड़ा हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ ही देर में मेरी पिंक फ्रॉक मेरी चचेरी बहन के हाथों में थी और मैं चुपचाप खड़ी थी। मैं रोई नहीं, मैंने जिद नहीं की, मैंने नाराजगी भी नहीं दिखाई। मैंने बस अपने मन की एक छोटी सी खुशी को अपने भीतर कहीं दबा लिया। उस दिन पहली बार महसूस हुआ, बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ भी उनके लिए कितनी बड़ी होती है। बड़े लोग अक्सर सोचते हैं बच्चे जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन सच यह है बच्चे घटनाएं नहीं भूलते, वे उनसे जुड़ी भावनाएं याद रखते हैं। मुझे फ्रॉक के चले जाने का दुख उतना नहीं था, दुख इस बात का था कि किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं, किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। लेकिन मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो मेरे पापा थे, मैं उनसे बहुत प्यार करती थी और शायद थोड़ा डरती भी थी। उनके सामने मेरे शब्द हमेशा गुम हो जाते थे। मन में बहुत कुछ होता था लेकिन होठों तक कुछ नहीं पहुंचता था। समय बीत गया, बचपन पीछे छूट गया, नई ड्रेसें भी आई, नए त्योहार भी आए, जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। लेकिन आश्चर्य की बात है, वो पिंक फ्रॉक आज भी याद है। क्यों? क्योंकि वह सिर्फ एक फ्रॉक नहीं थी, वह मेरे बचपन की पहली अनकही पीड़ा थी, पहली ऐसी घटना जिसने मुझे यह महसूस कराया कि हर इंसान के भीतर एक दुनिया होती है जिसे दूसरे लोग हमेशा नहीं देख पाते। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है शायद उसी दिन मेरे भीतर शब्द जन्म लेने लगे थे। जो बात मैं उस दिन कह नहीं पाई, वही धीरे धीरे मेरे भीतर आवाज बनती गई। वही आवाज वर्षों तक मेरे साथ रही और एक दिन उसने कागज का रास्ता खोज लिया। आज जब मैं लिखती हूँ तो लगता है मेरे भीतर वो छोटी सी बच्ची अब भी बैठी है, वह बच्ची जो उस दिन कुछ नहीं बोल पाई थी, लेकिन अब उसकी चुप्पी शब्दों में बदल चुकी है। अब उसकी शिकायतें आंसू नहीं बनती, कहानियां बन जाती है। अब उसका दर्द बोझ नहीं बनता, संवेदना बन जाता है। और इसलिए आज भी जब कभी पिंक रंग की कोई फ्रॉक दिखाई देती है तो मुझे वह दीपावली याद आ जाती है, वह छोटी सी बच्ची याद आ जाती है और मन मुस्कुराकर धीरे से कहता है, उस दिन एक फ्रॉक जरूर चली गई थी, लेकिन शायद उसी दिन एक लेखक जन्म ले रहा था। मैंने उस दिन पापा से कुछ नहीं कहा था, पर आज मेरी कहानियाँ मेरे मन की सारी अनकही बातें कह देती है। शायद सचमुच वही दिन था जब मेरे भीतर एक लेखक का जन्म हुआ था।

साहित्य के कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सुनी डॉक्टर सुनीता जैन की कहानी बचपन की पिंक फ्रॉक। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। इस गुरुवार मतलब आज सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है HIV एड्स का संक्रमण और उससे बचाव के उपाय। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर अंकेश गुप्ता से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: आकाशवाणी इंदौर से लीजिए अब सुनिए सदाबहार नगमों का कार्यक्रम सुनहरे पल।

सुनहरे पल कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आरती जादौन का नमस्कार। श्रोताओं, घटा छा रही है, बदरिया आ रही है, पर पानी वैसा नहीं बरस रहा जैसा चाहिए। चलिए आज आपको कुछ सदाबहार नगमे सुनाते हैं जो कि बारिश से, इस मौसम से जुड़े हुए हैं। शुरुआत हम कर रहे हैं सुजाता फिल्म के गीत से। आशा भोसले की आवाज़ है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और एसडी बर्मन का संगीत।

लीजिए अब सुनिए अगला गीत। फिल्म का नाम है रेशमी रुमाल। इसे गाया है मन्ना डे और आशा भोसले ने। राजा मेहदी अली खां के बोल हैं, संगीत है बाबुल का।

मिस्टर एंड मिसेस 55। लीजिए अब सुनिए इस फिल्म का गीत गीता दत्त और साथियों के स्वर में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, संगीत है ओपी नैयर का।

अगला गीत है फिल्म चार दीवारी से। इसे गाया है लता मंगेशकर ने। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार सलिल चौधरी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

लीजिए अब सुनिए धूल का फूल फिल्म का गीत। आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजें हैं, साहिर के बोल हैं और संगीत है एन दत्ता का।

और लीजिए श्रोताओं, अब पेश है कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म अनुपमा से। आवाज है आशा भोसले की। कैफी आजमी के बोल हैं हेमंत कुमार का संगीत।

0: इस गीत के साथ ही अब सुनहरे पल कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: सुनहरे पल,
0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं, थोड़ी देर में दिल्ली से रिले करेंगे समाचार प्रभात।

0: नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाई ताकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5 लाख लोगों के 2 तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय दान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री ताकाची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलों, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी प्वाइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त तो नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थलसेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिस्त्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
3: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस एटीएफ में राहत, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर इंतजार। जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी। हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की पीएम, रणनीतिक संबंधों पर जोर, पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज। चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर, दर्शनार्थी

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। इसका सही जवाब है लक्ष्मण प्रसाद दुबे। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, जबलपुर से वृंदा हिंगनीकर और उज्जैन से संजीव जैन। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

भारतीय स्वाधीनता का इतिहास ऐसे अनेक राष्ट्रभक्तों की कहानी कहता है जो समय की प्रचंड आंधियों के बीच दीप नहीं दिशा बनकर उभरे। भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले एक ऐसे ही महान क्रांतिकारी थे गणेश घोष। उनकी यात्रा उस नदी की तरह थी जो चट्टानों से टकरा कर भी अपना मार्ग बनाना जानती है। उनका संकल्प उस अग्नि की तरह था जो स्वयं तप कर भी अपने आसपास उजाला बिखेरती है। गणेश घोष का जन्म 22 जून सन 1900 को अविभाजित भारत के जैसोर नामक स्थान पर हुआ था, जो बांग्लादेश के खुलना जिले के पास स्थित है।

के लिए नहीं थी, बल्कि इस कौशल का प्रयोग वो देश को आजाद कराने के लिए हथियार और बम बनाने के लिए भी करने का विचार करने लगे। भारत की आजादी उनकी आंखों का पहला सपना था। अंग्रेजों की गुलामी से वो अत्यधिक आक्रोशित रहा करते थे तथा मन ही मन क्रांति पथ पर चलने का उन्होंने संकल्प ले लिया। उन्हें विश्वास था कि भारत बहुत जल्द आजाद होगा।

कलकत्ता में पढ़ाई के दौरान ही गणेश घोष बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन युगांतर के संपर्क में आ गए थे। वो बहुत जल्द इस संगठन के सक्रिय सदस्य बन गए। चटगांव में रहते हुए ही उनकी भेंट मास्टर सूर्यसेन से हो चुकी थी। सूर्यसेन की सादगी और दृढ़ संकल्प से वो अत्यधिक प्रभावित हुए और उनके सहयोगी बन गए। बहुत जल्द चटगांव में क्रांतिकारियों का समूह बना, जिसमें सूर्यसेन के साथ गणेश घोष, अनंत सिंह और लोकेन बल शामिल थे। इन्हें चटगांव में क्रांतिकारियों की त्रिमूर्ति कहा जाता था। गणेश घोष ने चटगांव के युवाओं को व्यायाम शालाओं के माध्यम से संगठित करना शुरू किया। वो युवाओं को शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाने, लाठी चलाने और अनुशासन सिखाने के प्रभारी थे। वो मास्टर सूर्यसेन द्वारा स्थापित चटगांव रिपब्लिकन आर्मी में सघन रूप से सक्रिय हो गए। ये एक सशस्त्र क्रांतिकारी संगठन था, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन से चटगांव को मुक्त कराना तथा पूरे देश में विद्रोह की चिंगारी भड़काना। इस तरह

इस क्रांतिकारी संगठन ने मजबूत आकार ले लिया। सन 1930 आते आते चटगांव की धरती पर एक बड़ी योजना आकार लेने लगी और इसके सूत्रधार थे मास्टर सूर्यसेन, गणेश घोष और अनंत सिंह। इन्होंने निश्चय किया कि अंग्रेजी शासन को सीधे चुनौती दी जाए। योजना बनी कि चटगांव के दोनों शस्त्रागारों पर कब्जा कर लिया जाए, संचार व्यवस्था को ठप्प कर दिया जाए, रेलवे संपर्क काट दिया जाए ताकि ब्रिटिश सेना की सहायता वहां तक न पहुंच सके। 18 अप्रैल सन 1930 गुड फ्राइडे का दिन था। रात करीब 10 बजे भारतीय रिपब्लिकन आर्मी की वर्दी पहने क्रांतिकारियों ने हमला बोल दिया। गणेश घोष ने पुलिस शस्त्रागार पर हमला करने वाले दस्ते का नेतृत्व किया। उन्होंने बड़े ही साहस और चतुराई से वहां मौजूद पहरेदारों को निष्क्रिय कर दिया तथा भारी मात्रा में बंदूकें और मस्कट जब्त कर लिया। उधर अनंत सिंह के समूह ने सहायक बल शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। शस्त्रागार पर पूरी तरह कब्जा करने के बाद सभी क्रांतिकारी पुलिस शस्त्रागार के बाहर इकट्ठा हो गए। वहां मास्टर सूर्यसेन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, सैन्य सलामी दी गई और अस्थायी क्रांतिकारी सरकार के गठन की घोषणा कर दी गई। गणेश घोष इस नवगठित क्रांतिकारी व्यवस्था में महत्वपूर्ण दायित्वों के साथ संलग्न हुए, लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। कुछ ही दिनों में ब्रिटिश सेना ने चटगांव को चारों ओर से घेर लिया। परिस्थिति देखकर क्रांतिकारी दल जलालाबाद की पहाड़ियों की ओर बढ़ चला।

22 अप्रैल सन 1930 को ब्रिटिश सेना ने जलालाबाद की पहाड़ियों को घेरकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस युद्ध में गणेश घोष ने युवाओं का ऐसा हौसला बढ़ाया कि क्रांतिकारियों की सटीक फायरिंग के सामने ब्रिटिश सेना टिक नहीं पाई, उसे पीछे लौटना पड़ा। इसके बाद मास्टर सूर्यसेन ने क्रांतिकारियों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर गांवों में छिपने का आदेश दिया। गणेश घोष, अनंत सिंह, लोकेन बल और आनंद गुप्ता हुगली जिले के चंदन नगर में पहुंचे, जो उस समय फ्रांसीसी उपनिवेश था, इसलिए ये स्थान ब्रिटिश पुलिस के सीधे अधिकार क्षेत्र से बाहर था। यहां क्रांतिकारी सुहासिनी गांगुली और शशधर आचार्य ने पति पत्नी होने का नाटक कर एक घर किराए पर ले लिया, जहां गणेश घोष और उनके साथी छिपे हुए थे। ब्रिटिश खुफिया विभाग को इस ठिकाने का पता चल गया। पुलिस ने इसे घेरकर भयंकर गोलाबारी शुरू की। इस मुठभेड़ में गणेश घोष के साथी मखनलाल घोष शहीद हो गए और गणेश घोष को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चला, उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया। अपनी जेल यात्रा में भी वो चुप नहीं बैठे, उन्होंने जेल में दो बड़ी भूख हड़ताल भी की थी। उनकी रिहाई के लिए देशव्यापी आंदोलन चले। महात्मा गांधी, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और अन्य शीर्ष नेताओं ने ब्रिटिश सरकार पर लगातार दबाव बनाया और अंततः 1946 में वो रिहा हुए। आजादी के बाद उन्होंने शस्त्र छोड़कर जन आंदोलन और चुनावी राजनीति का रास्ता चुना। वो पश्चिम बंगाल के गरीब और शोषित वर्ग की आवाज बनकर उभरे। आजादी के बाद वो लगातार 3 बार पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य चुने गए। सदन में वो अपनी प्रखर वाणी और शोषितों की आवाज उठाने के लिए जाने जाते थे। सन 1967 में उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा। वो दक्षिण कलकत्ता की सीट से चुनाव जीतकर 4थी लोकसभा के सदस्य बने। अपने जीवन के अंतिम 2 दशकों में उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि चटगांव विद्रोह और उनके शहीदों का इतिहास आने वाली पीढ़ियों तक अवश्य पहुंचे। उन्होंने इसी उद्देश्य से बंगाली और अंग्रेजी में कई संस्मरण, लेख और पुस्तकें लिखीं। उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है चट्टग्राम विप्लवेर बन्ही शिखा। ये उस दौर का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है। वो जीवन के अंत तक कोलकाता के एक छोटे से मकान में बहुत ही सादगी से रहे। उन्हें जो भी पेंशन या भत्ते मिलते थे, उसे वो जन कल्याण हेतु दान कर दिया करते थे। अपने जीवन का पल पल भारत भूमि को समर्पित करते हुए उन्होंने 16 अक्टूबर सन 1994 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है wataNkaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: संस्थान संचालनालय भोपाल द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। श्रोताओं, आपको कार्यक्रम संबंधी एक सूचना दे दें। आज सुबह 10:32 से 11:02 के बीच प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है HIV का संक्रमण और उससे बचाव के उपाय। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर अंकेश गुप्ता से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं और इसके साथ ही इसे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731, तो फोन करना न भूलिएगा आज सुबह 10:32 से 11:02 के बीच। सूचना समाप्त हुई। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं रतनदास बैरागी के गाए कुछ मालवी लोकगीत।

आकाशवाणी इंदौर से इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत। कलाकार हैं रतन दास बैरागी। लीजिए सुनिए एक और मालवी लोकगीत।

ओली जी, आप सुनिए ये मालवी लोक भजन रतनदास बैरागी और साथियों के स्वर में।

लोक संगीत के तहत अभी आपने सुने रतनदास बैरागी और साथियों के गाए मालवी लोकगीत। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, वक्त है सुगम संगीत का। इसके तहत आज हम आपको सुनवा रहे हैं जसपिंदर नरूला के गाए कुछ गीत।

देव कोहली का लिखा ये गीत था, और लीजिए अब सुनिए यशवंत बुधवानी का लिखा गीत, आवाज़ है जसपिंदर नरूला की।

सिगम संगीत के अंतर्गत अभी आपने सुने जसपिंदर नरूला के गाए कुछ गीत जो हमने लिए थे एल्बम कुछ कुछ दिल में से। कुछ और गीत आप सुन पाएंगे शाम 6:30 बजे। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 9:30 बजे हैं, वक्त है शास्त्रीय संगीत का। आज हम आपको सुनवा रहे हैं राजस देशपांडे का गाया राग गुजरी तोड़ी। संगीतकार हैं तबले पर विनय राठौर और हारमोनियम पर आलोक गंधर्व।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत। इसके तहत आज आपने सुना राजेश देशपांडे का गाया राग गुजरी तोड़ी। तबले पर संगत थी विनय राठौर की और हारमोनियम पर थे आलोक गंधर्व।

0: श्रोताओं, आपको एक बार फिर याद दिला दें, इसके पहले सुबह के 10 बज रहे हैं। अब सुनेंगे जिले की चिट्ठी भोपाल से।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बैतूल जिले की चिट्ठी। आलेख मयंक भार्गव, वाचन स्वर दीपा सिंह। सतपुड़ा की सुरम्य वादियों में बसे आदिवासी बाहुल्य बैतूल जिले में गत माह प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव के दौरे, जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन और योग दिवस आदि प्रमुख घटनाएं चर्चा में रहीं। वहीं जून माह के आखिरी में शुरू हुई मॉनसून की बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। जिले में बोनी का कार्य शुरू हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने 2 दिवसीय बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू पहुंचे। यहां उन्होंने कृष्णा आजीविका स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित आजीविका गतिविधियों का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने समूह द्वारा तैयार किए गए मावा और रबड़ी का स्वाद लिया, महिलाओं से आत्मीय संवाद कर उनके कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्वसहायता समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के साथ साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कुकरू प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में विकसित होने की अपार संभावनाएं रखता है। प्रवास के दौरान रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया। इस दौरान रात्रि चौपाल में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ग्रामीणों से आत्मीय भाव से खुले मिले। ग्रामीणों ने स्थानीय कुरकू भाषा में पारंपरिक गीत प्रस्तुत किए। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भी गोविंद बोलो हरिगोपाल बोलो भजन सुनाकर सभी का मन मोह लिया। इसी बीच प्रदेश व्यापी जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पंचायत खेड़ी सावलीगढ़ में किया गया। कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। श्री पटेल ने जलगंगा संवर्धन अभियान के सफल संचालन के लिए जिले वासियों को बधाई दी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का संदेश पढ़कर सुनाया। उधर खरीफ सीजन में किसानों को कृषि कार्यों के लिए डीजल की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि किसानों को निर्धारित पहचान पत्र और आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत प्लास्टिक केनों में अधिकतम 50 लीटर तक डीजल उपलब्ध कराया जाए। दूसरी ओर जिले में कनूठा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम ग्राम पंचायत घाट पिपरिया में आयोजित किया गया। आयोग के ब्रांड एम्बेसडर सारिका घारू के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और सुधार करवाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पारंपरिक पपेट शो रहा, जिसने स्थानीय भाषा में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की कहानी को बेहद रोचक अंदाज में पेश किया। उधर गर्भावस्था से संबंधित जटिलताओं का पता लगाने और समय रहते उनका उपचार सुनिश्चित कर सुरक्षित प्रसव करवाने के लिए प्रतिमाह 9 और 25 तारीख को प्रधानमंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर जगदीश ठकोरे ने बताया कि जिले में 25 जून को आयोजित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शिविर में 508 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई और 222 हाई रिस्क चिन्हित कर 50 की सोनोग्राफी भी की गई। वहीं आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय स्कूलों के शिक्षकों का 23 जून से 25 जून तक 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें किशोर बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और उनके सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया। उधर शहर में नशा मुक्ति दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर नशा मुक्त समाज का निर्माण करना रहा। कार्यक्रम में नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसानों पर पोस्टर प्रदर्शनी भी लगाई गई। उपस्थित युवाओं को नशा मुक्ति हेल्पलाइन की जानकारी भी दी गई। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को जिले भर में सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल, जन अभियान प्रदेश उपाध्यक्ष श्री मोहन नागर, जिला विकास सलाहकार समिति सदस्य सुधाकर पंवार उपस्थित थे। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
2: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी बैतूल जिले की चिट्ठी। आलेख मयंक भार्गव का था, वाचन था दीपा सिंह का और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, आपको याद दिला दें, आपसे थोड़ी देर में यानी 10:32 से शुरू होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, जिसका विषय है एड्स का संक्रमण और उससे बचाव के उपाय। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर अंकेश गुप्ता से पूछ सकते हैं। आप हमारा एक कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 मेगाहर्ट्ज के साथ साथ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। तो फोन करना न भूलिएगा आज सुबह 10:32 से 11:02 के बीच। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन भावन।

मनभावन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आरती जादौन का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, मौसम कुछ भीगा भीगा सा है, कहीं पर फुहारें पड़ रही हैं, कहीं बारिश और कहीं पर केवल बदली छाई है और बारिश का इंतजार है। ऐसे भीगे मौसम में, ऐसे सुहाने मौसम में सुहाने गीत अगर साथ हों और वो भी अपनी पसंद के, तो मज़ा दुगना हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं आपकी पसंद के गीत आपको सुनवाने का ये सिलसिला। पहला गीत है फिल्म झुमरू से, इसे गाया है किशोर कुमार ने, गीतकार संगीतकार भी किशोर कुमार हैं। इस गीत के लिए फरमाइश की है रिंगणी छत्तीसगढ़ से दिनेश और करुणा वर्मा ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहते हैं छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली और शमीम बानो, बनियापारा धमतरी से रामचंद माखीजा, सविता और पूरा माखीजा परिवार, दाढ़ी नंदूरा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप अमूल्य, वैशाली बाठे, शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य और कृष श्रीवास्तव, रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता, संजय, नंदिनी, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, डॉली, देवराज महोबिया, महादेवघाट अमलेश्वर से डोमन सुमन, मिथिलेश, तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति और रेयांश ठाकुर, कोली मोहल्ला छबड़ा से नूरबानो, सलमा और रुखसार। आप सभी की पसंद पर सुनवा रहे हैं झुमरू फिल्म का ये गीत।

चिक चा चा छे चिक चिक चिक चा। आशा भोसले की आवाज में ये गीत था फिल्म काला बाजार का। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार एसडी बर्मन। इस गीत को सुनवाने के लिए अनुरोध करने वाले श्रोता थे पुणे से प्रियंका आर्या, पंकज वाडोदे, जरूड़ वरूड़ से बाबा साहेब वाडोदे और मीनाक्षी चरपे, सर्वानिया महाराज जिला नीमच मध्य प्रदेश से गोविंद पाटीदार, ममता पूजा मधुसूदन यशस्वी हंसवी पाटीदार, सुराना जिला रतलाम से शेख हैदर खान, शकीला बानो, शमीम बानो और हसीना बानो, ग्राम भड़बूंजी जिला आगर मध्य प्रदेश से रघुनाथ मालवीय, भंवरबाई, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, श्याम बाबू, भावना, दुर्गा, मधुबाला, विनोद, विशाल, मिलन और ओम प्रकाश, संस्कृति नगर इंदौर से हर्ष केशरी, मिताक्षी, बबलू, छाया और सोमतीबाई केशरी, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित और हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी और प्रांजल राय, बोराला धरण मालेगांव महाराष्ट्र से दत्ता घायल, सुनीता बाई, सानिता और गजानन घायल, रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक। आप सभी की पसंद पर ये गीत अभी हमने आपको सुनवाया काला बाजार फिल्म से। लीजिए अब सुनिए अगला गीत। फिल्म का नाम ही है गीत। इसे गाया है महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर ने। हसर जयपुरी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और इस गीत को सुनना चाहा है मोरी गेट दिल्ली से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार ने, उपाध्याय नगर देवास से मुरारी लाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा, शांतिपुरा देवास से सुभाष गोडिया, राजा राम नगर से राजेश अग्रवाल, शांति महाजन, कैलाश महाजन, मूसाखेड़ी इंदौर से रवि डामोर, बबीता, संदीप दुर्गा, अभिषेक डामोर, गौतम विवान, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, अल्तमश खत्री, शादाब खत्री और रमेश गौड़, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले, राजदीप, राशि, शीतल, खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक और मोहम्मद उमर डावर, ग्राम लोहारी खंडवा से राजेश, राहुल, विशाल, शीला, गायत्री, धनजय, खुर्दी रोड मानपुर से विजय रानी, महिमा, नीतू वैद, भाटापारा दत्तरेंगी, छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा।

लीजिए अब सुनिए, ये रात फिर न आएगी फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी और आशा भोसले के स्वर में। इस गीत को लिखा है SH बिहारी ने, धुन तैयार की है ओपी नैयर ने, और सुनवाने के लिए अनुरोध किया है दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से गजानन नवदीप येले ने, शरीवर्ने रकोला से अरुणा दामोदर ने, टेमला मार्ग राजपुर जिला बड़वानी से ये गीत सुनना चाहते हैं संतोष यादव, शिवराम, दुर्गा, निखिल, अंकित, नंदिनी, किरण, रेखा, सोनू, कमलेश यादव। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत रानी, तबस्सुम रुखसार और मोहम्मद आसिफ। पालदाना का इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी। नांदखेड़ जिला वाशिम से अशोक चुंबले, दिनेश, रुपेश, लीलाबाई, चैताली चुंबले और प्रीति चांदनी। जलगांव ग्राम अडावत जलगांव महाराष्ट्र से नरेंद्र मसदकर, निशा, चीनू, निधु मसदकर। सनावद मध्य प्रदेश से हुकुमचंद कटारिया।

पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, दीपक, सचिन कटारिया, प्रभा, कृष्णा, विराज, अर्णव और काव्यांशी कटारिया, सुदामनगर इंदौर से अनिल भंडारे, उषा, समता चित्रा और निशा भंडारी।

0: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
1: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
0: मतलब
1: ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रामक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और

0: डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
1: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
2: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
4: आकाशवाणी इंदौर से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन। लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ताजमहल फिल्म का गीत। साहिर के बोल हैं, रोशन का संगीत और फरमाइश करता है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवानकर, सरिता सिद्धांत, प्रिंस एकांश गवानकर, नागपुर से शैलेश वैशाली, ध्वनि गवानकर, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, वालोदा लखा जिला उज्जैन से कन्हैयालाल प्रजापति, कैलाश कुंदन, साक्षी मीनाक्षी, दिव्यांशु और भगवंताबाई, बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन से विनोद मूणत, दीक्षा कुश मूणत, दीपक मयंक मूणत, नेहा जैन, चेतन नाहटा और दिलीप सिंह पंवार, गांधी चौक बाड़मेर जिला राजस्थान से बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी और मनीष, पीपरपारा पालचुना मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी योगिता नितिन और वंशिका दिवाकर, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा हनुमान बोडखे, सुदामानगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर, कान्हा सफलता, कपिल मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर भाई और प्रभुलाल बागरी, बेरड़ी से राजेश कंचन सोनी, गायत्री वैष्णवी और चंचल ढोमणे, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासेरे, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, मीनाक्षी तिवारी और सुनीता शर्मा।

कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म कश्मीर की कली से। आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। SH बिहारी के बोल हैं, ओपी नैयर का संगीत है और अनुरोध करता है लाबरिया भेरू इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला, नंदिनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक कुणाल और केतन। प्रमिला गंजालोर जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश, ऋषि वर्मा। कृष्णा नगर सेमिनरी हिल्स नागपुर से नाना डोंगर दिवे, रमा, सीमा, रीमा, दीक्षा और राहुल डोंगर दिवे। खंडवा से अनिल विंसुरकर, मंगला, शोभित। उदयनगर से मोहित, स्वाति और मनस्वी रत्न पारखी। मालीपुरा बीजलपुर से मोहनलाल चौहान, ललिता, प्रियंका परमार, पंकज, सोनू, राहुल, गुंजन, मुस्कान चौहान, अदव्या, अंकित, सलोनी, कान्हा और आयु चौहान, इन्हीं के साथ हैं हेमंत। कंवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण, मीना, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। रिंधोरा से बाबूलाल बोरा खड़े, गोकुला और मंगेश बोरा खड़े। बठेना से बलकरण, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा। चटोदा सारा गांव से सुजान, सोहद्रा, आयुषी और कृत वर्मा।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन, और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है हसीना मान जाएगी इस फिल्म से। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, लिखा है प्रकाश मेहरा ने और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबिन। खरगोन से संतोष मकासरे, आशा गायत्री, महेश, प्रमोद आशीष और सुनील मकासरे। ब्रह्मपुरी कॉलोनी इंदौर से दिनेश कुमार हार्डिया, ज्योति, राहुल, वर्षा, अंजू, अमन, अजीत, अनुराग, कविता हार्डिया। शिरपुर जैन से गिरीश देशमुख, सोनाली, जयश्री जोशी, दीपाली, माधुरी और जीवा देशमुख। मुर्तिजापुर से हारून शाह और शाजिया बानो। गुमाश्ता नगर इंदौर से अनिल कवचाले, सबीहा फलक, सीमा, पूजा नेनावा, सुषमा, स्मिता, मीनू जोशी,

बीड शहर महाराष्ट्र से प्रकाश पगारिया, पराग, प्रदीप, केशव पटेल और सरला, आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं हसीना मान जाएगी फिल्म का ये गीत।

तोड़ तोड़ मजा लुटा ना करो, वो जाने जाना ये तो है रुसवाई प्यार की, इन बातों से बढ़ जाएगी महंगाई प्यार की, ढूंढे नहीं पाओगी तुम बाजार में आशिक दौड़।

का ना छोड़ा, तू गुस्सा जो करती है कर ले प्यार भी थोड़ा, तेरे बिना जीना मेरा जीना है क्या जीना, तड़पूंगा मैं जब आएगा सावन का महीना, वो हुस्न भी क्या हुस्न है जो इश्क ना जाने, दिलदार को और यार को बिल्कुल ना पहचाने, मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा रंग लाएगी के नाज़नी ज़ालिम हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना

लीजिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुनिए नया रास्ता फिल्म का गीत। गीतकार हैं साहिर, संगीतकार एन दत्ता और अनुरोध करता है खंडवा से यथार्थ कुमार खंडाले, सुभाष मंदा, राजेश कुमार, अंजलि, संदीप कुमार, माधुरी, पिंटू और जयश्री खंडाले। कुंदानगर खरगोन से ध्रुवास सोनबड़े, सुनीता, खुशी, प्रियांश, आशीष, पूनम, कृष्णा, शुभम सोनबड़े। पाठर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा, प्राची, अनुश्री, धनश्री। बलारशाह से सूरज लोंढे, प्राची और एकलव्य। खुपटी नेवासा से बंडू लोहार, पोपलगढ़, माया, शिवांश, चंद्रकला, देवीदास, पोपलगढ़। श्रीरामपुर भोकर से हरिभाऊ बिडवे, श्रावण और अनिता बिडवे। शाजापुर से एमएम राजावत, राज, मधु, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमल, रेखा, सरोज, आरती, उमेश, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत। अमरावती महाराष्ट्र से चंदू हतोले। मक्सी से दयाराम जाटव, चैन सिंह आरोल, नानूराम कंसोटिया, नंदकिशोर और दीपक कंसोटिया। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरव, शाइना और निवान शर्मा। डोंडी लाहौरा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय, तुषार, डॉली, पूजा, प्रभा देवी तामुरिया। ग्राम बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश, आशा, नीरज, नीलेश और अंजलि सारवा।

और लीजिए श्रोताओं, अब पेश है कार्यक्रम का आखिरी गीत। फिल्म का नाम है कभी कभी। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की, साहिल लुधियानवी के बोल हैं, संगीत खयाम का। और अनुरोध करता है ग्राम मोहत जिला बुरहानपुर मध्य प्रदेश से मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना मुबारक परवेज, रोजमीन तैमूर तड़वी,

शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनिता गौरव, राधिका, दीपिका सैनी। खंडवा से ही भवानी सिंह बैस, रोहन रिया, रणवीर सिंह और संजय पगारे। अहमदाबाद से जतिन मेहता, भालचंद्र वटके, फुलवा मेहता, विकास और नीलेश वटके। राजापेट अमरावती से दिलीप लकड़े, सुरेखा सारंग, शुभम, ज्योति रवि, तेजस्वी और विराज मोहिते। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा, कासिम अली, नदीम और जुनेद अब्बासी। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका गुनगुन, संप्रीत हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। और गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले।

0: कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह और भेजती हूँ आप तक मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, अगर धरती की धड़कनों को सुनना हो तो किसी जंगल के एकांत में कुछ पल बिताइए, किसी पेड़ की छाया में बैठकर देखिए, वहां हवा केवल बहती नहीं कितनी ही स्मृतियां साझा करती है कि कभी ऐसे ही अरण्य में ऋषियों के मुख से ऋचाएं फूटी थीं, वन के एकांत गीत में ही वेदों ने जन्म लिया था, कि कभी ऐसे ही अरण्य में श्री राम भटके थे अपनी सीता के लिए, कभी ऐसे ही वनों की नीरवता में ईश्वर को ढूंढते बुद्ध ने स्वयं को पा लिया था। वृक्षों की पत्तियां झूमती हुई समय के गीत गुनगुनाती हैं और जंगल का सन्नाटा इन वृक्षों के प्रति कृतज्ञ होता हुआ कहता है कि तपस्वियों की तरह धरती पर घोर साधना में लिप्त जान पड़ते हैं ये वृक्ष, जिनका सब कुछ दूसरों के लिए है। निश्चित ही ये वृक्ष वाल्मीकि, दुर्वासा या बुद्ध के वंशज होंगे, तभी तो ये ऋषिपुत्र जब भी लिखते हैं वसंत ही लिखते हैं। श्रोताओं, दरअसल पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, वो ऋतुओं के इतिहासकार हैं, पीढ़ियों के साक्षी हैं और आने वाले कल के सबसे विश्वसनीय प्रहरी भी। पेड़ों से ही हमारा कल, आज और कल है। श्रोताओं, हमारे देश में इन्हीं पेड़ों के उत्सव का सप्ताह होता है वन महोत्सव, जो जुलाई महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि इस धरती के लिए, हमारे आपके लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे सुंदर उपहार एक पौधा ही है, क्योंकि एक पौधा केवल आज को ही नहीं आने वाले कल को भी हरा भरा करता है। तो आज बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, हम और आप मिलकर वन महोत्सव मनाएंगे, बात करेंगे पेड़ों की, हरियाली की, पेड़ों से जुड़ी आपकी यादों की और आपके संकल्प की। बताइए हमें कि आपकी जिंदगी का वो एक पेड़ कौन सा है जिससे आपकी सबसे आत्मीय यादें जुड़ी हुई हैं। किसी पेड़ से आपका कोई खास रिश्ता हो तो बताइए हमें, और पेड़ों से जीवन का क्या रिश्ता है ये भी बताइए। साथ ही बताइए हमें कि वन महोत्सव आप कैसे मना रहे हैं, क्या संकल्प है आपका इस बरस। हमें उम्मीद है कि आपकी बात किसी न किसी के मन में हरियाली का एक नया बीज जरूर बोएगी। बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नाम बताइए।
1: मैं खेरो कला, ग्राम खेरो कला, जनपद महोबा, उत्तर प्रदेश से रमेश नायक बोल रहा हूँ। बहन जी, कौन बोल रही हैं आप?
0: मैं सुनीता बोल रही हूँ।
1: अरे सुनीता सिंह, 2 साल से इंतजार किया है आपका, जो है सुनीता सिंह से बात हो जाए।
0: जी जी जी जी,
1: मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप सच बोल रहा हूँ।
0: अच्छा,
1: मैं आपका जो है आवाज अच्छी लगती है बोलने की, और आपको बोलने का आइडिया भी बड़ा अच्छा है।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश नायक जी, कैसे हैं?
1: ठीक है जी।
0: हाँ, और मौसम कैसा है?
1: मौसम तो परसों बारिश हो गई काफी, अब तो बोनी भी चालू हो गई।
0: बिल्कुल, तो बारिश का मौसम आ गया है, और आप जानते ही हैं कि जुलाई के महीने का जो पहला सप्ताह होता है उसे हम वन महोत्सव के रूप में मनाते हैं। बारिश के
1: जैसे आपने कहा कि पेड़ पौधे लगाइए, शासन भी, सरकार भी इसी पर जोर दे रही है बहन जी।
0: जी जी,
1: पेड़ लगाना भी चाहिए और लगाए लोग बाग, उसकी परवरिश करें, जो नहीं कि पेड़ लगा दिया और फिर छोड़ दिया, परवरिश करें उसकी, जैसे जाल बढ़ना खा पाए, पानी डालते रहे।
0: जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि सिर्फ पौधा लगा देना आपका दायित्व नहीं है, उसकी परवरिश भी करें, उसको संरक्षण भी दें। हम ये जानना चाह रहे थे रमेश जी कि पेड़ों से जुड़ी कोई आपकी याद हो, बचपन की कोई याद हो, अगर आप ग्रामीण इलाके से हैं तो पेड़ों के बीच खेलते भी हैं, पेड़ों पर चढ़कर भी खेलते हैं, है ना, तो कोई बचपन की याद हो, किसी पुराने पेड़ की याद हो तो उसका आप जिक्र कर सकते हैं।
1: अब पेड़ की याद तो कुछ नहीं, पौधे तो लगाए हैं, पेड़ लगाए हैं बहन जी, यहाँ के छोटे में बस वो पेड़ों पे चढ़ के खेला करते, गिल्ली डंडा कहीं कुछ, ये यही याद है। और पेड़ काटने वाले एक दो आदमी नहीं है, कई लोग काटते हैं। अब बताओ वन या जंगल कैसे रहे, और इसका बहुत जरूरी है, इसलिए शासन भी जो है इस पर गौर कर रही है कि पेड़ लगाओ, माँ के नाम लगाओ, उसकी परवरिश करो, ये लगा देने से कुछ नहीं होता है, उसकी परवरिश भी करनी पड़ती, जानवरों से बचाया, बकरियों से,

0: कहीं गाय भैंसों से
1: जी,
0: या उसकी जो है तार बारी भी करनी पड़ती है बहन जी, सुनीता जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो रमेश जी ये बताइए कि आपका क्या संकल्प है, आप कितने पेड़ लगाएंगे इस बार?
0: नहीं, हमने लगाए भी है और सभी जो है अब लगाएंगे हम।
1: कौन कौन से पेड़ लगाए हैं?
0: ऐसे देखो, छोटी मोटे पेड़ लगाना नहीं होता है, पेड़ तो लगा तो बड़ा का या पीपल का या महुआ का।
1: नीम,
0: ये ठोस पेड़ होते हैं।
1: तो आप कह रहे हैं कि नीम, पीपल, बड़, है ना, आंवला, इस तरह के अगर हम पौधे लगाते हैं तो आने वाले समय में
0: हो, जैसे ये खटाऊ पेड़ होते हैं, ये 100-100, 200-200 साल, 500-500 साल की उम्र होती है इनकी।
1: जी, तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि ऐसे पेड़ लगाएं जिनकी उम्र भी लंबी होती है, तो आपके लगाने का जो फायदा है वो लंबे समय तक लोगों को मिलेगा।
0: जी जी जी जी। अब आज फार्मेसी प्रोग्राम तो है नहीं बहन जी?
1: नहीं, आज तो हमारी पसंद का गीत आप सुनेंगे, आपने हमें फोन किया, हमें बहुत अच्छा लगा।
0: सुनीता जी
1: जी,
0: कोई गीत हम ठीक नहीं, हम फरमाइश नहीं बता रहे, लेकिन कोई गीत सुनवाना तो रफी की आवाज हो या लता की आवाज हो, इनमें से कोई पुराना गीत सुनवा दे। एक मोहम्मद रफी, एक लता मंगेशकर, इनका कोई सानी नहीं है, ना कोई गायक हुआ है ना होगा।
1: बिल्कुल। तो रमेश जी आपने हमें फोन किया, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो मैम, नमस्ते
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी। अंबेडकर चौक टेबर वार्ड खुरई जिला सागर मध्य प्रदेश से राम सखी परमानंद बोल रहा हूँ मैम।
0: राम सखी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात आपकी
1: धन्यवाद
0: गीत
1: मैम।
0: हमारे कार्यक्रम में। क्या कहेंगे आज के विषय पर? हम वन महोत्सव मना रहे हैं।
1: वन महोत्सव बहुत जरूरी है। वन महोत्सव इस बार हमारे क्षेत्र में, खुरई विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख पेड़ों का लगाना निश्चित हुआ, तय हुआ है, जिनमें आपके फलदार वृक्ष ज्यादा रहेंगे। और हर साल तो लगते हैं, और हम व्यक्ति के तौर पे एक नीम का पेड़ हमने लगाया था भोपाल में। उस समय हम लोग भोपाल रहते थे,
0: जी जी
1: स्कूल थी 12 महल के पास।
0: जी
1: आज वो नीम का पेड़ बहुत अच्छा है, फल फूल रहा है
0: क्या बात है।
1: जी। और जी है मैम के नीम भारत का वेद है।
0: जी जी क्या बात है।
1: जी नीम भारत का वेद है। नीम, आंवला और आपका वो

0: जामुन का पेड़ जी लगाए तो बहुत अच्छा फलदार भी है और आपके लाभदायक भी है। एक पेड़ लगाया जामुन का लगा है हमारे यहाँ, 50 साल पुराना, जामुन के फल भी देता
1: जी,
0: है
1: जी, जी,
0: तो जामुन के फल तो बहुत
1: गुणकारी होते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो औषधीय पेड़ हैं, पौधे हैं, जैसे आपने नीम की बात की, आंवला, जामुन, इस तरह के अगर पेड़ लगाते हैं तो दोहरा लाभ हो जाता है ना?
0: जी मैम।
1: बचपन की कोई याद हो पेड़ों से जुड़ी हुई तो आप साझा कर सकते हैं।
0: बचपन की वो तो बता रही मैडम कि एक पेड़ लगाया था नीम का हम लोगों ने, अभी वो नीम का पेड़ है, एक जामुन का लगाया था, अभी जामुन का पेड़ भी है, बचपन की लगभग चल रहा है।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: 50 साल पहले हमारे पिताजी वगैरह ना लगा था,
1: आप हम लोगों ने मिलकर लगाया था।
0: आपके आंवला भी लगा है, नींबू भी लगा है,
1: बहुत सुंदर बात,
0: जामुन भी लगा है।
1: तो देखिए, पिताजी ने पेड़ लगाया, उसके फल आप खाते हैं, आप जो पेड़ लगाएंगे आने वाली पीढ़ी उसका फल खाएगी, उसका लाभ लेगी। इसलिए ये जिम्मेदारी हमारी होती है कि हम वृक्षारोपण जरूर करें। तो राम सखी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने हमें फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार दीदी, सनी शर्मा, गंजवासोदा, राजनगर।
0: तो सनी जी कैसे हैं?
1: दीदी बढ़िया हैं।
0: अच्छे हैं। तो आज के विषय पर क्या कहेंगे? हम वन महोत्सव मना रहे हैं, पेड़ों का क्या महत्व है जीवन में, वनों का क्या महत्व है जीवन में, और पेड़ों से जुड़ी कोई याद अगर आपकी हो तो वो भी साझा कर सकते हैं आप।
1: पेड़ हमको फल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, छाया देते हैं।
0: बिल्कुल। और जो पेड़ है वो बारिश को बुलाकर भी ले आते हैं।
1: जी जी जी
0: जी। और कितनी चीजें उनसे मिलती हैं, फल फूल लकड़ी सब कुछ पेड़ों से हमें प्राप्त होता है। तो जाहिर सी बात है कि पेड़ों से ही जीवन है ना? तो अभी जब हम वन महोत्सव मना रहे हैं तो आप बताइए कि कौन सा पौधा लगाने का आपने निश्चय किया है?
1: नीम का।
0: नीम का पौधा लगाएंगे, किस लिए?
1: फल भी मिलेंगे, छाया भी मिलेगी
0: और ऑक्सीजन भी, है ना? बहुत गुणकारी पौधा है नीम का, जरूर लगाना चाहिए नीम का पेड़। और कोई याद अगर बचपन की हो, पेड़ों के साथ तो हमारा बचपन बीतता है, अगर खास तौर पर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, है ना? तो बचपन की कोई याद हो पेड़ों से जुड़ी हुई तो वो आप साझा कर सकते हैं।
1: पेड़ों पर चढ़ना, पेड़ों पर झूला डालना।
0: सावन के महीने में पेड़ों पर झूला डालना। हाँ
1: हाँ।

0: अभी भी डालते हैं?
1: हाँ दीदी अभी भी डलता है।
0: क्या बात है। तो देखिए, पेड़ों के साथ एक आनंद है, जीवन का उत्सव है ना। तो हमें
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: अच्छा
1: जी
0: लगा सनी जी आपसे बात करके, और जो आपने कहा है कि आपका संकल्प है एक नीम का पौधा आप लगाएंगे, ज़रूर लगाइएगा। हमारी गुजारिश ये रहेगी कि पौधा लगाने के बाद भूल मत जाइएगा, जैसे एक छोटे से
1: जी
0: बच्चे को
1: जी
0: परवरिश की ज़रूरत होती है, पेड़ों को भी परवरिश और संरक्षण की आवश्यकता होती है।
1: रोज पानी डालना, खाद
0: जी
1: डालना।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: जी जी जी
0: रोज पानी डालना, खाद डालना और उसका संरक्षण करना कि उसे जानवरों
1: हाँ
0: से कोई हानि ना हो, जानवर उसे खा ना जाए, है ना। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप तक भेजते हैं एक प्यारा सा गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो मैम,
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: नमस्कार। जानकी गुप्ता, ग्राम भांगवन थनंगा, जिला टीकमगढ़ मस्तरीर से बोल रहे।
0: जानकी जी टीकमगढ़ से बोल रही हैं, कैसी हैं?
1: बहुत अच्छे हैं मैम, और फोन लग जाता तो और अच्छे हो जाते।
0: बिल्कुल, बहुत देर से हमारे श्रोता प्रयास कर रहे होते हैं, और जब फोन लगता है तो ऐसा लगता है जैसे मेहनत का फल मिल गया हो, है ना
1: हाँ, रोटी रोटी बना रहे थे इसीलिए
0: जी।
1: फोन लगाए थे,
0: हाँ
1: लग
0: हाँ
1: गया।
0: रोटियां बना रही थी आप?
1: हाँ, फोन रखे थे
0: अच्छा
1: पास में, लगा नंबर रखे थे, डाल कर रहे थे, इसलिए लग गया।
0: बहुत अच्छी बात है कि काम के बीच भी आपको आकाशवाणी की सुध रही, याद रखा आपने।
1: रेडियो सुनते रहे थे।
0: हाँ, तो आज के विषय पर क्या कहेंगी? वन महोत्सव पर हम बात कर रहे
1: मैं
0: हैं।
1: ये कहने चाहती कि अपन को लगाने चाहिए, अपन को हवा भी देते हैं और फल भी देते हैं।

0: और उस वृक्ष की सब वर्षा भी होती है जहाँ वृक्ष ज्यादा लगे रहते हैं।
1: बिल्कुल, तो आपके आसपास किस किस?
0: हमारे आसपास हमारे खुद दरवाजे के पास नीम लगी, बहुत बड़ा वृक्ष नीम।
1: अच्छा, नीम का पेड़ है आपके घर के
0: हाँ,
1: पास?
0: हम अपने आंगन में लगाए, एक मीठी नीम का पेड़ लगाए, एक
1: हाँ
0: गुलाब का पेड़ लगाए।
1: जी, तो इस बरस वन
0: इस
1: महोत्सव
0: साल में
1: में
0: हम और दूसरा पेड़ लगाएंगे, और
1: कौन सा लगाएंगे?
0: नीम वहीं का लगाएंगे, एक और मीठी नीम का।
1: मीठी नीम। तो चलिए, ये तो छोटा
0: हाँ
1: सा पौधा हुआ, लेकिन अगर कुछ बड़े फलदार वृक्ष हम लगाते हैं या कुछ बड़े पौधे लगाते हैं जो कि आगे चलकर बड़े वृक्ष बनते हैं जिनकी उम्र बहुत लंबी होती है, तो बहुत अच्छा होता है। जैसे आप पीपल का कोई पौधा लगा दें, या आप।
0: मुझे सही कहीं लेके हमारे यहाँ ऐसी जगह ना
1: अच्छा
0: लगाने
1: अच्छा
0: के लिए।
1: जी, फिर भी गांव में सब लोग मिलकर सामूहिक रूप से किसी एक स्थान
0: हाँ
1: पर भी
0: ऐसे
1: लगा
0: वैसे तो
1: सकते
0: बहुत
1: हैं।
0: पेड़ लगे हमारे ऐसे
1: हाँ
0: अगल बगल में, बहुत
1: जी
0: ज्यादा मीठी नीम के लगे, पीपल के लगे,
1: जी
0: बरगद का लगा
1: तो
0: पेड़।
1: देखिए, किसी ने कभी लगाया था तो ये पेड़
0: हाँ
1: अभी
0: लगाया है
1: है ना, तो ये पेड़
0: अभी,
1: आज आपके लिए
0: अभी
1: हैं।
0: कुछ कुछ पेड़ के पीपल के छोटे छोटे भी हैं अभी।
1: तो उनको पानी देते रहिए, उनको संरक्षित करिए। और हम ये जानना चाह रहे थे जानकी जी, कि बचपन हमारा अगर ग्रामीण इलाके में बीता है तो पेड़ों से बड़ा गहरा रिश्ता होता है, तो कुछ याद अगर रोचक सी हो पेड़ों से जुड़ी हुई तो वो आप साझा कर सकती हैं हमसे।
0: हम चक्कर के जब छोटे थे हम, तो नीम के अमरूद के पेड़े है ना, उस पर
1: हाँ
0: चढ़ते थे।
1: हाँ और अमरूद खाते
0: हमने एक
1: थे
0: जाने के बगीचा में लगे थे, तो
1: जी।
0: जाते थे उस पर
1: हाँ,
0: चढ़ते थे, फिर अमरूद खाते थे और छुपा छुपल खेलते थे पेड़ों पे।
1: वाह वाह वाह, पेड़ों पर आप मतलब
0: हाँ
1: छुपा छुपोवल खेलती थी, बहुत अच्छी बात है। और कई बार तो पेड़ पर बैठकर ही हम फल खाया करते थे अमरूद के,
0: हम
1: है ना।
0: चढ़ जाते थे पेड़ों पे।
1: हाँ, मुझे तो याद है कि मैं अपने अमरूद के पेड़ पे चढ़ के अमरूद भी खाती थी और वहीं पढ़ाई भी करती थी।
0: हाँ सही कह रही बात है।
1: तो चलिए, पेड़ों की अच्छी याद आपने साझा की, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत
0: थैंक यू मैम।
1: धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने अगले श्रोता का। नमस्कार, नाम बताएं।
1: हाँ दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते,
1: आपके नियमित श्रोता भागचंद साहू जी, राजेंद्र नगर, गंज वासोदा, जिला विदिशा।
0: अच्छा भागचंद साहू जी, कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया है दीदी, आप कैसी हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। मौसम कैसा है?
1: मौसम बढ़िया है, गंज वासोदा में थोड़े बदल हो रहे हैं।
0: तो बारिश आ रही है और वन महोत्सव मनाया जा रहा है। मौसम को देख कर ही जुलाई के पहले सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है, तो हम चाहते हैं कि आप इस विषय पर कुछ कहें, अपने विचार रखें वन महोत्सव पर, वनों के महत्व पर, पेड़ों से जुड़ी कोई याद हो तो वो भी साझा कर सकते हैं।
1: हाँ, हम तो ये कहना चाहते हैं दीदी, देखो हर व्यक्ति को पेड़ों की कटाई बिल्कुल ना करे, क्योंकि ये बरसात, इसी के कारण से बरसात डिफरेंस हो रही है
0: जी।
1: हैं, आदमी क्या है, वृक्ष वगैरह काट रहे हैं, पेड़ पौधे कम लगा रहे हैं, पेड़ पौधे ज्यादा लगाए अपन ऑक्सीजन मिलेगी है और छाया भी मिलेगी, इस प्रकार से उनमें पानी, समय समय पानी दें, उनकी छटाई करें,
0: उसकी परवरिश
1: करें। हमने तो एक नीम का पेड़ लगाया था दीदी।
0: अच्छा,
1: वो अभी लगा है।
0: अच्छा, कब लगाया था?
1: हमने दीदी कम से कम हो गए 20 साल हो चुके हैं उसको।
0: वाह, तो ये तो बड़ा हो गया होगा पेड़।
1: अरे बहुत बड़ा है दीदी, इतना है उसकी, गर्मी में वहीं बैठते हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: हाँ हाँ, नीम का पेड़ कितना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है।
0: बहुत अच्छा होता है, गुणकारी पेड़ है ना, कई औषधीय गुण इसके अंदर होते हैं। आप इस बरस कौन सा पेड़ लगाने वाले हैं
1: दीदी? अब तो हम देखो, अब उसका लगाएंगे, आम का पेड़ लगाना चाहते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है,
1: आम का पेड़ लगाएंगे जिससे सबको फल भी मिले खाने के लिए।
0: हाँ,
1: और एक प्रकार से छाया भी मिले।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है भागचंद साहू जी कि आपने एक नीम का पेड़ लगाया था 20 बरस पहले, और अब आप कह रहे हैं कि आम का पेड़ लगाएंगे जो कि फल भी देगा।
1: आम का पेड़ जरूर लगाएंगे, माँ के नाम लगाएंगे।
0: क्या बात है, एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाइए।
1: बिल्कुल लगाएंगे जी, हमारा वादा।
0: तो भागचंद साहू जी, बहुत अच्छा लगा हमें ये जानकर कि आपने एक नीम का पेड़ लगाया था 20 बरस पहले, जो बहुत बड़ा हो गया है, छाया देता है, और इस बरस आप आम का पेड़ लगाने वाले हैं। तो इस संकल्प को बनाकर रखिए और अपने साथ और भी लोगों को जोड़िए। हमें बहुत खुशी हुई कि आपने हमें फोन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नाम बताइए।
1: गोविंद पाटीदार।
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी मंदसौर जिले से।
0: मंदसौर जिले से। तो गोविंद जी, आज हम वन महोत्सव पर बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? वनों का क्या महत्व है? जंगल कभी गए हैं आप?
1: जी हाँ।
0: तो किस तरह का?
1: वनों का तो हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है मैम। पहले के जमाने में इतने जंगल थे कि मतलब बिना कहे बारिश हो जाती थी। अब मतलब अपने आसपास का जो वातावरण रहता था वो बहुत ही शुद्ध और अच्छा रहता था।
0: जी जी, वन ज्यादा होते हैं तो पृथ्वी के तापमान को भी नियंत्रित करते
1: हाँ,
0: हैं वो,
1: है ना? करते हैं हाँ, सही बात।
0: और बारिश तो होती ही है, मिट्टी के कटाव को वो रोकते हैं। तो कौन सा पौधा लगाएंगे इस साल आप?
1: जी इस साल तो हम आम का पौधा लगाएंगे।
0: आम का? अच्छा, तो अकेले लगाएंगे या आपके साथ कुछ और दोस्त भी हैं?
1: जी हमारा तो खेती बाड़ी है, जो हम तो बोले अकेले लगाएंगे। मैं हर साल हमारे तो पौधे लगाने का काम रहता, कभी नींबू का लगा लिया, कभी
0: जी जी जी
1: अपने फूलों के लगा लिया, कभी पीपल का लगा लिया, कभी नीम का लगा लिया, कभी इमली का लगा लिया।
0: अच्छा,
1: तो
0: बहुत अच्छी बात है।
1: आप रखे भी रहते हैं मैम, और आगे अपने को फायदा भी है इनसे।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी फायदा है, आने वाली पीढ़ियों को भी फायदा है, इसलिए वृक्षारोपण जरूर करना चाहिए। अच्छा, बचपन की कोई याद हो आपको, अगर जंगलों से जुड़ी हुई, वनों से जुड़ी हुई या पेड़ों से जुड़ी हुई कोई याद हो?
1: मैम याद है, पहले बचपन में छोटे थे तब हमारे दादाजी आम का वृक्ष लगाते थे खेतों पे, तो वो छोटे छोटे वृक्ष जो रहते थे ना, तो उस समय हम वो कलम तारी का जो खेल होता था एक
0: जी,
1: पहले
0: जी।
1: जो उस हिसाब से वो खेल याद है बचपन का, हम खेलते थे छोटे।
0: तो आप मतलब पेड़ों पर आप लोग खेलते थे?
1: जी हाँ।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: खेल ही पेड़ के वृक्ष का ही था मैम।
0: तो क्या करते हैं इस खेल में?
1: अरे जैसे एक लकड़ी ले लेते हैं, वो चार पांच जो साथ में अपने मित्र लोग होते हैं वो कहते हैं कि ऊपर वृक्ष पे चढ़ के उस लकड़ी को फेंकते थे, इतना दूर फेंकते थे कि जहाँ तक जा सके अब उसको फेंकते, तो वो एक जो लड़का जो रहता वो उसको लेके ना वापिस वृक्ष के नीचे रख देता उस लकड़ी को, और ऊपर पेड़ पे चढ़ के हम सबको पकड़ने के लिए आते थे।
0: क्या बात
1: है। करके जो नीचे कूद के ना उस लकड़ी को हाथ लगा रहे उसको तो पकड़ नहीं पाता, वो जो ऊपर रहते उनको पकड़ते थे।
0: तो चलिए, बड़ा ही रोचक सा ये खेल था। कोशिश कीजिएगा कि आपके बच्चे भी इसको खेलें, उन्हें सिखाइए। क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी मेहनत होती होगी कि स्वास्थ्य भी बनता होगा इसमें, है ना?
1: हाँ, स्वास्थ्य में तो खेल बहुत लाभदायक होते हैं।
0: जी जी। तो गोविंद जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत प्यारी मीठी सी याद भी आपने साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। नाम बताइएगा।
1: मेरा नाम सुमत कुमार जैन, रिटायर्ड शिक्षक, पिंडरई जिला मंडला से बोल रहा हूँ मैडम।
0: आज वन महोत्सव पर हम बात कर रहे हैं और आपने जैसा कि बताया कि आप एक शिक्षक रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से आप?
1: वृक्षों का बहुत बड़ा महत्व है मैडम। ये वन महोत्सव जो मनाया जा रहा है ये भी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन से भरपूर, छांव से भरपूर जीवन जीने के लिए वृक्षों की बहुत आवश्यकता है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा मैडम।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: माताएं बहने कुछ वृक्षों की, जैसे बड़ का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, इनकी पूजाएं भी करती हैं और इनको बहुत महत्व भी देती हैं। तो मैं समस्त लोगों से निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और पर्यावरण और जीवन को सफल बनाएं।
0: तो बहुत ही सुंदर।
1: मैं अपने स्कूली जीवन में भी नीम के पेड़, पीपल का पेड़ और कंजी का पेड़, ऐसे पेड़ों को लगाते रहता था और उनकी देखभाल भी करता था और आज वो जीवित भी हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। और देखिए, जैसा संदेश आपने दिया है, कुछ इसी तरह का आह्वान हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी रहा है, एक पेड़ माँ के नाम, है ना, चाहे धरती माता के नाम या अपनी माता जी के नाम, एक पेड़ लगाने का आह्वान उन्होंने भी किया है देशवासियों से। तो इस बरस आप कौन सा पेड़ लगाएंगे?
1: मैं इस वर्ष तो आम का पेड़ अभी लगाया हूँ, उनकी गोहियाँ जो है अच्छी प्रकार की गोहियाँ हैं, उनको मैंने अभी लगा दिया हूँ अपने घर के सामने। अब वो जब छोटा पौधा बन जाएंगे तो मैं उनको कहीं व्यवस्थित लगाने का प्रयास करूंगा मैडम।
0: तो आप कुछ
1: फलदार वृक्ष जीवन में सफलता, फलदार वृक्ष जीव, सब लोगों को खाने पीने का मौका भी मिलता है, पेड़ पशु पक्षियों को भी उसमें आवास बनाने की सुविधा मिल जाती है। जीवन में सफलता ही देते हैं मैडम। पेड़ पौधों को काटना या उनको नुकसान पहुंचाना हमारे मानव जीवन को खतरा पैदा करना है।
0: बिल्कुल। तो आपका संदेश लोगों तक पहुंचा सुमत कुमार जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी मैडम, धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: जब शाम जाटा
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जिला सीपी गाँव का नाम जोराई।
0: जोराई से जसराम जाटव जी बोल रहे हैं। क्या कहेंगे वन
1: हाँ,
0: महोत्सव पर? किस तरह से आपके यहाँ वन महोत्सव मनाया जा रहा है? 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वृक्षारोपण किया जाता है इस सप्ताह में। तो वन महोत्सव में आप लोग क्या कर रहे हैं और पेड़ों का क्या महत्व है, आप क्या कहेंगे?
1: पेड़ों का मतलब ये है मैडम, क्या पेड़ लगाना चाहिए तो इससे छाया मिलती है, ऑक्सीजन भी मिलता है मैडम, इससे बहुत अच्छा रहता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो
1: हाँ
0: आप कौन सा पेड़
1: मैडम,
0: लगाएंगे इस बरस?
1: या मैडम इस तरह पेड़ लगाएंगे, क्योंकि इस तरह पेड़ लगाएंगे तो बरसात आएगी तो अच्छा अच्छे से हो जाएगा ना।
0: हाँ, ये तो महत्व की बात हो गई। आप कौन सा पौधा लगाने जा रहे हैं?
1: आम का पेड़ लगाने की सोच रहे हैं मैडम।
0: आम का पौधा लगाएंगे, और उसको जब लगाएंगे तो उसकी
1: हाँ
0: परवरिश भी कीजिएगा और उसको संरक्षण भी दीजिएगा, ताकि वो एक बड़ा पेड़ बन सके, है ना?
1: हाँ वो तो सही है।
0: तो कोई याद है बचपन की पेड़ों से जुड़ी हुई?
1: हाँ मैडम, क्या बचपन की याद है, वो क्या है, हम हमारे दोस्त के साथ में रहते थे तो बहुत अच्छा लगता था, खेलना खेलना कूदना अच्छा लगता था मैडम हमको।
0: तो पेड़ों पर चढ़ के खेलते थे?
1: हाँ मैडम, जो क्या है, पहले पेड़ पे जो पेड़ वाला जो खेल नहीं होता है वो खेल को खेलते थे पहले।
0: कौन सा खेल?
1: अरे जो पेड़ पे खेलती है ना, जो क्या बोलती है,
0: लुका छुपी?
1: रगदामन बोलती,
0: क्या बोलते हैं?
1: वो रगदामन बोलती थी मैडम। तो क्या है, इस पे डंडा, एक एक एक लकड़ी का डंडा लेते थे तो इस पे पेड़ पे छिलका देते थे।
0: हम समझ गए। हमारे एक और श्रोता ने इस खेल का नाम बताया था, लुका छुपी की भी बात कुछ लोग करते हैं इसमें। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपके आसपास इस तरह के खेल हैं जो पेड़ों से जुड़े हुए हैं और इन खेलों को आप खेलते हैं। आज के बच्चे भी खेलते हैं?
1: हाँ मैडम, क्या बच्चे भी खेलते हैं।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। पेड़ पौधों के साथ जब आप रहते हैं तो एक रिश्ता उनसे बनता है आपका, है ना? बचपन की एक याद आपके मन में है कि आप किस तरह पेड़ों के साथ खेलते थे। तो जसराम जी, आपने हमें फोन किया, हमें बहुत अच्छा लगा। आम का पौधा जरूर लगाइएगा और कुछ लोगों को और प्रेरित कीजिएगा कि वो भी पौधे लगाएं। तो आपने हमें फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैम जी आपका स्वागत। मैं आपका नीमे सोता बोल रहा हूँ जी। जय नरसिंह देव FM रेडियो ग्रुप ग्राम करकबेल तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर से कमलेश कहार।
0: कमलेश कहार जी, आपने हमारा स्वागत किया जबकि स्वागत हमें करना चाहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में। कैसे हैं?
1: सब कुशल है मैम जी। हरियाली के बीच में खड़ा हूँ मैम जी मैं आज।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो क्या कहेंगे, वन महोत्सव किस तरह से मनाया जा रहा है?
1: अच्छा मैम जी, विषय यही है।
0: हाँ जी, विषय यही है, वन महोत्सव पे हम बात कर रहे हैं, वनों पर, पेड़ों पर।
1: तो मैं थोड़ा सा अपना माहौल वहाँ को देखा हाल सभी श्रोताओं को और आपको सुनाना चाहूंगा आकाशवाणी के माध्यम से।
0: जी,
1: कि मेरे सामने चांदनी का वृक्ष लगा है जिसमें कि छोटे छोटे फूल लगे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और दूसरा वृक्ष कह सकते हैं नींबू के लगा है,
0: अच्छा।
1: बीही का लगा है जिसमें फल भी फले हैं बीही के, और कम से कम बीही के 10-12 वृक्ष ऐसे हैं जो फले हुए हैं।
0: वाह वाह वाह।
1: और
0: तो ये बताइए कि वनों का क्या महत्व देखते हैं आप कमलेश जी?
1: देखिए, वनों का महत्व, यदि वन है तो हम है।
0: बिल्कुल,
1: यदि ईमानदारी से बात की जाए, सचमुच में बिल्कुल हकीकत में जमीनी स्तर पर बात की जाए
0: जी,
1: तो वन के माध्यम से हमारा जीवन है। यानी जंगल और जीवन, ये दोनों आवश्यक है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: यदि जीवन चाहिए तो जंगल जरूरी है। जंगल किसका? कंकरण का नहीं मैम जी, पेड़ पौधों का।
0: पेड़ पौधों का, बिल्कुल। अगर वन है तो ऑक्सीजन है ना। वन है तो मिट्टी का कटाव रुकता है। वन है तो प्राकृतिक जो जीव है, जीव जंतु, उनको भी आवास मिलता है, और हमें भी फल फूल लकड़ी औषधि सब वनों से प्राप्त होता है ना।
1: और वन के माध्यम से मैम जी देखिए बरसात है वो आकर्षित होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: देखिए मैम जी, यही कह रहा था कि पौधे की बात हुई है तो मैं तो मैम जी सबसे ज्यादा पौधे छोटे रूप में पसंद करता हूँ। मैंने कभी बरगद का वृक्ष लगाया था जो कि आज वो पेड़ का रूप आकार ले चुका है, और एक नीम का लगाया था, उसकी नीम की छाँव में आज वर्तमान में लोग खड़े होते हैं।
0: क्या बात है, आपने दोनों बड़े महत्वपूर्ण पेड़ लगाए, बरगद और नीम जी।
1: मैम जी, जब पेड़ के नीचे खड़े होते हैं ना, लोग ये महसूस करते हैं कि काश पेड़ होते हैं, लेकिन जब उस छाए से जब वो दूर चले जाते हैं तो उस पेड़ को काटने की भी सोचते हैं। तो ये दो प्रकार की गतिविधियां आती हैं मनुष्य के मानसिक रूप से।
0: जी जी, तो पेड़ों की रक्षा करनी है और पेड़ ना कटें इसके लिए प्रयास करना चाहिए हमें।

0: तो कमलेश जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि बचपन की कोई याद हो पेड़ों से जुड़ी हुई, कितने व्रत अनुष्ठान पेड़ों से जुड़े होते हैं, कितना खेल पेड़ों से जुड़ा हुआ होता है ना, तो इस तरह की कोई याद हो अगर आपके मन में बचपन की।
1: देखिए मैम जी, बचपन में पेड़ों के साथ बहुत खेले, क्योंकि बिना पेड़ पौधे के मैं समझता हूँ जीवन अधूरा है, पहले ही कहा है।
0: जी जी।
1: तो बहुत से वृक्षों पे चढ़ते थे, फल भी तोड़ते थे, गिर भी जाते थे, पुनः फरोसी पर चढ़ते थे।
0: बिल्कुल।
1: तो उछल कून पेड़ों के माध्यम से, पौधों के माध्यम से हुई है, और वर्तमान में मेरे घर में भी छोटे छोटे पौधे लगे हैं फल फूल के, जिनको मैं स्पर्श करता हूँ, रोज ही कह सकता हूँ उनके चरण पड़ता हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: फूल चढ़ाने की बात होती है तो फूल चढ़ाने से पहले मैं फूल वाले जो वृक्ष होता है, पौधा होता है, उसके सचमुच में पेड़ पड़ता हूँ और स्वीकृति मांगता हूँ कि मैं एक दो फूल तोड़ लूँ।
0: बहुत सुंदर बात है। आयुर्वेद में भी ये कहा जाता है कि जिन औषधियों को जब वैद्य तोड़ने जाते थे औषधियों को, तो पहले वो उस पेड़ की पूजा करते थे, उस पौधे की पूजा करते थे, अनुमति लेते थे और आभार के साथ वो औषधि वो लेते थे अपने दूसरे लोगों के इलाज के लिए। तो हमारी तो संस्कृति ही आभार की रही है। आपकी बात सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा कमलेश जी, कि आप अगर एक फूल भी तोड़ते हैं तो आभार के साथ तोड़कर उसे ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं।
1: और मैम जी, आभार आपका भी है, बहुत ही अनुकूल वृक्ष दिशा रखा है, मेरे अलावा आपने अपनी बात भी रखी है, अच्छा लगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपने फोन किया। इसी तरह जुड़े रहिए हमसे। आप तक भेजते हैं प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आज बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में ये सफर बेहद हरा भरा और खूबसूरत रहा। आपने केवल पेड़ों की चर्चा नहीं की, उनका महत्व ही नहीं बताया, बल्कि उनसे जुड़े अपने जीवन के वो अनमोल रिश्ते भी हमसे साझा किए जिनकी छाँव में यादें महकती हैं, संस्कार पनपते हैं और भविष्य मुस्कुराता है। याद रखिए, पेड़ कभी अपने लिए नहीं जीते, वो खुद धूप सहते हैं और दूसरों को छाया देते हैं। वो बारिश को थामते हैं, पंछियों को घर देते हैं और निस्वार्थ भाव से जीवन को समृद्ध बनाते हैं। और ये भी याद रखिए कि वन महोत्सव का ये सप्ताह तभी सार्थक होगा जब हमारे आपके हाथों से लगाया गया एक छोटा सा पौधा आने वाले सालों में किसी राहगीर को छाया दे, किसी पक्षी को आश्रय दे और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा का उपहार दे। आइए आज एक छोटा सा संकल्प लें कि हम हर वर्ष कम से कम एक पौधा जरूर लगाएंगे और उससे भी बढ़कर उसे वृक्ष बनने तक अपना स्नेह और संरक्षण देंगे। चलते चलते हमारी यही कामना कि धरती यूं ही हरी भरी रहे, नदियां गुनगुनाती रहें, पंछियों का कलरव यूं ही गूंजता रहे और आने वाली पीढ़ियां भी खिलखिलाती रहें, चहकती रहें, महकती रहें। इसी कामना के साथ अब इस कार्यक्रम से इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता करेंगे। इसमें पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान होगा। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री ताकाइची के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की आशा है। स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग में मध्य प्रदेश के 10 विद्यालय विभिन्न श्रेणियों में चयनित हुए हैं, जिसमें रतलाम जिले के सांदीपनी विद्यालय जावरा ने प्रथम और राजधानी भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि प्रदेश की नवीन श्रम संहिताओं के प्रस्तावित राज्य नियमों को अधिक सरल, व्यवहारिक और श्रमिक केंद्रित बनाया जाए। गौरतलब है कि 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित कर 4 नई श्रम संहिताएं तैयार की गई हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा कल से शुरू हो रही है। इसके लिए आज जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप से कड़ी सुरक्षा के बीच 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ। जत्थे में बालटल और पहलगाम रूट के यात्री शामिल हैं। अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी और मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य प्रदेश पहुंचने की संभावना है। आज भोपाल, इंदौर सहित उज्जैन और 40 से अधिक जिलों में तूफान के साथ बारिश का अनुमान है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हमने ली है आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, रामाधार दुबे, सुमेर सुदामा, शेख मुनीर और इनके गांव के लोगों ने ये हमें ख़त लिखा है। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन, आप सभी ने हमें लिख भेजी है भीगी पलकें फिल्म के गाने की फरमाइश, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। तो आइए आपकी फरमाइश पर हम सुनवाते हैं भीगी पलकें फिल्म से ये गीत।

भाटरपारा, दंते गीसे, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, जाविंद्र कुमार वर्मा, बंडा बेलई से लक्ष्मण रेकवार, विनीता रेकवार, वैशाली, वैष्णवी, अनरत, हल्ले, ऋषि रेकवार, आप सभी ने सुनना चाहा है रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का नगमा, जिसे आवाज़ें दी हैं लता मंगेशकर और मुकेश ने। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये नगमा।

आइए सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं साहू नगर से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतना, रोशनी और बेबी प्रियांशी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आप सभी ने सुनना चाहा है थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से नगमा, जिसे आवाज़ दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये नगमा।

शाहजहाँपुर से मनमोहन राजावत, राज मधु, राशि रक्षित चितरंजन, कमल उमेश, सरोज आरती, रेखा रितिका, ऋचा स्वीटी, रिया रीत, ऋषभ और इनके परिवार के सभी सदस्य। डोंगरगांव से राजपाल गजबिये, राधिका, बेबी अनिष्का और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप सभी ने सुनना चाहा है फना फिल्म का नगमा, आवाज़ें सोनू निगम और सुनिधि चौहान की। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं फना फिल्म से ये नगमा।

सोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सनमति पंचोलिया। आप सभी ने सुनना चाहा है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये नगमा।

0: जीने की राह फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से?
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
5: 2 लाख क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे,
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: CERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।
3: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
4: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
5: क्या?
4: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
5: वो कैसे?
4: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
5: पर सुनेंगे कैसे?
4: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
6: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं हंसना मना है धारावाहिक का पहला भाग।

दोस्तों नमस्कार, आप सभी को आज की इस खास और बहुत खास महफिल में शामिल करते हुए मुझे यानी आपके दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी को बेहद खुशी हो रही है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मनमांगी मुराद मिल गई हो, मीठे मीठा रसगुल्ला मिल गया हो। यूं तो कहने को इस प्रोग्राम का नाम हमने रखा है हंसना मना है, मगर हमारी कोशिश आपको ज्यादा से ज्यादा हंसाने की होगी। इसे यूं भी समझ लीजिए कि हमने आपकी नाक घुमाकर पकड़ने की कोशिश की। दोस्तों हंसना हंसाना अकेले में कभी अच्छा नहीं लगता, बस यही सोचकर हमने अपने साथ शामिल किया है राजेश मिश्रा, विनय जैन, गोपाल तिवारी, संजय गायकवाड़ और मकरंद बड़नेरकर को। ये सभी बारी बारी से आपको खुश करने की कोशिश करेंगे। अगर पसंद आए तो हमारे साथ हंसिएगा जरूर, और ना पसंद आए तो भी जरूर हंसिएगा। दोस्तों आज के जमाने में हंसना हंसाना बड़ा मुश्किल काम है। आप हम सभी दिन रात लगे रहते हैं अलग अलग जोड़ तोड़ में, है ना, मगर हमारी जोड़ तोड़ है आपको हंसाने की। तो आइए शुरू करते हैं ये खास प्रोग्राम जो आपके लिए है, जिसका नाम है हंसना मना है।

एक ऐसे शहर की कहानी लेके आया हूँ आपके सामने जहाँ बहुत सारे तांगे चलते हैं, टैक्सियां भी हैं और वगैरह वगैरह और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, मगर तांगे बड़े जबरदस्त हैं। तो तांगे पे सफर कर रहे थे एक महाशय जो पहली बार उस शहर में पहुंचे थे। तो सफर करते करते जहां उनको जाना था जा रहे थे, धीरे धीरे तांगा चला जा रहा था, अचानक उन्होंने दो चार गधे उस शहर में देखे। तो कुछ मजाक करने का उनका मूड आ गया, तो तांगे वाले से क्या बोलते हैं, क्यों तांगे वाले भाई, आपके शहर में गधे बहुत हैं? तो तांगे वाले ने जवाब नहले पे दहला दिया। उन्होंने सवारी से क्या बोला, हाँ साहब गधे तो खैर हैं, लेकिन कभी कभी बाहर से भी आ जाते हैं। एक पत्नी ने अपने पति से क्या कहा, अजी सुनते हो, मुन्ने को पकड़े रहना वरना गुम हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उनके पति देव क्या बोलते हैं, परवाह ना करो, नो प्रॉब्लम, एक बार कोलंबस गुम हो गया था तो उसने अमेरिका की खोज कर ली थी, अपना मुन्ना गुम हो गया तो किसी देश का उद्धार करेगा वो। एक बच्चे की माँ ने अपने बच्चे से पूछा, क्यों पप्पू तुम्हें जो भाषण कला में स्कूल में पहला इनाम मिला था ये खबर सुनकर तुम्हारे पापा ने क्या कहा? लड़का बोलता है, मम्मी उन्होंने कहा कि तेरी माँ के जो गुण हैं वो धीरे धीरे तेरे अंदर आ रहे हैं। एक फिल्म निर्माता ने पूरे दावे के साथ एक बात कही, वो क्या बोलता है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे पूरे देश में भावनात्मक एकता है। तो लोगों ने बोला, भाई कैसे, ये बात आप कैसे बोलते हो? तो उन्होंने कहा, मेरी फिल्म महाराष्ट्र में पहुंची पिट गई, मध्य प्रदेश में पहुंच गई पिट गई, बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में, जहां मैंने अपनी फिल्म को प्रदर्शित किया वहां पर पिट गई। इस तरह से ऐसा महसूस होता है कि पूरे देश में भावनात्मक एकता है। एक फिल्म डायरेक्टर ने एक कलाकार को बुलाया और उससे कहा, हाँ तो तुम एक काम करो, तुम मेरी फिल्म में एक बेवकूफ का रोल करोगे। लड़का बोलता है, किसका रोल करेंगे सर? ओहो, तुम मेरी फिल्म में एक बेवकूफ कलाकार का रोल करोगे, तो सर इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो डायरेक्टर बोलता है, कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम जैसे दिखते हो बिल्कुल ठीक है फिट है रोल में। ट्रेन चल रही थी, लोग सफर कर रहे थे, मैं भी बैठा था, कुछ और भी लोग बैठे थे, कुछ माताएं बहनें बैठी थी, बच्चे भी बैठे थे। जो चार पांच महिलाएं बिल्कुल आमने सामने जो बैठी थी वो आपस में बातचीत कर रही हैं। एक ने कहा, मेरी उम्र इस समय होगी करीब करीब 33। लेकिन बोला झूठ, उनकी उम्र 33 नहीं, उससे ज्यादा थी। तो सामने वाली बोलती, आपकी 33 से मेरी भी करीब कोई 31 होना चाहिए, जबकि उनकी कम से कम 50 थी, लेकिन बोलती है 31 की। तो कोई बोलता है 25, कोई बोलता है 28, कोई बोलता है कुछ। अचानक ये सब बातें सुनते सुनते ट्रेन तो चली जा रही थी, तो एक लड़का छोटा सा ऊपर बैठा हुआ था, करीब करीब होगी उसकी उम्र 17-18 साल की, वो अचानक गिरा, वो नीचे, कहाँ, वो जो माताएं बहने बैठी थी उनके पास में जाके गिरा। तो एक महिला बोलती, अरे तू कहाँ से आया? तो लड़का बोलता, मेरा जन्म अभी अभी हुआ है। एक बच्चा परीक्षा की तैयारी कर रहा था, पढ़ रहा था, उनके पिताजी उसके बिल्कुल सामने बैठे हुए थे। बच्चा पढ़ता है, क्या पढ़ता है, 8 2 6 56, 8 2 6 56, 8 2 6 56। तो उसके पिताजी

0: आप तो तारीफ किए जा रहे हो, तो उनके पिताजी बोलते हैं, बच्चे के पिताजी बोलते हैं, हमको मालूम है 8 × 16 होता है। मैं अपने बच्चे की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ, वो बोल रहा है 8 × 56, मैं मानता हूँ कि वो गलत है। उसके बाद मैं अपने बच्चे की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि कल में और आज में बड़ा फर्क है। मैंने कहा साहब आपकी बात समझ में नहीं आई, यही बच्चा मेरा कल 8 × 96 बोल रहा था। क्यों लटोरे लाल, यहाँ आओ भाई यहाँ आओ। लटोरे मेरे पास आया, वो कहता है नमस्ते बाबू जी। बोलिए, क्यों लटोरे ये जो तुम कमीज पहने हो इसमें गांठ बंधी है, क्या बात, कुछ बंधा हुआ है क्या?
1: नहीं बाबू जी, गांठ मतलब हमको याद रखने के लिए बांधी गई है।
0: अच्छा, किसने बांधी?
1: मेरी धर्मपत्नी ने ये गांठ बांधी है।
0: क्यों भाई, ऐसा क्या है, क्यों बांधी?
1: नहीं, उन्होंने कहा था हम जो तुमको चिट्ठी दे रहे हैं तुम जाके पोस्ट ऑफिस में डाल देना, भूलना नहीं, इसलिए हम तुम्हारे कमीज में गांठ बांध रहे हैं।
0: हमने बहुत बढ़िया स्टाइल है भाई, तो वो चिट्ठी कहाँ है?
1: वो हमारी धर्मपत्नी हमको देना भूल गई।
2: ध्यान रहे, आप सुन रहे हैं एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है हंसना मना है। मगर जब विनय जैन आ जाते हैं तब हंसी आए बिना कहाँ रुकती है।
3: दुनिया में तरह तरह के इंसान हुआ करते हैं, कुछ लोग आधी बात सुनकर उसका पूरा मतलब निकाल लेते हैं और कुछ लोग आधी बात समझे बिना ही उसका मतलब निकाल लिया करते हैं। तो देखिए, आधी बात सुनकर और जो लोग बात दूसरी निकल आती है और उसका गलत अर्थ कैसे निकालते हैं या उसकी कैसी स्थितियां बन जाती हैं, उसका नमूना देखिए। एक साहब अपने दोस्त से बहुत दिन बाद मिले और पूछा कि क्या बात है भाई बद्री, बहुत उदास दिख रहे हो। कोई बात नहीं है, कुछ तो बात है यार, तुम हमारे इतने अच्छे दोस्त हो, बचपन से हम तुम्हें जानते हैं, जरूर तुम बात छुपा रहे हो। अब तुम तो मेरे खास दोस्त हो, तुमसे क्या छुपाना। बात दरअसल ये है कि हमारे घर में वो जानवर पालने का शौक घर वालों को रहा आया है, तो वो भैंस पाली थी तो उसके कारण थोड़ा उसका स्वास्थ्य गड़बड़ है, इसलिए मेरा मन खराब है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, अरे गाय भैंस तो हमारे घर के लोग भी पाला करते थे। है हाँ, और क्या, फिर और क्या, एक बार हमारी भी भैंस की तबीयत खराब हो गई थी, अपन ने तो बस भैया वो आधा लीटर मिट्टी के तेल में खली चुनी मिला के खिला दी थी। है और क्या, इतने में बात खत्म हो गई, दूसरी निकल आई, भैया की आधी बात रह गई, चले गए। दूसरे दिन मिले तो और उदास। बोले क्यों बद्री, क्या बात है? बोले यार गड़बड़ हो गया यार। गड़बड़ हो गया, कैसे गड़बड़ हो गया? बोले साहब जैसा आपके यहाँ आपकी भैंस की तबीयत नहीं खराब हुई थी तो आपने आधा लीटर मिट्टी के तेल में खली चुनी मिला के खिला दिया था, हमने भी खिला दिया। हाँ फिर वो तो मर गई यार। हाँ वही तो, हमारी भी तो मर गई थी। और कुछ लोग बहुत ज्यादा समझदार हुआ करते हैं, पूरी बात सुनने के बाद भी उसका अर्थ किस तरह निकालते हैं, इसका नमूना देखिए। दो साहब विदेश घूमने पहुंचे, एयरपोर्ट पर जैसे ही उतरे उनके पास एक गाइड आ जाता है और फौरन उनसे पूछता है, एक्सक्यूज मी सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मे आई हेल्प यू। दोनों समझदार एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं, गाइड समझता है कि शायद इनको अंग्रेजी ना आती हो तो वो उनसे हिंदी में सवाल करता है, महाशय जी क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, अगर आप चाहें तो। दोनों समझदार फिर एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं तो तीसरी बार वो चीनी भाषा में इनसे यही सवाल करता है। दोनों समझदार फिर एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं, फिर वो रशियन लैंग्वेज में गाइड उनसे यही बात पूछता है, ये फिर एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं, फिर वो जैपनीज में पूछता है, दोनों समझदार फिर एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं, सबसे आखिरी में वो इनसे कौन सिर खपाए निकल जाता है। दोनों समझदार एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं, जब वो चला जाता है तो एक समझदार दूसरे समझदार से बोलता है, यार सत्ते अब ऐसा लगता है अपन लोगों को भी 2-4 भाषाएं सीखनी पड़ेंगी। तो दूसरा समझदार जवाब देता है, कोई मतलब नहीं है, उसको भी तो 4-5 भाषाएं आती थी, कोई मतलब निकला। एक मास्टर साहब क्रिकेट के बहुत शौकीन थे, जब भी अपनी विद्यालय में अपनी कक्षा में पढ़ाने जाते तो क्रिकेट की बातों का समावेश जरूर रहता था। अचानक उनके दिमाग में क्रिकेट भरा हुआ था और जैसे ही वो अपनी कक्षा में पहुंचे एक बच्चे को फौरन खड़ा कर दिया,
4: राजेंद्र खड़े हो जाओ, क्रिकेट का पहाड़ा सुनाओ।
3: लड़का घबरा गया, उसके बाद भी धीरे से चालू हुआ,
5: है ना क्रिकेट एकम क्रिकेट, क्रिकेट दुनिया विकेट, क्रिकेट दिया कैच, क्रिकेट चौकी मैच, क्रिकेट पंजे फील्डिंग, क्रिकेट छक्के बैटिंग, क्रिकेट सत्य सेंचुरी, क्रिकेट अट्ठे कमेंट्री, क्रिकेट नंबर डाउट, क्रिकेट धाम आउट।
6: हाँ भेजा क्रिकेट धाम आउट, बहुत अच्छा पहाड़ा बनता तुमसे, बहुत हंसना है, दांत निकाल के निबंध लिखो अंग्रेजी में, हमारी टोपी पर निबंध लिखो, चलो अंग्रेजी में निबंध लिखो, स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, गलती हो तो हमसे पूछ सकते हो, चलो।

0: प्रबंध लिखो, इंग्लिश में हमारी टोपी पर लिखना है। माफा फटी फटाई की स्पेलिंग क्या होती है? भेजा फटी फटाई की स्पेलिंग क्या होती है?
1: गोपाल तिवारी बड़े शरीफ इंसान हैं, मगर इतने भी नहीं कि आप जो कुछ भी कर रहे हो ये कुछ ना समझते हो। अब देखिए, पता नहीं इन्होंने कहां क्या देख लिया, सीधे चले आए कुछ सुनाने। अगर यकीन ना हो तो सुनते हैं इन्हें।
2: एक विद्यालय में मैं गया तो बहुत बढ़िया एक बात देखी कि एक बहुत अच्छे संस्कार उन्होंने अपने बच्चों में डाले थे कि बच्चों से प्रार्थना के समय गुरु जी कहा करते, चलिए सावधान की स्थिति में आंखें बंद और सबसे पहले अपने अपने माता पिता और गुरु का ध्यान करेंगे, ये 2 मिनट होगा, चलिए सावधान। सब बच्चे सावधान, आंखें बंद, बंद, गुरु जी का ध्यान, माता पिता का ध्यान। मैं भी गया, मैंने देखा कि आंखें मैंने बंद नहीं की थी क्योंकि मैं थोड़ा सा कलाकार हूं तो ऑब्जर्व करना चाह रहा था। मैंने देखा कि बच्चे कुछ जो हैं आंखें बंद की थी और कुछ बच्चे जो हैं धीरे से देख रहे थे। हमने अलग अलग बच्चों से बाद में पूछा, हमने क्यों बेटा तुम आंखें नहीं बंद करे थे?
3: नहीं, हम ये तो मौका रहता है कि गुरुजी जब बोलते हैं आंखें बंद करो तो हम अपनी सहेली को देख लेते।
2: मैंने एक दूसरे बच्चे से पूछा, मैंने बेटा ये बताएं कि आप जब आंखें बंद करते हैं तो अस्थिर सा मन क्यों होता है आपका?
3: हमारा मन इसलिए अस्थिर होता है सर कि इसलिए अस्थिर होता है क्योंकि जब हम आग बंद करते हैं ना तो ऋतिक रोशन दिखता है।
2: अच्छा बेटा गुड़िया, तुम ये बताओ कि तुम जब आंख बंद करती तो तुम्हें कैसा लगता है?
3: नहीं सर, मैं जब आंख बंद करती ना तो मुझे संजू याद आता है, इतना अच्छा लगता है ना स्वीट यू।
2: तो आंखें बंद करने का ये मामला साहब, और वैसे भी जब हम ध्यान की स्थिति में जाते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं। एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि मैं हिंदुस्तान में पतिव्रता स्त्रियां अभी तक होती आई हैं और ये विश्व का रिकॉर्ड है। मैं एक बार विदेश यात्रा में गया तो मैंने देखा कि एक महिला कब्र के पास बैठी हुई पंखा चल रही थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई मैंने हिंदुस्तान में तो बहुत बड़ी सती देखी हैं, पतिव्रताएं देखी हैं, लेकिन पति के प्रति इतना प्रेम कि कब्र पर पंखा चल रही है, ये तो बहुत गजब बात हो गई। तो मैंने उससे पूछा, मैडम एक्सक्यूज मी, आप इतना चाहती थी अपने पति को कि उनकी कब्र पर पंखा चल रहे हैं? तो उसने कहा कि
3: नहीं, उनकी आखिरी इच्छा थी कि जब तक हमारी कब्र सूख ना जाए दूसरी शादी ना करना।
2: एक और मामला के बड़े भैया ने छोटे भैया को आदेश किया कि
4: देखो तुम्हारा नाम छुट्टू।
2: जी भैया।
4: हम जा रहे थोड़ी शहर और तुम जो गैया है और बढ़िया गैया लगा के रखना और दूध बच्चों को दे देना और थोड़ा दूध उबाल के रख देना, समझ गया? नहीं समझ गया? बिल्कुल गैया ध्यान से लगा लेना।
2: छुट्टू ने क्या कहा, भैया हम गैया नहीं लगाएंगे।
4: क्यों क्यों नहीं लगाओगे?
2: बहुत एक नंबर के आलसी।
4: क्यों क्यों नहीं लगाओगे गैया?
2: अरे हम गैया नहीं लगाए भैया यार, गैया बहुत लात फटकार।
4: तुम गैया क्यों नहीं लगाओगे?
2: ये गैया लगाते हैं ना तो हमारा मुंह पर आता है। गैया लगाने मुंह पर आता है? गैया हाथ से लगाना कि मुंह से लगाना है? नहीं लगाना तो हाथ से है, लेकिन काय जब गैया लगाएंगे तो लात फटकारेगी तो पुचकारना नहीं पड़ेगा। आह आह आह आह। दो मक्खियां शहर का दशहरा देखने आई, और दशहरा शहर जबलपुर का वैसे भी बड़ा प्रसिद्ध है। दशहरा देखने के पश्चात जब वे मक्खियां रात को शहर से लौट रही थीं तो मक्खियों की जो आपस में चर्चा हुई वो एक चर्चा देखिए, कल्पना है ये, और देखिए मजा लीजिए। पहली मक्खी ने दूसरी मक्खी से कहा,
3: मतलब क्या से लगो तो मतलब, अरे खूब अच्छे लगो, हम तो चौपाटी तरफ निकल गए सो हमने कहूं चाट में बैठे कहूं चाइनीज में और उसको लगी ट्रे में बैठे तो ऐसे पंख ना चकवा गए हमारे, तो हमने पंखों का बिल्कुल खूब धो धाओ। और आजकल सुनो मतलब ऐसी दिक्कत नहीं है शहर में, मतलब ऐसा मामला है कि गंदो पानी नहीं, वो पाउच को पानी पियो, हमने खूब मजा आई, हम तो खूब घूमे फिरे खूब मजा आनंद लाओ। अच्छा एक चीज बताओ के तुमने दशहरा देखो, हाँ खूब देखो राक्षस बड़ी बड़ी दुर्गा जी और यहाँ सो पूरा मल्ला सब बढ़िया देखा, अब जी बताओ कि घर कैसे चलो? तो कहीं काम करें कि अपन 4-7 में चलेंगे यहाँ? 407 में चले तो कहीं 407 में भीड़ रहे लचर पचर हो गए। तो उन्होंने कहा कि फिर कैसे करें, फिर एक काम करें कि अपन ऑटो रिक्शा में चले। कहीं हाँ ऑटो रिक्शा वाले 5 के 25 बता रहे, खूब लूटा मारी मचाए हैं। तो फिर कहा चल एक काम करें कि अपन रिक्शा कर लें। कई रिक्शा तो कर लेते लेकिन अपना वजन देखो रिक्शा देखो। कहीं अपन बैठे और रिक्शा लचर पचर होगा हो। तो अब तुम्हें बताओ मतलब कैसे चले, साल कल में बैठ जा। नहीं साल कल में कैसे बैठो भाई, डंडा पे बैठो पर दिक्कत हो बैठवे में। तो बताओ कहा चले, कही एक काम करो। क्या करें, कुत्ता कर ले कान में बैठ के निकल चले।
1: ध्यान रहे आप सुन रहे हैं ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है हंसना मना है।
5: मैं नगर विकास योजना समिति का सदस्य हूं और आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। ये बात दो लोगों के बीच में हो रही है, जिससे बोला गया वो बोलता है कहले साहब बहुत अच्छा साहब आप नगर विकास योजना समिति के सदस्य हैं और बहुत राइट टाइम साहब आप हमारे घर में आए। क्या है कि शादी के बाद हमारी योजना थी एक लड़का और एक लड़की, है ना। तो योजना अधिकारी बोलते हैं आप मुझको गलत समझ रहे हैं साहब, आप ये सोच रहे हैं कि शायद मैं परिवार नियोजन से आया हूँ। मैं परिवार नियोजन का से नहीं आया हूँ, मैं योजना अधिकारी हूँ, नगर विकास योजना अधिकारी है। खैर चलिए ठीक है, वैसे आपके बच्चों की संख्या पूछ लेता हूँ, क्या दो लिख लूँ। तो वो सज्जन बोलते हैं फिर तो आप एक काम करो 7 लिखो, ये हमारी योजना का परिणाम है, हमें लड़के की प्रतीक्षा है। एक होटल में लिखा था आइए खाइए पैसा मत दीजिए, मतलब इसका यह हुआ कि आप जो भी कुछ खाएंगे आपको पैसा नहीं देना होगा, आपका पोता पैसा देगा, यानी आपके लड़के का लड़का। अरे साहब तो मजे वाली बात हो गई, पहुंच गए 2-4 लोग, खाना खाने लगे, खूब जम के खाया, मिठाई भी आने दे, रोटी भी आने दे, पूड़ी भी आने दे, सब्जी भी आने दे, कौन पैसा देना है, देगा पोता। सब खा पी के जब बढ़िया मजा आ गया, उठने लगे तो एक बिल आ गया, बिल में लिखा था 990 रुपए 40 पैसे। तो जो खा रहे थे उन्होंने होटल के नौकर से पूछा क्यों भाई आपने तो यहां लिखा हुआ है कि आप जो भी कुछ खाएंगे उसका पैसा पोता देगा है, तो ये बिल काय का है। तो नौकर बोलता है ये आपके दादा का है। एक चोर पकड़ा गया, अदालत में पहुंचा, जज साहब ने पूछा यहां वहां की चर्चाएं हुई और कहा तो तुमने रोटियां चुराई हैं, हैं? तुमको 500 रुपए तुम्हारे ऊपर जुर्माना किया जाता है। लेकिन वो जो रोटी चुराने वाला था बड़ा गरीब था, कहां से देता 500 रुपए। तो जज साहब बहुत ज्यादा समझदार थे, उन्होंने 500 रुपए स्वयं निकाले और उसके जुर्माने बतौर भर दिए। कितनी अच्छी बात है। लेकिन जज साहब ने एक और बहुत अच्छा काम किया, अदालत में जितने भी लोग बैठे थे सबके ऊपर 10-10 रुपए जुर्माने कर दिए। वो काय के लिए कर दिए कि वे जितने भी लोग बैठे हैं वो ऐसे समाज के लोग हैं जहां पे लोग रोटी के लिए चोरी करते हैं।
1: बहुत देर हुई, विनय जैन कहां है, बड़े खामोश हैं, जरा देखें तो इतनी देर में उन्होंने क्या कुछ नया बना लिया।
6: एक विवाह योग्य बालक ने इंटरनेट पर शादी के लिए अर्जी लगाई, जल्द ही हो गई सुनवाई, 15 मिनट में ही खुशखबरी आई, मामला फिट है, बिल्कुल हिट है, और इंटरनेट पर ही हो गई शादी, और कुछ दिनों बाद इंटरनेट पर ही हो गया विधिवत डाइवोर्स, लड़का लड़की दोनों खुश, चलो इसी बहाने हो गया कंप्यूटर का कोर्स। दोस्तों कोर्स कंप्यूटर का है, लेकिन बात हंसने हंसाने की है, बहुत अच्छी बात आप सभी के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले एक दिमाग की डॉक्टरों के पास अपॉइंटमेंट लेकर पहुंचा हुआ एक मरीज, जिससे डॉक्टर द्वारा किया गया एक जरूरी सवाल कि साहब क्या समस्या है, और जैसे ही डॉक्टर साहब का सवाल सुना इन्होंने कि क्या समस्या है, आपका जवाब समस्या, कैसी समस्या, कौन सी समस्या, कोई समस्या नहीं है, हम बादशाह अकबर हैं। अरे भला बादशाह सलामत की कोई समस्या हो सकती है, समस्या तो मैडम जुदाबाई की है। क्या समस्या है आपकी मैडम की, ये अपने आप को मिसेस भटनागर समझती है। एक महिला रेलगाड़ी के एसी के डिब्बे में बैठ के सफर कर रही थी और उनकी गोद में उनका एक बच्चा जो काफी देर से खेल रहा था, और वो बच्चों को खिलाती हुई महिला और अपने

0: कहीं पानी पीती हुई, कहीं बच्चे को पानी पिलाती हुई अपने सफर को लगातार जारी किए थी। अचानक वो देखती है कि सामने की बर्थ पर बैठा हुआ नवयुवक उनके बच्चों को बड़ी देर से घूर कर देख रहा है। जब महिला से रहा नहीं गया, काफी देर तक ये बात नोटिस करने के बाद उस युवक से उन्होंने पूछ लिया कि भाई साहब क्या बात है, मैं देख रही हूँ कि आप काफी देर से मेरे बच्चों को घूर घूर कर देख रहे हैं। तो वो सामने वाले सज्जन जवाब देते हैं, मैडम मैंने जीवन में पहली बार इतना बदसूरत बच्चा देखा है। अपने बच्चे के बारे में इतनी भद्दी बात सुनकर महिला को क्रोध आ जाता है, थर थर कांपने लगती है और फौरन कंडक्टर को तलब करती है, कंडक्टर इस आदमी को फौरन मेरी सीट के सामने से उठा दिया जाए और इसको मेरी नजरों से दूर कर दिया जाए, इस आदमी ने मेरी भारी तौहीन की है। कंडक्टर साहब फौरन आ जाते हैं और बोलते हैं, मैडम ये रेलवे का रिजर्वेशन है, हो सकता है सामने वाले यात्री ने आपके साथ कोई अशिष्टता की हो, मैं इसके लिए रेलवे की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ और ये रिजर्वेशन के कारण इसको इसकी बर्थ से तो उठा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको आपकी मौजूदा सीट से बेहतर सीट दिलवाने का इंतजाम करता हूँ, और जबकि मैं तो कहता हूँ कि आप मेरे साथ डाइनिंग कॉर में चलिए, तो मैं आपको रेलवे की तरफ से एक फटाफट गर्मा गर्म कॉफी पिलवाता हूँ ताकि आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा और आपकी गोद में जो ये बंदर है मैं इसे एक केला ला के देता हूँ।
1: अपनी कहानी अखबार में छपे इस चक्कर में लेखक महोदय ने अपनी कहानी तो अखबार को भेज दी, साथ में एक लेटर भी डाल दिया संपादक को, उसमें लिखा था मेहरबानी करके आप जहां चाहें उचित समझें विराम चिन्ह वगैरह लगाकर मेरी कहानी पूरी छापें। संपादक ने उनकी कहानी तो नहीं छापी लेकिन एक लेटर जरूर लिख दिया, उसमें क्या लिखा, आप भविष्य में केवल विराम चिन्ह दिया करें कहानी हम लिख देंगे। एक छोटा बच्चा अपने पिता से बोलता है,
2: पापा पापा हमारी शादी कब होगी?
1: तो उनके पिताजी बोलते हैं, बेटा जब तुम 21 साल के हो जाओगे तब तुम्हारी शादी होगी। तो लड़का बोलता है,
2: जब हम 21 साल के हो जाएंगे तब हमारी शादी होगी पापा, लेकिन हमको हम आपको अपनी शादी में नहीं ले जाएंगे।
1: तो लड़के का बाप बोलता, आप हमको क्यों अपनी शादी में ले जाएंगे? तो लड़का बोलता,
2: क्यों इसलिए हम आपको अपनी शादी में नहीं ले जाएंगे क्योंकि आप भी हमको अपनी शादी में नहीं ले गए थे।
0: एक ऐसे पतिदेव जो अपनी पत्नी की हर चीज में नुक्स निकाला करते थे, अचानक खाते खाते नाश्ते की प्लेट में उन्होंने एक आवाज लगाई,
3: सुनो
4: जी अभी आई,
3: ये सूजी में शक्कर कम है?
4: ये सूजी नहीं उपमा है।
3: हाँ हाँ मालूम है, उपमा में नमक ज्यादा है।
0: सुबह नाश्ते के समय अचानक श्रीमती जी ने आमलेट और कॉफी का नाश्ता सामने रखा तो पतिदेव की भ्रकुटी तन गई। आमलेट देख के फौरन पत्नी से बोले,
3: इधर आओ, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें मालूम नहीं हमको बिल्कुल आमलेट पसंद नहीं है, कॉफी के साथ आप आमलेट बना के ले आई, आज हमारा बिल्कुल आमलेट खाने का मन नहीं है, कुछ भी अपने मन से करती रहती हो, हटाओ ये आमलेट फामलेट सामने से हमारे।
0: श्रीमती जी निराश हो गई कि पतिदेव को पसंद नहीं आमलेट। दूसरे दिन नाश्ते में वो उबले हुए अंडे लेके आ गई, पतिदेव को उबले अंडे ज्यादा पसंद थे, जैसे उन्होंने उबले अंडे देखे तो भ्रकुटी फिर तन गई।
3: तुम्हारा पता नहीं दिमाग कहाँ रहता है, है आज हमको आमलेट खाने का मन हो रहा था तो तुम अंडे उबाल के ले आई,
0: बिल्कुल तुम्हारा दिमाग ठिकाने है ही नहीं। श्रीमती जी को बहुत दुख होता है कि पतिदेव कोई बात उनकी समझते ही नहीं है, और तीसरे दिन अचानक उसका मूड इस तरह का बन जाता है कि वो आधे अंडे उबाल के और आधे अंडों का आमलेट बना के ले आती है, तो जैसे ही दोनों प्लेट देखते पतिदेव फौरन भ्रकुटी तन जाती है। पता नहीं तुम्हें कवा का लाएगी, जो उन अंडों को उबालना था उनका आमलेट बना लाई और जो उनका आमलेट बनाना था उनको उबाल लाई। एक साहब हाथ दिखाने के बहुत शौकीन थे, जहां देखो वहीं अपना हाथ लिख के बैठ जाते। एक पंडित जी को देखते ही से उन्होंने फौरन अपना हाथ दिखाया और पंडित जी को प्यार से बुलाकर, पंडित जी हाथ देख के बताइए कैसा है। पंडित जी थोड़ा बैलेंस करने के चक्कर में हाथ देखें और धीरे से बताया, बोले साहब आपकी तो बहुत अच्छी आयु है और आपका जीवन बहुत ही स्वस्थ और सुंदर नजर आता है। पंडित जी हाथ में खुजली भी होती है? पंडित जी बोले, बेटा खुजली होती बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब धन आता है, ओम लक्ष्मी कमिंग। पंडित जी इस वाले हाथ में भी होती है? बेटा यही तो गड़बड़ है, यहां से धन आता है यहां से निकल जाता है, ये तो गड़बड़ है। पंडित जी इसका कुछ उपाय? उपाय तो सब चीज का है। पंडित जी पैर में भी होती है खुजली? अरे बेटा बहुत अच्छी बात है, पैर में अगर खुजली होती इसका मतलब तुम भारत भ्रमण पर जाओगे, इंडिया टूर करोगे। पंडित जी जी वाले पाँव में भी होती है? भैया बहुत अच्छी बात है, बल टूर

0: करोगे, सारे संसार भ्रमण करोगे। पंडित जी पीठ में भी होती है। बोले भैया तुम डॉक्टर के पास जाओ, तुम्हें खुजली है।
1: और दोस्तों, हंसने हंसाने का ये सिलसिला आगे जारी रहेगा, मगर आज यहीं आपसे इजाजत मांगता है आपका दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।

0: संग्रहालय के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक हंसना मना है की पहली कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 12:58 होने को है। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
1: अब भावांतर योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महाकौशल की धरती धान उत्पादन के लिए जग प्रसिद्ध है और क्षत्रिय धान को जीआई टैग मिल गया है। श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि प्रदेश की नवीन श्रम संहिताओं के प्रस्तावित राज्य नियमों को अधिक सरल, व्यावहारिक और श्रमिक केंद्रित बनाया जाए। गौरतलब है कि 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित कर 4 नई श्रम संहिताएं तैयार की गई हैं। केंद्र सरकार ने ईपीएफ योजना 2026 को 29 जून से प्रभावी कर दिया। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। नई योजना में ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि जीएसटी को लागू करना एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की अवधारणा तक सीमित नहीं होकर एक राष्ट्र एक संकल्प और एक साझा उत्तरदायित्व का जीवंत प्रतीक है। स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग में मध्य प्रदेश के 10 विद्यालय विभिन्न श्रेणियों में चयनित हुए हैं, जिसमें रतलाम जिले के सांदीपनी विद्यालय जावरा ने प्रथम और राजधानी भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। और श्री अमरनाथ जी की यात्रा कल से शुरू हो रही है। आज यात्रियों का पहला जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप से रवाना हुआ। 147 गाड़ियों के काफिले में बालटाल रूट के 2312 लोग और पहलगाम रूट के 2510 लोग यात्रा पर हैं। अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 1 बज चुके हैं। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम महिला सभा।

स्वागत अभिनंदन आप सभी प्यारी प्यारी सखियों का आपके अपने मन पसंद कार्यक्रम महिला सभा में। आज आपके साथ हूँ मैं आपकी सखी दीपलक्ष्मी त्रिपाठी। आप सभी को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। सखियों, दुनिया की भीड़ में पहचान बनानी होती है तो माँ की सीख दिल में बसानी होती है, क्योंकि रास्ते तो बहुत मिल जाते हैं जिंदगी में, पर सही राह माँ ही दिखाती है, है ना। आज के समय में बच्चे छोटी उम्र से बहुत कुछ सीख रहे हैं सखियों। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने उनकी दुनिया को बहुत बड़ा बना दिया है, लेकिन इस बड़ी दुनिया में सही और गलत की पहचान कराना हम माओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। माँ की सीख बच्चे को सिर्फ पढ़ाई और सफलता के बारे में नहीं बताती, बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है। माँ जब बच्चे को सच्चाई, मेहनत, सम्मान, धैर्य और दूसरों के प्रति प्यार का महत्व समझाती है ना, तो वही संस्कार बच्चे के व्यक्तित्व की पहचान बन जाते हैं। मोबाइल से मिल सकता है ज्ञान का संसार, पर माँ की सीख देती है जीवन का आधार। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए सखियों, माँ के संस्कार हमेशा साथ निभाते हैं बच्चों के साथ। आज बच्चों के पास जानकारी बहुत है, लेकिन अनुभव और सही दिशा देने के लिए हम माओं की जरूरत हमेशा रहती है। माँ का प्यार और मार्गदर्शन बच्चे को मुश्किल समय में सही फैसला लेना सिखाता है। एक माँ की छोटी सी सीख जैसे सच बोलना, बड़ों का सम्मान करना, समय की कद्र करना और दूसरों की मदद करना बच्चे के पूरे जीवन को बेहतर बना सकता है। माँ की बातों में वो असर होता है जो हर मुश्किल सफर को आसान करता है। जिस बच्चे को माँ के संस्कार मिल जाते हैं वो जीवन में कभी अकेला नहीं होता। दुनिया बदल सकती है, समय बदल सकता है, लेकिन माँ की सीख और संस्कारों की कीमत कभी कम नहीं होती, क्योंकि एक माँ ही होती है जो बच्चे के सिर्फ सफल नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनाती है बच्चों को।

सुरक्षित और खुशहाल बचपन का हकदार है, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें देखभाल और सहारे की जरूरत होती है। ऐसे बच्चों के लिए सरकार ने शुरू की है मिशन वात्सल योजना। मिशन वात्सल भारत सरकार की एक बाल संरक्षण योजना है, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद और कमजोर बच्चों को सुरक्षा, देखभाल और विकास के अवसर देना है। इस योजना के तहत अनाथ, बेसहारा और कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए संरक्षण सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और परिवार आधारित देखभाल को बढ़ावा दिया जाता है। इसका लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा ना पीछे न छूटे और हर बच्चे को बेहतर भविष्य का मौका मिले। अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जिसे देखभाल और सहायता की जरूरत है, तो जिला बाल संरक्षण इकाई या महिला एवं बाल विकास विभाग में संपर्क किया जा सकता है, क्योंकि हर बच्चे का बचपन सुरक्षित होना चाहिए। यही है मिशन वात्सल्य का उद्देश्य, एक सुरक्षित बचपन, एक बेहतर भविष्य की शुरुआत। और सखियों, आपको बता दें कि बेहतर भविष्य के लिए पेड़ बहुत जरूरी हैं। अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को कैसी दुनिया मिलेगी, जरा सोचिए। एक छोटा सा कदम, एक पौधा और एक बड़ा बदलाव। वन महोत्सव सप्ताह, जी हाँ सखियों, 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह हम मनाते हैं। ये सिर्फ पेड़ लगाने का त्योहार नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी को समझने का अवसर है। भारत में हर साल वन महोत्सव सप्ताह बड़े ही उमंग से मनाया जाता है। लोगों को वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना ही इस महोत्सव का उद्देश्य होता है। पेड़ हमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, बल्कि स्वच्छ हवा, ठंडी छांव, बारिश का संतुलन और जीवन के लिए जरूरी संसाधन प्रदान करते हैं। आज जरूरत है कि हम सिर्फ पेड़ लगाएं नहीं, बल्कि उनकी देखभाल भी करें, क्योंकि एक पेड़ लगाना आने वाले कल के लिए एक सुरक्षित निवेश है। आइए इस वन महोत्सव सप्ताह पर संकल्प लें, एक पौधा लगाएं, उसकी रक्षा करें और धरती को हरा भरा बनाएं, क्योंकि हर पेड़ एक नई जिंदगी की शुरुआत है। सखियों, कार्यक्रम में बहुत कुछ है आगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

इस खूबसूरत से गीत के बाद जो कि था फिल्म लाल सिंह चड्ढा से, बारी है अब एक कहानी की, जी सखियों, मीना गोदरे जी की एक कहानी जिसका शीर्षक है श्रद्धा का उपहार। तो आइए सुनते हैं ये कहानी।

कहानी का शीर्षक है श्रद्धा का उपहार। दिल्ली की तंगनुमा झोपड़ी में हमारा 5 सदस्यों का परिवार बीड़ी बनाकर गरीबी की थपेड़ों में जीवन के दिन गिन गिन कर काट रहा था। माँ बहुत समझदार थी, खाने को 2 जून की रोटी भी ना पूछती, पर उन्होंने कभी हमें पढ़ने से इनकार नहीं किया। तन को कभी कपड़े ना खरीद पाती, पर फटे चिथड़े कपड़ों में टांके लगाकर पहनने लायक बनाती रहती और स्वाभिमान से जीने के लिए सतत संघर्ष करती रहती। कपड़े धोने के लिए साबुन ना जुटा पाती, पर हमारे स्कूल के कपड़े अन्य बच्चों की तरह साफ दिखाई देते। रात को सोने से पहले वह हमारे जूते चमकाती, अधसूखे कपड़ों की तह लगाकर बिस्तर के नीचे रख देती और हम प्रेस किए कपड़े से पहनकर शान से स्कूल जाते। माँ अच्छे घर की थी, नाना के घर खेती बाड़ी होती थी। बड़े लाड प्यार से उन्होंने माँ को पाला था, किंतु शिक्षा ना देने की गलती उन्होंने की थी, जिसकी सजा शायद माँ आज भुगत रही है। उस दिन माँ बता रही थी, स्कूल में जाने देने की जिद में एक दिन उन्होंने घर का शीशा फोड़ दिया था। किसी क्लास की परीक्षा नहीं दी थी, किंतु उनकी हिंदी व गणित इतनी अच्छी थी कि 5वीं तक उन्होंने हमारा होमवर्क कराया और हम अव्वल आते रहे। हम कभी महसूस ही ना कर सके कि माँ कभी स्कूल नहीं गई होगी। वो तो जब छोटा मनु 5वीं में पूरे स्कूल में फर्स्ट आया तो मैं पूछ बैठी, माँ आज तुम कितनी खुश हो। क्यों ना खुश होंगी, मेरा बेटा जो प्रथम आया है, मैं भी अपनी परीक्षा में प्रथम आई हूँ, वो मुस्कुराते हुए गर्व से बोली। आपने कौन सी परीक्षा दी है माँ, मैंने चौंक कर पूछा। मैं अभी तक पहली कक्षा से 5वीं तक 3 बार परीक्षा देकर प्रथम आई हूँ, रहस्यमयी ढंग से वो मेरी तरफ देखकर बोली। कुछ समझते हुए मैंने जैसे जवाब खोजते हुए अपनी प्रसन्नता व्यक्त की, हाँ माँ, हम तीनों को घर में आपने ही तो पढ़ाया है, यदि आप न पढ़ाती माँ तो हम शायद इतने अच्छे नंबर से कभी पास न होते। अचानक कौंधे प्रश्न को मैंने माँ की आंखों में झांकते हुए कर डाला, अच्छा बताओ तू माँ, आपने किस क्लास तक पढ़ाई की थी। माँ मौन थी। आप भी क्या इसी तरह फर्स्ट आती थी। माँ फिर मौन थी, आंखें भर आई थी, पल्लू से आंखें पोंछते हुए बोली, पढ़ना मेरे नसीब में कहाँ था, पढ़ लेती तो क्यों ये ठोकरें खाती। तेरे नाना जी पढ़ाई के खिलाफ थे, वो तो खेलने के बहाने में पड़ोस की सहेली के घर चली जाती और वहीं उसका देख देख कर पढ़ लेती। उसकी किताबों से मैंने 5वीं तक पढ़ा था, उसके पेपर देख परीक्षा भी दे देती थी। वह मेरी मास्टरनी थी, वह मुझे नंबर देती थी, गलतियां करने पर कान भी पकड़वाती थी। एक ठंडी आह भरते हुए माँ बोली, कितनी भली थी मेरी रमिया, कहती थी तू स्कूल में पढ़ती होती तो सारे स्कूल में अव्वल आती। मेरा अंतःकरण कराह उठा जैसे उबल पड़ी। लेकिन माँ, यह तो नाना जी की ज्यादती थी, उन्हें आपको पढ़ने से नहीं रोकना चाहिए था। अब अपनी अपनी विचारधारा है बेटी, नाना जी पुराने ख्यालात के आदमी थे, तभी तो 14 बरस की उम्र में ही मेरा विवाह कर दिया था। पर माँ, मैं तो समझती थी आप हाई स्कूल तो पढ़ी होंगी, उस दिन पापा जी भी तो कह रहे थे आप हाई स्कूल पास हैं। अरे वो तो मजाक करते हैं, टालते हुए माँ बोली। लेकिन कुछ भी कहो, मेरी माँ को देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो हाई स्कूल से कम पढ़ी होंगी। कहीं ऐसा तो नहीं आप मेरी पुस्तकें भी चुपके चुपके पढ़ती रही हो, मैंने चिढ़ाने के अंदाज में माँ से कहा। क्या हुआ जो पढ़ ली, तो जी मचलता है पढ़ने के लिए तो पढ़ लेती हूँ। पढ़ाई की इतनी तड़प माँ में देख मैंने महसूस किया कि मैं आज जो भी हूँ अपनी माँ की बदौलत ही हूँ, और उसी क्षण मैंने निश्चय किया मैं बहुत पढ़ूंगी और दोनों भाई बहनों को बहुत पढ़ाऊंगी, कुछ बनकर दिखाऊंगी और माँ के सपने को पूरा करूंगी। गरीबी की मार पर अपनी सुनहरी सोच की छतरी लगा माँ ने तो अपने आप को बचा लिया, पर पापा हमेशा तनावग्रस्त रहते थे। माँ मुझे अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहती थी, पर पापा दिल्ली जैसे शहर में मेरी सुरक्षा से चिंतित रहते और मेरी शादी की चिंता में खोए रहते। एक दिन अचानक ही उनके सिर में तेज दर्द हुआ, पास के ही सरकारी अस्पताल में उन्हें दाखिल कर दिया। उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया था, डॉक्टरों ने बचने की उम्मीद छोड़ दी थी। माँ की हालत अत्यंत दयनीय हो गई थी, मेरे विवाह के लिए जोड़ी हुई पूंजी भी खत्म हो चुकी थी। तीसरे ही दिन पापा की हालत और अधिक बिगड़ गई। माँ को डॉक्टरों ने अपने चैम्बर में बुलाया, कुछ डिस्कस करते रहे, आखिर पापा ने दम तोड़ दिया। अपनी अंतहीन पीड़ा माँ कभी हम पर जाहिर ना होने देती। उस दिन पापा का जन्मदिन था, हम सब खूब रोए। छोटा मनु जब पापा के पास जाने की जिद करने लगा तब माँ बोली, आज भी तुम्हारे पापा जीवित हैं बेटे। वो कहाँ है, आप हमेशा यही कहती हो, हमें उनसे मिलाती क्यों नहीं हो। माँ ने उसे छाती से लगा लिया, बहुत रोई। कुछ सोचते हुए उठी और पास के ही टेलीफोन बूथ से कोई फोन करके लौटी तो मैंने देखा माँ की आंखों में तो वही गहरा समंदर है, पर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई थी। चौंक कर मैंने पूछा, क्या बात है माँ, किसको फोन किया। चलो सब तैयार हो जाओ, हॉस्पिटल चलना है। हम तीनों चौंके, क्यों क्या बात है माँ,
वह स्वयं तैयार होने लगी। जल्दी जल्दी हम सबके कपड़े देते हुए बोली, अभी प्रश्न ना करो, हॉस्पिटल चलने पर बताऊंगी। बिना प्रश्न किए हम हॉस्पिटल पहुंचे। वहां पहुंचते ही डॉक्टर्स ने जिस ढंग से हमें सम्मान दिया, हम अचंभित थे। आइए मिसेस ठाकुर, डॉक्टर स्वयं बाहर आकर हमें अंदर ले गए। 10 मिनट के अंदर ही चैम्बर में 10-12 डॉक्टर्स उपस्थित हो गए। सिविल सर्जन ने माँ का परिचय देते हुए कहा, मिसेस ठाकुर, आप हमारे देश के लिए एक मिसाल हैं। हम सभी आपका सम्मान करते हैं। आपकी समझदारी, धैर्य और जिंदा दिली की दादा सारा स्टाफ दे रहा है। हम इसे न्यूज़पेपर में निकलवा रहे हैं ताकि अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिल सके। नहीं नहीं डॉक्टर, यह सब हमने शोहरत हासिल के लिए नहीं किया। आप तो हमें उन तीनों मरीजों से मिलवा दीजिए जिनमें मेरे पति के अंग प्रत्यारोपित किए गए हैं। हाँ हाँ, जरूर मिलवाएंगे, इसलिए तो आपको यहाँ बुलाया है। डॉक्टर साहब ने बड़े सम्मान के साथ 1-1 लाख के 3 चेक माँ के सामने रख दिए और बोले, मिसेस ठाकुर, आप इन्हें रखिए, ये आपका पुरस्कार है। सुनकर मुझे बड़ा धक्का सा लगा। कुछ पल के लिए उपजी घृणा से माँ के घिनौने रूप मेरे मानस पटल पर चढ़ने उतरने लगे। तभी डबडबाई आंखों से माँ बोली, मैंने अपने पति के अंगों का दान किया था, बेचे नहीं थे। यदि उनके अंगों से किसी को जीवन दान मिल सका तो यही मेरे लिए अपने पति के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। कृपया ये उन मरीजों को लौटा दीजिए और मेरी भावनाओं को आहत न होने दीजिए। उपस्थित सभी डॉक्टर्स स्तब्ध थे, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ क्षण जैसे चुप्पी छा गई।

0: मैंने स्वयं को धिक्कारा। देवी जैसी माँ के प्रति छी मेरी ऐसी घृणित सोच कुछ क्षण के लिए ही बनी, पर क्यों, अभी सोच ही ना पाई थी कि सत्यता सामने खड़ी थी। मैं रो पड़ी। आप धन्य हैं मिसेस ठाकुर, आपने अपने पति का नाम रोशन कर दिया। चलिए मैं आपको उन पेशेंट से मिला दूं जो आपके संकल्प निर्णय के कारण आज जिंदा है, डॉक्टर साहब कह रहे थे। 3 अलग अलग वार्डों में हमें ले जाया गया, जहाँ एक अंधे मरीज को नेत्रदान से दुनिया मिल गई थी। परिचय होते हुए वह माँ के पैर छूने रुक गया। हम बहुत खुश थे पापा की आंखों से किसी की रोशनी बनते देख। दूसरे वार्ड में पापा का हृदय एक मरीज की धड़कन का साधन बना था। जीवनदान पाकर उसकी खुशी का ठिकाना ना था। हमें देख कृतज्ञता से उसकी आंखें झलक आईं। उठने का प्रयास करने लगा, डॉक्टर के मना करने पर ना उठ सका। लेटे लेटे ही हाथ जोड़कर अभिवादन करने लगा। अत्यंत खुश और संतुष्ट मन से हमने तीसरे कमरे में प्रवेश किया, जिसमें 2 मरीजों को पापा की एक एक किडनी लगाई गई थी। परिचय पाते ही रो पड़े। हम जीवन भर आपका एहसान न भूलेंगे माताजी। मेरी दोनों किडनियां फेल हो चुकी थी, मरणासन स्थिति में भर्ती हुआ था। अपनी सारी दौलत देने तैयार था, पर मुझे किसी की किडनी नहीं मिल रही थी। आप भगवान बनकर आई और मुझे जीवन दान मिल गया। सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, मैं तो उसके आदेश का पालन किया है, शांत भाव से समझाते हुए माँ ने उत्तर दिया। दूसरी किडनी प्राप्त करने वाला अधेड़ उम्र का अमीर ख्याति प्राप्त शोभा लाल चौधरी नाम का व्यक्ति था, जो सब सुन रहा था, मौन ही रहा, झरती आंखों से कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा था। पिता के मरने के बाद उन 3 मरीजों में मैंने उन्हें जीवित देखा था। मैं गर्वित थी अपनी माँ पर, जिसने वज्र टूटने पर भी अपना धैर्य और विवेक नहीं खोया और अपनी बुद्धि और संकल्प से हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। आज पिता के जन्मदिन पर उन्होंने जो श्रद्धा का उपहार उन्हें दिया था, वह एक आदर्श प्रस्तुत कर रहा था। सेठ शोभालाल जी माँ के गुणों से प्रभावित होकर उनकी सुसंस्कृत बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगने का प्रयास वर्ष भर से कर रहे थे, किंतु माँ का कहना था, आप अपने उपकार का बदला चुकाना चाहते हैं, तभी तो हम गरीब को अपनाना चाहते हैं। देखिए, हमारा आपका कोई मेल नहीं है, हम आपके यहाँ अपनी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकते। देखिए, मुझे गलत ना समझिए, मुझे आपके जैसे संस्कारों वाली योग्य और समझदार बहू चाहिए है। मेरे बेटे की शादी होगी तो यही होगी, नहीं तो और कहीं नहीं होगी, शोभालाल जी बोले। आखिर माँ ने हथियार डाल दिए। विदा के समय माँ को समझाते हुए शोभालाल जी कह रहे थे, आज मैं आपकी बेटी पाकर धन्य हो गया हूँ और आश्वस्त हो गया हूँ भविष्य की धरोहर के प्रति।
1: श्रद्धा का उपहार। सखियों, अभी आपने ये कहानी सुनी। कहानीकार थी मीना गोदरे जी। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं रूप लावण्य की। बारिश का मौसम आते ही बालों में खुजली, सफेद परत और डैंड्रफ की समस्या बढ़ने लगती है सखियों। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मानसून में ही डैंड्रफ ज्यादा क्यों होता है? मानसून में हवा में नमी बढ़ जाती है और इस नमी की वजह से स्कैल्प पर पसीना और ऑयल ज्यादा जमा हो जाता है, जिससे फंगस और बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं और डैंड्रफ की समस्या बढ़ सकती है। बारिश में बालों का देर तक गीला रहना, स्कैल्प की सफाई ना करना और ज्यादा केमिकल वाले हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी डैंड्रफ को बढ़ा सकता है। तो डैंड्रफ कम करने के लिए कुछ आसान से टिप्स आपको बताती हूँ। नारियल तेल में थोड़ा नींबू मिलाकर स्कैल्प पर हल्के हाथों से लगाएं, फिर कुछ समय बाद धो लें। एलोवेरा जेल स्कैल्प को ठंडक देने और ड्राइनेस कम करने में मदद कर सकता है। इसे स्कैल्प पर लगाकर कुछ देर बाद धो लें। आप नारियल का तेल और एलोवेरा जेल को एक साथ मिक्स करके भी स्कैल्प पर लगाकर अच्छे से मसाज कर सकती हैं। सखियों, एक दूसरा टिप्स मैं आपको देती हूँ। जो दही होता है ना, उसमें मौजूद प्राकृतिक गुड़ स्कैल्प को नमी देने में मदद कर सकते हैं। दही को थोड़ी देर स्कैल्प पर लगाकर फिर धो सकते हैं। आप चाहे तो मट्ठे से भी हर हफ्ते बालों को धो सकते हैं, इससे भी डैंड्रफ बहुत जल्दी दूर होता है। मेथी भी बहुत असरदार होती है इसमें। मेथी को भिगोकर इसका पेस्ट बनाएं और स्कैल्प पर लगाएं। यह पारंपरिक रूप से बालों की देखभाल में इस्तेमाल किया जाता है। नीम के पत्ते का पानी भी बाल धोने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपको डैंड्रफ से छुटकारा मिल सकता है। और सबसे जरूरी बात सखियों, बालों को गीला छोड़कर ना रखें इस मौसम में। ज्यादा तेल लगाकर लंबे समय तक ना छोड़ें बालों को। कंघी, तौलिया और तकिया साफ रखें। डैंड्रफ ज्यादा हो, खुजली या लालपन हो तो त्वचा विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। बारिश में बालों को चाहिए थोड़ी ज्यादा देखभाल। छोटे छोटे घरेलू उपायों से रखें अपने बालों को हेल्दी और खूबसूरत। और हमारे साथ सुनते रहिए गीतों को।
0: कहानी का शीर्षक है श्रद्धा का उपहार।

सखियों, इस गीत के बाद बात कर लेते हैं स्वास्थ्य संबंधी कुछ सुझाव की। बारिश की ठंडी हवाएं और मिट्टी की खुशबू मन को सुकून देती हैं, लेकिन बढ़ी हुई नमी सेहत के लिए परेशानी भी बन सकती है। इसलिए बारिश में जो नमी के कारण अक्सर सर्दी जुकाम हो जाता है, खांसी, वायरल फीवर, गले में खराश और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। इनको दूर करने के लिए साफ और उबला हुआ पानी पिएं, बाहर का खुला हुआ ज़्यादा देर तक रखा हुआ खाना खाने से बचें और हाथों की सफाई का ध्यान रखें और शरीर को ज़्यादा देर तक गीला ना रहने दें। घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। इम्यूनिटी मजबूत रखने के लिए पौष्टिक आहार लें। बारिश का मौसम खूबसूरत है, बस थोड़ी सी सावधानी इसे स्वस्थ और खुशहाल बना सकती है। मौसम बदले तो अपनी देखभाल का तरीका भी बदलना जरूरी है सखियों, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अनुमति दीजिए अपनी सखी दीपलक्ष्मी त्रिपाठी को। नमस्कार।

रेडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा, और अगला कार्यक्रम सुनते हैं भोपाल से।

नीलम कुलकर्णी की गाई इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। ये कार्यक्रम जबलपुर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे मानस रॉय चौधरी के गाए भजन और गीत।

0: मानस राय चौधरी के गाय इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
5: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
6: इस समय आप हैं हमारे साथ।
7: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत यादों की बारात। पहला गीत इस फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, मजरू सुल्तानपुरी का गीत और राहुल देव वर्मन का संगीत।

लव इन टोक्यो कार्यक्रम का अंतिम गीत इस फिल्म से आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, हसरत जयपुरी का गीत है और शंकर जयकिशन का संगीत।

0: हम आकाशवाणी से बोल रहे हैं। 2:10 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगी।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची का आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री से अपने कैबिनेट सहयोगियों का परिचय कराया। दोनों नेता 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के तहत आपसी सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे ताकाइची की पहली भारत यात्रा पर उनका स्वागत करके अत्यंत प्रसन्न हैं। प्रदेश में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन यानी VBG रामजी का आज प्रदेशव्यापी शुभारंभ किया गया। सभी जिलों में जन सम्मेलन सह लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राष्ट्रीय शुभारंभ कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हो रहा है। कार्यक्रमों में नागरिकों को 125 दिवस रोजगार गारंटी, पारदर्शी भुगतान प्रणाली और विकेंद्रीकृत ग्राम स्तरीय योजना निर्माण की जानकारी दी जा रही है। चुनाव आयोग ने दतिया विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई और मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को की जाएगी। दतिया विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। ये उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त होने की वजह से हो रहा है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक शाह का उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भोपाल स्थित निवास कार्यालय में अभिनंदन किया। दोनों नेताओं के बीच स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों को लेकर चर्चा हुई। डॉ शाह भोपाल में आयोजित 28वें AOMSI मिड टर्म कन्वेंशन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये राष्ट्रीय सम्मेलन आज से 4 जुलाई तक पीपुल्स यूनिवर्सिटी परिसर में क्रिएटिंग अ होलसम सर्जन थीम पर आयोजित किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 लागू कर दी है, जिसके तहत 29 जून से आंशिक धन निकासी के नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों के अनुसार सदस्यों को खाते में कम से कम 25% राशि सुरक्षित रखनी होगी। अब घर खरीदने, निर्माण, मरम्मत के साथ बीमारी, पढ़ाई और विवाह जैसे खर्चों के लिए भी धन निकाला जा सकेगा। EPFO जल्द ही UPI और WhatsApp के माध्यम से भी सेवाएं शुरू करने जा रहा है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत इस वर्ष इंदौर जिले में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। ये जानकारी नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में दी गई। पौधरोपण आज से शुरू हो गया है और BSF परिसर में सर्वाधिक पौधे लगाए जाएंगे। श्री विजयवर्गीय ने कहा कि यह अभियान केवल पौधरोपण नहीं बल्कि प्रकृति और आने वाली पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा घोषित स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 में प्रदेश के 10 विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुए हैं। शहरी वर्ग में रतलाम के सांदीपनी विद्यालय जावरा ने प्रथम और भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रदेश की सभी 78,000 से अधिक शालाओं ने इस रेटिंग में सहभागिता की थी। सभी चयनित विद्यालयों को भारत सरकार द्वारा 1 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ग्रैंड चेस टूर 2026 के तीसरे इवेंट में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले दिन संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर जगह बनाई है। विश्व चैंपियन डी गुकेश एक हार और एक जीत के बाद छठे स्थान पर रहे। वहीं फ्रांस के अलीरेजा फिरोजा 5 अंकों के साथ अकेले शीर्ष पर बने हुए हैं। टूर्नामेंट में अब सुपर रैपिड के 6 राउंड और खेले जाने बाकी हैं। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने आज के लिए हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन और छिंदवाड़ा सहित कई जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं इंदौर में कल तेज बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक सामान्य से करीब 28% कम बारिश हुई है, लेकिन जुलाई में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। एम्स भोपाल के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार महापात्र ने सुश्रुत कॉमन एंडो ट्रेनर फैसिलिटी का उद्घाटन किया। यह सुविधा लेप्रोस्कोपी, एंडोस्कोपी और जटिल सर्जरी का सुरक्षित और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेगी। निवाड़ी में महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना के तहत UN वुमेन इंडिया की कंट्री रिप्रेजेंटेटिव शोको इशिकावा ने परियोजना से जुड़ी बालिकाओं से संवाद कर उनके अनुभवों को जाना। डिंडौरी में डेंगू निरोधक माह के अवसर पर डेंगू से बचाव और जन जागरूकता के लिए डेंगू रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और गुना के क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय में नए छात्र छात्राओं के स्वागत और मार्गदर्शन के लिए दीक्षारंभ समारोह का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत, दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
1: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
0: इससे पहले आज प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
2: इंडिया हैज बीन अ विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फॉर डिकेड्स।
3: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है, हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
2: We must address the conditions conducive to the spread of terrorism.
0: अमेरिका, इजराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बारताल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयराम जी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरीपल्ले गांव में विकसित भारत जयराम जी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
4: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जयराम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कर रहे, पहले साल ही विकसित भारत जयराम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मानसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
5: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
6: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगरपालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और AI सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश भेजिए नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। कबाईसालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव ने इन सब ने सुनना चाहा है सीता और गीता फिल्म का ये नगमा। आवाज़ें आशा भोसले और किशोर कुमार की हैं। आनंद बख्शी के लिखे गीत की धुन बनाई है राहुल देव फरमन ने।

आशा भोंसले की आवाज़ में सुनिए समाधि फिल्म का ये नगमा। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गीत को सुरों में पिरोया है आर.डी. वर्मन ने। इस गीत की फरमाइश भेजी है गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं समाधि फिल्म का ये गीत।

जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड बेली जिला सागर से लक्ष्मण रेखवार, श्रीमती विनीता रेखवार, कुमारी वैशाली, वैष्णवी अनरथ रेखवार, लल्लू ऋषि रेखवार, कंवर कॉलोनी पड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली। आप सबने सुनना चाहा है मन्ना डे, महेंद्र कपूर, श्यामा चित्तर और साथियों की आवाज़ में शोर फिल्म का ये गीत, बोल राजकपि इंद्रजीत सिंह के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश। अगला गीत है रामपुर का लक्ष्मण फिल्म से। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें हैं, मजरू सुल्तानपुरी का गीत है और राहुल देव वर्मन का संगीत। इस गीत की फरमाइश भेजी है छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरिंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क MP शाजापुर से MM

राजावत राजी मधु राजावत राशि रक्षित चित्रंजन कमल उमेश सरोज आरती रेखा रितिका ऋचा स्वीटी सागर रिया रीत ऋषभ राजावत एवं समस्त राजावत परिवार ने। तो सुनिए आपकी फरमाइश का ये नगमा।

विक्टोरिया नंबर 203। लता मंगेशकर की आवाज़ में इस फिल्म का गाना सुनिए। वर्मा मलिक का गीत और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। इस गीत की फरमाइश भेजी है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, मालवा रेडियो श्रोता संघ से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा, ऋषि वर्मा ने। सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

पिया का घर कार्यक्रम का अंतिम नगमा सुनिए इस फिल्म से, जिसे आवाज़ दी है किशोर कुमार ने, आनंद बख्शी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। इस गीत को पसंद किया है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतला राजेश, घंटाघर छुक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने।

0: इस नगमे के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इसके साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। प्रदेश में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन यानी VVGRAMJI का आज प्रदेशव्यापी शुभारंभ हुआ। सभी जिलों में जन सम्मेलन सह लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने दतिया विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई और मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा का उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भोपाल स्थित निवास कार्यालय में अभिनंदन किया। दोनों नेताओं के बीच स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों को लेकर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 लागू कर दी है, जिसके तहत 29 जून से आंशिक धन निकासी के नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों के अनुसार सदस्यों को अपने खाते में कम से कम 25% राशि सुरक्षित रखनी होगी। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इस वर्ष इंदौर जिले में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। ये जानकारी नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में दी गई। और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा घोषित स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 में प्रदेश के 10 विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुए हैं। शहरी वर्ग में रतलाम के सांदीपनी विद्यालय जावरा ने प्रथम और भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर और रात 8:15। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे शाम 6:00। 6:30 आनंद लीजिएगा चित्रपट संगीत का। 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे डॉक्टर ऋतु पांडे से ली गई भेंट वार्ता, विषय है वर्षा ऋतु में स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद की सलाह। सुर्खियों में ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 8:00। आपकी फरमाइश कार्यक्रम का आनंद आप ले सकेंगे 10:00 और 9:30 फिल्म संगीत। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मध्य लंदन में खेले जा रहे महिला टी20 क्रिकेट मैच के दूसरे सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल हम रात 10:30 से आकाशवाणी दिल्ली से आपको सुनवाएंगे। ये थे शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5:00 से मीडियम वेव पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं, अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार श्रोताओं, अब शुरू हो चुका है युवा श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त श्रद्धा
1: और मैं अनुभूति। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है गुरुवार और आज आपको और हमको इंतज़ार रहता है हमारे एक बहुत ही स्पेशल सेगमेंट का, जिसका नाम है गीतों भरी कहानी। तो बने रहिएगा हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी, बहुत ही प्यारी सी कहानी आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जो आपको मोटिवेट भी करने वाली है और आपको सुनकर अच्छी भी लगेगी, ये हमारा दावा है। तो कहानी भी हम सुनेंगे और भी आज के दिन के बारे में हम बातचीत करेंगे, लेकिन श्रद्धा, क्यों ना हम हमारे श्रोताओं को बता दें कि आज के प्रश्न क्या हैं।
0: बिल्कुल अनुभूति। तो श्रोताओं, आज का पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी?
1: और दूसरा प्रश्न है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे?
0: दोस्तों, इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढकर तैयार रखिए और कार्यक्रम के अंत में हम इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही मुझे ना आप लोगों से कुछ और भी बात करनी है। अनुभूति, आज जब हम स्टूडियो में आ रहे थे तो बाहर का मौसम इतना सुहावना, इतना प्यारा जो मौसम हो रहा है, और इस रिमझिम बरसती शाम में जब खिड़की से ठंडी हवा की बौछारें आ रही हों, तो दिल ना अपने आप पुरानी यादों और नई कहानियों की तरफ मुड़ जाता है।
1: बिल्कुल, और इन दिनों मौसम सिर्फ बरस नहीं रहा है बल्कि मौसम कुछ गुनगुना भी रहा है। और अगर हम गुनगुनाने की बात कर रहे हैं श्रद्धा, तो क्यों ना एक गीत सुन लें और शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की।
0: बिल्कुल।

0: दोस्तों एक बार जरा सोचिए, अगर टीवी पर मैच चल रहा हो और आवाज म्यूट कर दी जाए तो क्या उतना ही मजा आ पाएगा?
1: बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिर्फ चौका छक्का या गोल्स देखने से कहानी पूरी नहीं होती श्रद्धा। असली रोमांच तो तब आता है जब कोई आपको बताता है कि खिलाड़ी के चेहरे पर वो मुस्कान क्यों है, हार के बाद उसकी आंखें नम क्यों हैं और जीत के पीछे कितनी मेहनत छिपी है।
0: और यही काम करते हैं खेल पत्रकार। आज विश्व खेल पत्रकारिता दिवस है, एक ऐसा दिन जो उन लोगों को समर्पित है जो मैदान में नहीं खेलते लेकिन पूरी दुनिया को खेल से जोड़ते हैं।
1: बिल्कुल, हर साल आज के दिन को ये दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत साल 1994 में की गई थी। दरअसल इसी दिन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की स्थापना भी की गई थी, जो दुनिया भर के खेल पत्रकारों का सबसे बड़ा संगठन है। इसीलिए इस दिन खेल पत्रकारों के योगदान को सम्मान देने के लिए विश्व खेल पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है।
0: अब जरा सोचिए, अगर खेल पत्रकार न होते तो हमें कैसे पता चलता कि किसी खिलाड़ी ने चोट के बावजूद मैच खेला, किस खिलाड़ी ने गरीबी से निकलकर ओलंपिक तक का सफर तय किया, या फिर किस खिलाड़ी के पीछे कितने सालों की मेहनत लगी हुई है।
1: बिल्कुल, खेल पत्रकार सिर्फ

0: स्कोर्स नहीं बताते, बल्कि आपको बताते हैं कि उस खेल के पीछे छिपे छिपे जो खिलाड़ी हैं उनकी कहानियां क्या है, और उन्हीं कहानियों को वो सामने भी लाते हैं। खिलाड़ियों के संघर्ष, उनकी जीत, हार, आंसू और मुस्कान, सब कुछ हमारे सामने लेकर आते हैं।
1: और आज तो खेल पत्रकारिता का रूप भी पूरी तरह बदल चुका है। पहले सिर्फ अखबार और रेडियो हुआ करते थे, फिर टीवी आया और अब डिजिटल मीडिया, यूट्यूब, पॉडकास्ट, लाइव ब्लॉगिंग, रील्स, हर प्लेटफॉर्म पर खेल की खबरें पल पल पहुंच रही हैं।
0: बिल्कुल, अब तो कई पत्रकार, आपने देखा होगा दोस्तों, मैदान से लाइव अपडेट्स भी देते हैं। मैच शुरू होने से पहले पिच रिपोर्ट, खिलाड़ियों की फिटनेस, टीम की रणनीति, दर्शकों का माहौल, सब कुछ रियल टाइम लोकेशंस में शूट करके हमारे मोबाइल फोन्स तक पहुंचाते हैं।
1: लेकिन खेल पत्रकारिता जितनी रोमांचक दिखती है उतनी आसान बिल्कुल नहीं है। कई बार पत्रकारों को अलग अलग देशों की यात्रा करनी पड़ती है, समय के अंतर के कारण पूरी रात जागकर रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है, और सेकंडों में सही जानकारी लोगों तक पहुंचानी होती है।
0: और सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है निष्पक्ष रहना, किसी एक टीम या खिलाड़ी का समर्थन बनने के बजाय सही और तथ्यात्मक जानकारी देना ही एक अच्छे खेल पत्रकार की पहचान होती है।
1: वैसे खेल पत्रकारिता सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है दोस्तों। हॉकी, कबड्डी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल, कुश्ती, बॉक्सिंग, शूटिंग, पैरा स्पोर्ट्स, हर खेल को पहचान दिलाने में पत्रकारों की बहुत बड़ी भूमिका होती है।
0: अगर छोटे शहर का कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करता है तो सबसे पहले उसकी कहानी लोगों तक पहुंचाने का काम भी खेल पत्रकारों का ही होता है। कई बार ऐसी रिपोर्टिंग खिलाड़ियों को स्पॉन्सर्स और पहचान दिलाने में भी मदद करती है।
1: और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक बड़ी स्पोर्ट्स स्टोरी सिर्फ मैच खत्म होने के बाद नहीं बनती, उसके लिए पत्रकार आंकड़े जुटाते हैं, पुराने रिकॉर्ड देखते हैं, खिलाड़ियों और कोच से बातचीत करते हैं, वीडियो का विश्लेषण करते हैं, और फिर एक ऐसी कहानी तैयार करते हैं जिसे पढ़ना या सुनना लोगों को पसंद आए।
0: यानी हम ऐसा मान सकते हैं दोस्तों कि खेल पत्रकार खेल और दर्शकों के बीच एक मजबूत पुल का काम करता है। वे हमें सिर्फ ये नहीं बताते कि कौन जीता है, बल्कि ये भी बताते हैं कि उस जीत या हार के पीछे की कहानी क्या थी।
1: तो दोस्तों, आज विश्व खेल पत्रकारिता दिवस पर आइए उन सभी खेल पत्रकारों को धन्यवाद करते हैं जो हर मौसम, हर टाइम जोन और हर चुनौती के बीच खेलों की दुनिया को हमारी दुनिया से जोड़ते हैं।

0: साधु साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो शायद हर उस घर की कहानी है जहां एक माँ की मेहनत तो दिखाई देती है लेकिन उसका त्याग अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है।
1: दोस्तों, आज की ये तो बड़ी कहानी है गरिमा की। पढ़ी लिखी, प्रतिभाशाली, आत्मसम्मान से भरी हुई गरिमा, जिसने अपनी इच्छाओं से पहले हमेशा अपने परिवार को रखा। लेकिन क्या हर त्याग की कीमत सिर्फ एक मुस्कान होती है, या कभी कभी सम्मान भी होना चाहिए?
0: रविवार का दिन था। रसोई से तरह तरह के व्यंजनों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। गरिमा आज कुछ ज्यादा ही खुश थी, वजह भी खास थी।
1: सुबह सुबह बेटी अनुभा का फोन आया था। माँ, ऑफिस के काम से पुणे आ रही हूँ। दोपहर का खाना घर पर ही खाऊंगी, शाम की फ्लाइट से वापस लौट जाऊंगी। बस इतना सुनना था कि गरिमा का चेहरा खिल उठा। उसने जल्दी जल्दी अनुभा की पसंद के पकवान बनाने शुरू कर दिए। पति परेश और बेटे आदित्य को भी फोन कर दिया कि आज दोपहर सब घर पर ही खाना खाएंगे।
0: हालांकि परेश ने मीटिंग का हवाला देकर दोपहर में आने से मना कर दिया था, लेकिन शाम को एयरपोर्ट छोड़ने का वादा जरूर किया।
1: बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ के लिए उनकी पसंद नापसंद कभी पुरानी नहीं होती।
0: बिल्कुल, और इंतजार वो तो माँ के हिस्से की सबसे पुरानी आदत है। सुबह 9 बजे की फ्लाइट थी। अनुभा ने कहा था कि 1 बजे तक पहुंच जाएगी, लेकिन ऑफिस का काम बढ़ गया। 1 बजी, फिर 2 बजी, और जब अनुभा घर पहुंची तब घड़ी 2:30 बजा चुकी थी।
1: दरवाजा खुलते ही गरिमा ने उसे गले लगाया, लेकिन अगले ही पल हल्के से उलाहने के साथ बोली, अभी भी वैसी की वैसी हो अनु, माँ को इंतजार करवाना नहीं भूली। कम से कम आज तो समय से आ जाती, अब 2 घंटे बाद फिर से जल्दी जाने की मचाएगी।
0: अनुभा ने बैग रखते हुए थोड़ा झुंझला कर कहा, माँ आप भी ना, बाहर काम करने वालों की जिंदगी इतनी आसान थोड़ी होती जितनी सबको लगती है।
1: इतने में आदित्य भी हंसते हुए बोला, छोड़ो ना दीदी, माँ क्या जाने बाहर की दुनिया, उनकी पूरी जिंदगी तो एक परफेक्ट हाउसवाइफ बनकर निकल गई। उनके लिए तो बस घर ही मंदिर, घर ही पूजा।
0: दोनों भाई बहन खिलखिलाकर हंस पड़े।
1: शायद उनके लिए वो सिर्फ एक मजाक था, लेकिन कई बार मजाक

0: भी ऐसे शब्द छोड़ जाता है जो बरसों तक चुपते रहते हैं।
1: उन दोनों की हंसी गरिमा के कानों में नहीं सीधे उनके दिल तक उतर गई। एक पल में उसके चेहरे की मुस्कान गायब सी हो गई और आंखें भर आईं।
0: बच्चों ने महसूस तो किया कि माँ को बुरा लगा है। आदित्य तुरंत बोल पड़ा, सॉरी माँ, हमारा वो मतलब नहीं था। गरिमा ने हल्की सी मुस्कान ओढ़ ली और कहा, कोई बात नहीं।
1: लेकिन ये मुस्कान सिर्फ चेहरे पर थी, दिल में नहीं।
0: सबके जाने के बाद गरिमा अपने कमरे में चली गई, दरवाजा बंद किया और बरसों से रोके हुए आंसू बह निकले।
1: हाउसवाइफ, घर का काम, बस यही एक शब्द उसके भीतर हथौड़े की तरह चुभ रहा था।
0: क्या सचमुच उसकी पहचान सिर्फ इतनी ही रह गई थी? क्या घर संभालना, बच्चों को बड़ा करना, परिवार को जोड़ कर रखना कोई काम नहीं था?
1: रोते रोते उसने अलमारी खोली, एक पुरानी फाइल उसे दिखी। उस फाइल में उसने देखा कि एमए साहित्य की डिग्री रखी थी, एमए पत्रकारिता की डिग्री रखी थी, पुरस्कार के सर्टिफिकेट्स थे, सम्मान पत्र थे, छिपी हुई रचनाओं की कटिंग्स थी। गरिमा एक एक कागज को ऐसे छू रही थी मानो कोई अपना खोया हुआ परिचय तलाश रहा हो। ये सिर्फ कागज नहीं थे, ये उस लड़की के सपने थे जो कभी अपने नाम से पहचानी जाती थी।
0: लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वही गरिमा अपनी पहचान से इतनी दूर चली गई?

0: दोस्तों, गीत से पहले आप सुन रहे थे गीतों भरी कहानी। अभी तक आपने सुना कि एक मजाक ने गरिमा के भीतर सालों पुराना दर्द जगा दिया।
1: गरिमा हमेशा से ऐसी नहीं थी। शादी से पहले वो एक अच्छी नौकरी करती थी, पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और अपने काम से बेहद प्यार करने वाली लड़की।
0: जब परेश से शादी की बात चली तो उसने साफ कहा था, मैं शादी के बाद नौकरी नहीं छोड़ूंगी। परेश ने मुस्कुराकर हामी भर दी। उसे लगा दो कमाने वाले होंगे तो घर भी अच्छी तरह चलेगा।
1: शादी हुई, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अनुभा का जन्म हुआ और कुछ ही महीनों बाद घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परेश की माँ का निधन हो गया।
0: अब सवाल था कि इतनी छोटी बच्ची को संभाले तो संभाले कौन। ऐसे में परेश ने कहा, बस एक साल का ब्रेक ले लो, फिर नौकरी शुरू कर लेना।
1: गरिमा ने अपने सपनों को थोड़ा सा रोक लिया। परिवार की भलाई और उसके बच्चों की खुशी के लिए उसे ऐसा लगा कि बस एक साल की ही तो बात है।
0: 1.5 साल बाद उसने फिर नौकरी शुरू की, लेकिन किस्मत ने एक और मोड़ ले लिया। उसी दौरान उसे पता चला कि वो फिर से माँ बनने वाली है। ये खबर खुशी से ज़्यादा चिंता लेकर आई थी, क्योंकि इस बार न शरीर तैयार था न परिस्थितियाँ।
1: और धीरे धीरे आदित्य का जन्म हुआ और पता चला कि वो बहुत कमज़ोर है। फिर क्या था, डॉक्टर, दवाइयाँ, अस्पताल, यही गरिमा की दुनिया बन गई।
0: उधर परेश का प्रमोशन हो गया, जिम्मेदारियाँ बढ़ी, दौरे बढ़े और घर की पूरी जिम्मेदारी गरिमा के कंधों पर आ गई।
1: एक साल का ब्रेक धीरे धीरे कई सालों में बदल गया।
0: कभी किसी ने उससे नहीं पूछा कि तुम्हारे सपनों का क्या हुआ, क्योंकि सबको लगता था माँ तो बस माँ होती है, उसकी अपनी कोई इच्छा थोड़ी होती है।
1: बच्चे बड़े होने लगे, स्कूल जाने लगे, घर की भागदौड़ थोड़ी कम हुई तो गरिमा कभी कभी खेलने लिखने बैठ जाती।
0: उसकी कहानियां और लेख पत्र पत्रिकाओं में छपने लगे। हर प्रकाशित रचना उसे याद दिलाती कि उसके भीतर की लेखिका अभी भी जिंदा है।
1: इसी बीच एक दिन अचानक उसकी पुरानी सहेली सावी घर पर आ पहुंची। सावी पहले की तरह ही बेबाक थी। उसने आते ही कहा, गरिमा, मैं एक नई साहित्यिक पत्रिका शुरू कर रही हूँ, उसके संपादकीय समूह में मुझे तुम्हारी जरूरत है, अगले सोमवार से ऑफिस आ जाओ।
0: गरिमा ने परेश की ओर देखा। परेश ने कहा, घर की व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, अगर सब संभल जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। गरिमा की आंखों में फिर वही पुरानी चमक लौट आई। बरसों बाद उसे लगा कि शायद उसकी पहचान उसे फिर से बुला रही है।

0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार

0: कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: दोस्तों, आप सुन रहे हैं गीतों भरी कहानी। अब तक आपने सुना कि बरसों बाद गरिमा को अपनी पुरानी सहेली सावी के माध्यम से फिर से काम करने का अवसर मिला। ऐसा लगा जैसे उसकी रुकी हुई जिंदगी फिर से चल पड़ी।
2: लेकिन हर नई शुरुआत अपने साथ कुछ चुनौतियां भी लेकर आती हैं। तो आगे कहानी में क्या हुआ, हम सुनते हैं।
1: सालों बाद गरिमा फिर से अपने काम पर लौटी। साहित्यिक पत्रिका साहित्य ज्ञान का पहला अंक प्रकाशित हुआ और पाठकों ने उसे खूब सराहा। धीरे धीरे पत्रिका की पहचान बढ़ने लगी और उसके साथ साथ गरिमा की भी।
2: अब उसका दिन घर और दफ्तर दोनों के बीच बीतने लगा। थकी हारी जब शाम को घर लौटती तो बच्चे शिकायत करते, माँ पहले कितना अच्छा था, आप हमेशा हमारे पास घर पर रहती थी।
1: गरिमा मुस्कुरा देती, उसे लगता शिकायत में भी अपना पंसा है।
2: एक दिन घर में काम करने वाली जो मेड है उसने धीरे से कहा, दीदी बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, इस उम्र में माँ बाप का साथ बहुत जरूरी होता है। तो आप और साहब तो दोनों बाहर रहते हैं, बच्चे दिन भर घर में अकेले रहते हैं, कहीं कोई गलत संगत मिल गई तो?
1: गरिमा ने हंसते हुए जवाब दिया, मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसे अपने बच्चों पर पूरा भरोसा था। लेकिन कई बार भरोसा और हकीकत के बीच बहुत बड़ा फासला होता है।
2: एक दोपहर गरिमा कुछ जरूरी कागज घर पर भूल गई थी और अचानक दफ्तर से घर लौट आई। दरवाजा खोलते ही उसने जो देखा और सामने का दृश्य देखकर उसके कदम वहीं रुक गए।
1: घर के बाहर दो गाड़ियां खड़ी थी। अंदर ड्राइंग रूम में दो अनजान लड़के बैठे थे और मजाक मजाक में अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। वो अपने बच्चों को गलत राह पर जाते देख रही थी।
2: गरिमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्षण भर के लिए वो कुछ समझ नहीं पाई। अगले ही पल उसने दोनों लड़कों को बाहर निकाल दिया।
1: उस दिन पहली बार गरिमा का हाथ अपने बच्चों पर उठा। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। गुस्सा बच्चों पर कम, अपने आप पर ज्यादा था।
2: कभी कभी माता पिता बच्चों को हर सुविधा तो देते हैं लेकिन समय नहीं दे पाते,
1: और समय की जो खाली जगह होती है उसे कई बार गलत लोग भर देते हैं,
2: और साथ ही ये बच्चों की भी गलती होती है। उस घटना के बाद परिवार ने मिलकर स्थिति संभाल ली, बच्चों को समझाया और उनकी पढ़ाई पर उन्हें फिर से ध्यान देने के लिए कहा।
1: लेकिन इस बार गरिमा ने एक और फैसला लिया, उसने साहित्य ज्ञान छोड़ दिया। इस बार ये सिर्फ एक ब्रेक नहीं था, उसने अपने करियर पर मानो पूर्ण विराम लगा दिया।
2: अब उसकी दुनिया फिर से वही थी, बच्चों की पढ़ाई, घर परिवार, उनका भविष्य और उनका जीवन। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हुए, अच्छी शिक्षा मिली, अपने अपने करियर में आगे बढ़ते रहे।
1: गरिमा ने कभी शिकायत नहीं की। उसे लगता था अगर बच्चे सफल हैं तो उसका त्याग भी सफल है। लेकिन आज उन्हीं बच्चों के मुंह से निकला हुआ शब्द हाउसवाइफ उसके बरसों पुराने घाव फिर से हरे कर गया। क्या सचमुच एक माँ का त्याग इतना छोटा हो जाता है कि उसे सिर्फ एक मजाक में भुला दिया जाए?
2: या फिर अब समय था कि गरिमा अपनी पहचान वापस हासिल करे, यही जानेंगे कहानी के अंतिम भाग में।

0: दोस्तों, आप सुन रहे हैं गीतों भरी कहानी। अब कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर है।
1: कभी कभी एक चोट इंसान को तोड़ती नहीं बल्कि उसे फिर से खड़ा होना सिखा देती है। कमरे में रखी पुरानी फाइल समेटते समय गरिमा की नजर एक विजिटिंग कार्ड पर पड़ी।
0: वो उसी पुरानी सहेली सावी मेहरा का कार्ड था। गरिमा ने बिना देर किए फोन मिलाया। दूसरी तरफ से वही पुरानी जोशीली आवाज आई, अरे गरिमा, कितने साल बाद याद किया।
1: गरिमा ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, सावी, मैं वापस काम करना चाहती हूँ, क्या मेरे लिए कोई जगह है। कुछ पल की खामोशी के बाद सावी हंस पड़ी, बस इतनी सी बात, कल सुबह 11 बजे गाड़ी भेज रही हूँ, बाकी बातें ऑफिस में करेंगे।
0: फोन रखते ही बरसों बाद गरिमा के चेहरे पर सुकून की मुस्कान लौट आई।
1: रात को पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठा था। खाना खत्म होने के बाद गरिमा ने शांत स्वर में कहा, मैंने तय किया है, कल से मैं फिर से साहित्य ज्ञान ज्वाइन कर रही हूँ।
0: आदित्य चौंक गया, क्या माँ, ये अचानक। परेश चुपचाप गरिमा की ओर देख रहे थे। बहू भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। आदित्य ने कहा, माँ, हमारे एक छोटे से मजाक की इतनी बड़ी सजा।
1: गरिमा मुस्कुराई, ये फैसला आज का नहीं आदित्य, बस आज उसे लेने की हिम्मत मिल गई। आदित्य ने फिर कहा, लेकिन माँ, हम दोनों नौकरी करते हैं, अब तो हम शादीशुदा भी हैं, हम आगे भी बढ़ गए हैं, अब आगे का आपको क्यों सोचना।
0: गरिमा ने बहुत शांत स्वर में जवाब दिया, अब तो घर में मेड है और अगर जरूरत पड़े तो कुछ समय के लिए तुम्हारी पत्नी भी ब्रेक ले सकती है। इतना सुनते ही आदित्य चुप हो गया। गरिमा आगे बोली, मैंने भी तो लिया था तुम्हारे लिए और अनुभा के लिए, एक बार नहीं बल्कि दो बार। उसकी आवाज में शिकायत कम सच ज्यादा था।
1: फिर वो बोली, पूरी जिंदगी मैंने परिवार के लिए जी, मुझे उस पर कोई पछतावा नहीं, लेकिन अब मैं अपने लिए थोड़ा सा जीना चाहती हूँ, मैं अपनी पहचान फिर से पाना चाहती हूँ।
0: पूरा कमरा शांत हो गया। आदित्य के पास कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह सिर्फ एक नई सुबह हुई, जहाँ पर वो सुबह सपनों वाली, उम्मीदों वाली और सचमुच गुलाबी थी।
1: तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की गीतों भरी कहानी। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि आज के

0: प्रश्न क्या थे? तो आज का पहला प्रश्न था कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, जिसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य।
1: और दोस्तों आज का दूसरा प्रश्न था कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, इसका उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक।
0: इसी के साथ दीजिए इजाजत अनुभूति
1: और श्रद्धा को।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में 1942 अ लव स्टोरी फिल्म से जावेद अख्तर की ये रचना, संगीत आर डी बर्मन का।

0: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
1: सच?
0: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
1: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए
0: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
1: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
0: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजों में 1947 अर्थ इस फिल्म से जावेद अख्तर का लिखा ये गीत, संगीत AR रहमान का है।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: तो हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश, उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं।
1: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
3: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
1: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
3: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है,
1: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
3: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं,
1: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
3: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
3: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
1: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में
3: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
1: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
3: तो दीजिए हिंट।
1: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
3: जी।
1: इसे तराशा जाता है और हाँ, ये कांच काटने के काम भी आता है।
3: जी अजीत जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
1: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओं, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
3: श्रोताओं, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
1: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं
3: जी।
1: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
3: श्रोताओं, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
1: श्रोताओं, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
3: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
1: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टाने तीव्र गति से ऊपर उठती है और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं
3: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोताओं, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
1: पता है श्रोताओं, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
3: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
1: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है, तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
3: तो श्रोताओं, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
1: जी, तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
3: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
3: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
4: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो, उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है। अति सुंदर। और तनिक उधर देखो, उद्यान के बाहर कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है, और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
5: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
4: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
6: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं।
7: ओह, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
4: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
6: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है।
8: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
6: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो।

0: मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
1: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
2: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
3: कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है।
4: तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है।
3: ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
0: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
4: आहा, तो हंस तुम्हारे पास है। लाओ उसे मुझे दे दो।
0: क्यों दे दो?
3: ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है।
4: भाई इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
0: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
4: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
2: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
5: महाराज की जय हो।
6: महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
2: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
7: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
3: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
7: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
0: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
7: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
0: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
3: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
0: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
7: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
8: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
7: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
8: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
2: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
9: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा।

0: ना
1: ये
0: चाहिए
1: बात
0: लेकिन
2: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
3: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
4: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया लेकिन बात नहीं बनी।
2: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
5: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
4: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी, हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
6: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
7: महाराज की जय हो,
8: महाराज की जय हो,
9: महाराज की जय हो।
10: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।
11: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ, अलग रूम में चल चलूँ।

0: तो सुनी आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0।
4: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समयानुसार ठीक 11:50। जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा, लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
5: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया है।
4: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर्य यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
6: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
7: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
6: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
7: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
8: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
9: हम अच्छे हैं।
8: तो बच्चों, शुरू करते हैं बातचीत। आप तैयार हैं?
9: जी हम तैयार हैं।
8: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर यान आदित्य L1 के बारे में।
9: आदित्य L1 के बारे में?
2: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
7: सर, इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
8: बहुत अच्छा सवाल। देखो, आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज, यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ, सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
6: सर, टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
8: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
7: जी सर, उनका नाम है भास्कर आचार्य।
8: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
7: जी, मेरा नाम श्रुति है।
8: शाबाश श्रुति। तुम्हें बता दूं कि भास्कर आचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
10: सूर्य ग्रह है या तारा?
8: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
7: सर, मेरा नाम सुमित है। सूर्य एक ग्रह है।
8: सुमित, तुमसे जरा सी भूल हो गई। सूर्य असल में एक तारा है।
9: अच्छा सर।
6: सर, मेरा नाम सो

0: है। मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जलती है?
1: और अगर जलती है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
2: बच्चों, दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती। सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
0: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
2: हाँ, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
3: विशाल गैसों का गोला?
0: अब समझ आया कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
2: शाबाश, समझ गए ना?
3: जी सर।
1: सर, जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
2: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ, एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
0: सर, आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
2: जरूर बच्चों। देखो, आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है, जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
3: जी सर।
2: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
1: सर, हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य यान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
2: हाँ, सही कहा। आदित्य यान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
0: सर, मेरा नाम दिवाकर है।
2: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना?
3: जी सर।
2: जी दिवाकर, आपका प्रश्न क्या है?
0: सर, मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
2: अरे भला जलेगा कैसे? आदित्य यान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
1: जी सर। सर, आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
2: देखो बेटी, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है, जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है, और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
0: सर, एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी, और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें। ऐसा क्यों?
2: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन आदित्य यान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
1: सर, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी, और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
2: शाबाश बच्चों, शाबाश। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
4: तो साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
5: हमारा आदित्य। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।

0: के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत। हमारी आज की कलाकार हैं जसविंदर नरूला।

और अब सुगम संगीत की अंतिम प्रस्तुति। आज की हमारी कलाकार हैं जसविंदर नरूला, उन्हीं के स्वर में ये एक और गीत।

अभी आपने सुने जसविंदर नरूला की आवाज़ में कुछ गीत। सुगम संगीत अब समाप्त होता है। श्रोताओं, आइए आपको एक सूचना दे दें। साइबर क्राइम की बढ़ते खतरे और जन जागरूकता के लिए विविध भारती इंदौर FM 101.6 MHz आपके लिए लेकर आ रहा है इस शुक्रवार दिनांक 3 जुलाई 2026 को सुबह 11:32 से 12 बजे सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहें सावधान। ये कार्यक्रम शुक्रवार दिनांक 3 जुलाई 2026 सुबह 11:32 से 12 बजे तक FM 101.6 MHz विविध भारती चैनल पर प्रसारित हो रहा है। इस सजीव फोन इन कार्यक्रम के विशेषज्ञ होंगे DSP नरेंद्र सिंह रघुवंशी, स्टेट साइबर सेल इंदौर। श्रोता साइबर अपराधों से जुड़ी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान सीधे प्राप्त कर सकेंगे। हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। शुक्रवार यानी कल दिनांक 3 जुलाई 2026 को सुबह 11:32 से 12 बजे तक। तो आप ही फोन करके साइबर क्राइम रोकने हेतु विशेष सावधानियां विशेषज्ञ DSP नरेंद्र सिंह रघुवंशी स्टेट साइबर सेल इंदौर से जान सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है लोक संगीत।

अभी आपने सुने रतनदास बैरागी और साथियों की आवाज़ों में कुछ मालवी लोकगीत। लोक संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं की बातचीत से ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, अब सुनिए आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आज शाम 7:20 पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम में आप सुनेंगे सज्जाद अहमद कुरैशी का कविता पाठ और सोयाबीन की बुवाई की विधियों के बारे में डॉक्टर कांति शरण भार्गव हमें जानकारी देंगे। उनसे बातचीत की है राजेश जी ने, साथ ही कार्यक्रम में होंगे कुछ लोकगीत। सुर्खियों में ये न्यूज रील हम रिले करेंगे भोपाल केंद्र से रात्रि 8:00। 8:15 पर सुनना न भूलें कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। चित्रगीत प्रसारित होगा आज रात्रि 9:15 पर और श्रोताओं की फिल्मी गीतों की फरमाइशों को पूरा किया जाएगा मन भावन में रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10:00 शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिएगा राजस देशपांडे का शास्त्रीय गायन राग पूरिया कल्याण में। श्रोताओं, रात्रि 10:30 से हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के सेकेंड सेमीफाइनल के अंतर्गत इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले मैच की कमेंट्री का सीधा प्रसारण। ये थी आज की शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। आइए अब आपको कल के मुख्य कार्यक्रमों की भी जानकारी दे दें। कल सवेरे 6:35 पर खेती की बातें में सोयाबीन की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी देंगी सुनीता पंडित। इंदौर परिक्रमा, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सवेरे 7:20 पर। सदाबहार फिल्मी गीत आप सुन सकते हैं 7:35 से। कार्यक्रम होगा सुनहरे पल। आठ बजकर 30 पर प्रसारित होगी कवि गोष्ठी। अरुण कुमार गोयल के गाए लोकगीत आप सुनेंगे लोक संगीत में कल सवेरे 9:00 और कल शाम 6:45 पर। सुगम संगीत का समय रहेगा कल सवेरे 9:15 और शाम 6:30। कलाकार होंगी हेमा सरदेसाई। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत कल सवेरे हमारे श्रोता सुनेंगे पूर्वी निमगांवकर का उप शास्त्रीय गायन। समय रहेगा सवेरे 9:30। जिले की चिट्ठी प्रसारित होगी कल सुबह 10:00 और 10:05 से आप हमसे जुड़ सकते हैं अपने फोन कॉल्स के माध्यम से हमारे फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन में। दिन में 1:00 सुनना ना भूलें महिला कार्यक्रम। हमारे मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में 11:00 आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। 12:00 फिल्म संगीत। 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से। लोक संगीत दिन में 1:30 पर और सुगम संगीत दिन में 1:45 पर। हमारी शाम की सभा की शुरुआत में 5:00 होगा युववाणी कार्यक्रम। कल के आकर्षण होंगे साप्ताहिक विज्ञान और खेल गतिविधियां। फिल्म संगीत का समय रहेगा शाम 5:45 से। शाम 6:00 होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। कल शाम 7:20 पर खेती गृहस्थी के अंतर्गत सुनिएगा भेंट वार्ता दूध और दूध का मूल्य संवर्धन। जानकारी देंगे डॉक्टर प्रणव चौहान, उनसे बातचीत की है भारती उपाध्याय ने। इसके साथ ही कार्यक्रम में होंगे कुछ लोकगीत। रात्रि 8:00 भोपाल से सुनिएगा न्यूज रील सुर्खियों में दिल ने फिर याद किया। ये कार्यक्रम सुनना ना भूलें कल रात 8:15 पर। चित्रगीत प्रसारित होगा कल रात्रि 9:15 पर। 9:30 से आप सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन भावन। कल रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे पूर्वी निमगांवकर का उप शास्त्रीय गायन। श्रोताओं, ये थी कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 7:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री ताकाइची की शिखर वार्ता। आर्थिक, रक्षा और एआई क्षेत्र में हुए कई समझौते। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में अल्प वर्षा की तैयारियों के साथ नर्मदा समग्र मिशन की समीक्षा की। मनरेगा की जगह लेने वाली वीबी जीराम जी योजना का प्रदेशव्यापी शुभारंभ। अब मिलेगी 125 दिन रोजगार की गारंटी। और दतिया विधानसभा उपचुनाव का ऐलान, 30 जुलाई को होगा मतदान और 3 अगस्त को मतगणना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच नई दिल्ली में वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता हुई। भारत और जापान ने आर्थिक, ऊर्जा, सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल, रक्षा और एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों ने पहली सह विकास परियोजना पर भी समझौता किया। ऊर्जा सुरक्षा के तहत भारत जापान जैव गैस पहल से देश में 1000 जैव गैस और आर्थिक जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। हमने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मंत्रालय में अल्प वर्षा की संभावना को देखते हुए विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मसूर और उड़द जैसी कम पानी की फसलों के प्रति व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए तथा अलनीनो के प्रभाव को देखते हुए एडवांस प्लानिंग की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने अगले 2 वर्षो की कार्य योजना के तहत जलाभिषेक 2.0 के माध्यम से तालाबों और बावड़ियों के पुनर्जीवन के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने नर्मदा समग्र विभिन्न मिशन की भी समीक्षा की। इस मिशन का उद्देश्य नर्मदा नदी का संरक्षण और जल संवर्धन करना है। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले से विकसित भारत जीराम जी योजना का राष्ट्रीय शुभारंभ किया। श्री चौहान ने कहा कि इस योजना के तहत मनरेगा के 100 दिनों की तुलना में अब 125 दिन रोजगार की गारंटी दी जाएगी।
2: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जीराम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। केंद्र ने जो अपना शेयर दिया है, पैसा दिया है, वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया। इतनी बड़ी धनराशि मजदूरों को काम और गांव के विकास के लिए दी जाएगी।
0: वहीं प्रदेश में भी विकसित भारत जीराम जी योजना आज से मनरेगा का स्थान ले चुकी है। सभी जिलों में आज जन सम्मेलन सह लॉन्च कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा का उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भोपाल स्थित निवास कार्यालय में अभिनंदन किया। दोनों नेताओं के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में नवाचारों को लेकर चर्चा हुई। डॉ. साहा 28वें AOMSI मिड टर्म कन्वेंशन में शामिल होने के लिए भोपाल आए। यह राष्ट्रीय सम्मेलन 2 से 4 जुलाई तक पीपुल्स यूनिवर्सिटी परिसर में क्रिएटिंग अ होलसम सर्जन थीम पर आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण और पोषण प्रबंधन को मजबूत करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के कुल 2,548 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें 781 पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 1,767 पद सहायिकाओं के लिए हैं। स्थानीय पात्रताधारी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन MP ऑनलाइन के जरिए 13 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। दोनों पदों के लिए 12वीं उत्तीर्ण और 18 से 35 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in

0: आईएन पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। चुनाव आयोग ने दतिया विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई और मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना होगी। दतिया विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। ये उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त होने की वजह से हो रहा है। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के ई नगर पालिका पोर्टल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार की साइबर सुरक्षा श्रेणी में रजत पुरस्कार मिला है। जयपुर में आयोजित समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने यह सम्मान आयुक्त संकेत भोंडवे को प्रदान किया। आयुक्त श्री भोंडवे ने कहा कि विभाग ने आधुनिक तकनीकों और सुदृढ़ साइबर सुरक्षा उपायों से डिजिटल नागरिक सेवाओं को प्राथमिकता दी है। प्रदेश के सहकारिता खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने आज भोपाल में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। ये प्रदर्शनी सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित सहकारी सप्ताह के तहत लगाई गई है। उन्होंने हस्तशिल्प कारीगरों और महिला स्वसहायता समूहों को सिलाई मशीन सहित टूल किट भी वितरित किए। ये प्रदर्शनी 4 जुलाई तक आम नागरिकों के लिए खुली रहेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री और धार सांसद सावित्री ठाकुर ने आज पीथमपुर में निर्माणाधीन रेलवे टनल का निरीक्षण किया। इस दौरान वे करीब 70 फीट नीचे उतरकर टनल के भीतर पहुंची। उन्होंने कहा कि रेल परियोजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस परियोजना के पूरी होने के बाद क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत अब तक 25,892 जनजातीय घर विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सर्वाधिक 13,058 घरों को विद्युतीकृत किया है। ये योजना आदिवासी बाहुल्य गांवों में परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसमें 40% व्यय राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश की पुलिस के लिए 1 जुलाई से EHRMS का ई लीव मॉड्यूल लागू कर दिया गया है, जिसपे पुलिसकर्मी अब ऑनलाइन अवकाश आवेदन और उनकी स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा के निर्देश पर प्रदेश की करीब 120 पुलिस इकाइयों में यह व्यवस्था लागू की गई है। भारतीय रेलवे ने जून 2026 में पिछले वर्ष की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस दौरान 63,81,00,000 यात्रियों ने रेल यात्रा की, जो कि पिछले वर्ष से अधिक है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में आज भोपाल समेत 11 जिलों में तेज बारिश हुई। खरगोन के कसरावद में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश से सड़कें और खेत जलमग्न हो गए। शाजापुर के अकोदिया में लंबे इंतजार के बाद हुई बारिश से किसानों को राहत मिली। वहीं मानसून ने 24 जून को प्रदेश में एंट्री की थी और 9 दिनों में पूरे प्रदेश को कवर कर लिया है। मौसम विभाग ने हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, छिंदवाड़ा, पांडुना और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा घोषित स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग में प्रदेश के 10 विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुए हैं। शहरी वर्ग में रतलाम के सांदीपनी विद्यालय जावरा ने प्रथम और भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत इंदौर में इस बारिश में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। BSF परिसर सहित देवगुराड़िया, लिम्बोदी और कृषि कॉलेज परिसर में बड़े पैमाने पर पौधरोपण होगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नागरिकों से माँ के सम्मान में कम एक पौधा लगाने की अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिले में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण का शुभारंभ किया। रायसेन जिले के 1800 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्कूल रेडीनेस मेला 2 का समापन उत्सव का आयोजन किया गया। बैतूल जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भैंसदही की छात्रा पद्मा मरसकोले ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश पाकर जिले का नाम गौरवान्वित किया है। देवास जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 3 दिनों में 1,84,000 से अधिक बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलाई गई। शिवपुरी के कृषि विज्ञान केंद्र पर किसानों के लिए टमाटर और मिर्च की उन्नत खेती को लेकर एक विशेष किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भिंड में फसल बीमा माह के अंतर्गत जिला स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आगरमालवा के शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युवा संगम के तहत कल युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री ताकाइची की शिखर वार्ता, आर्थिक, रक्षा और AI क्षेत्र में हुए कई समझौते। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मंत्रालय में अल्प वर्षा की तैयारियों के साथ नर्मदा समग्र मिशन की समीक्षा की। मनरेगा की जगह लेने वाली वीबी जीराम जी योजना का प्रदेशव्यापी शुभारंभ, अब मिलेगी 125 दिन रोजगार की गारंटी और दतिया विधानसभा उपचुनाव का ऐलान, 30 जुलाई को होगा मतदान और 3 अगस्त को मतगणना। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए, प्रस्तुत है किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाला अपना सगला किसान भाई बहन के तमारी बेन मनीषा शर्मा की प्रेम भरी राम राम। भाई बहनों, झमाझम बरसात की शुरुआत हो गई है। आने कल तो इंदौर सहित अपना क्षेत्र का मालवा निमाड़ का कई सारा इलाका होने में खूब बारिश हुई है। अने जय देखो वही पानी पानी दिखी रो थो। आने ऐसो नजारो अपना खेत खलियान में चली जाऊ तो वहां भी देखने के मिले। जब तेज बारिश होए तो समतल जगहों पे भी ऐसा लगे कि माँ गंगा और नर्मदा बह रही हो। आने पर यह बात देखने में आवे कि जो नर्मदा और गंगा अपना यहाँ गाँव ना में बहे उके यदि अपन संभाल ला तो। भाई बहनों, जो जल है या पानी है वो प्रकृति को दियो वो सबसे अनमोल उपहार है। अने वैसे तो पृथ्वी पर 71% पानी है, पर सिर्फ 1% जल ऐसो है जिके अपन पी सकता है या इस्तेमाल कर सकता है। अने ना जल का बिना जो 1% जल है इका बिना रहनो तो बिल्कुल असंभव है। अने हमारा अन्नदाता भाई बहन उनके लिए तो उनकी सबसे बड़ी पूंजी है मिट्टी और पानी। किसान भाई उन पानी के बार ऐसो मतलब ऐसो देखने के मिले कि कई बार कुछ ज़्यादा क्षेत्र होने में खूब बारिश हो जाए अने कहीं कहीं पे बारिश ही नहीं हो। आना कई किसान भाइयों इंद्रदेव से पानी बरसाने की प्रार्थना करें। भाई बहनों, पानी अनमोल है, इके अपन बने ही तो सकता नहीं है पर बचे ही तो सकता है। आज जो पानी यहाँ वहाँ बह रियो है यदि अपन उके संग्रहित करी लांगा तो साल भर पानी की समस्या से नहीं जूझांगा। भाई बहनों, बरसात का पानी के अपना खेत में सहेजी के रखी सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम द्वारा अपना खेत नामे कुआ नामे जल को संग्रहण कर सकता है। अने अपना खेत नामे अपन ऐसी व्यवस्था करा कि जो जल यहाँ वहाँ बह रो है वो जाई के अपनी तलाई या कुआ में चली जावे। अने यहाँ वहाँ बहने से बचे और अपना कुआ में भिड़ो हो जाए और जिससे अपन साल भर के वापरी सका। अने जल जो जल संग्रहण है उका लिए सरकार भी सहयोग दे। अपना खेत नामे तलाई बनाई के भी अपन पानी संग्रहित कर सकता है। भाई बहनों, 1 इंच बारिश मतलब 1 एकड़ में 1,00,000 लीटर पानी की सिंचाई। यदि यो पानी बही के यहाँ वहाँ चली जावेगो तो अपने नुकसाने जोवेगो। क्यों नहीं अपन अपना खेत को पानी खेत में ज रखा और वहाँ ऐसो खेत कर ला कि वो पानी बही के ऐमा ही नहीं जावे। कुओं बनावा, खेत में गहरो गड्ढो करी दावा, मेड़ के ऊँची करा और मेड़ के अपन जो प्लास्टिक की पन्नी होन हो उनसे ढकी दा। जिका से कही होगा कि खेत को पानी खेत में ज रहेगो। अने वैसे भी क्यों जावे कि खेत को पानी खेत में ने गाँव को पानी गाँव में रहेगो तो पानी की समस्या आगे नहीं आएगी। और हाँ, पानी रोकने को सबसे कारगर और आसान यंत्र है वृक्ष लगाओ। वृक्ष जितना हो सके लगा और अभी तो समय है कि आप अपना खेत की मेड़ होन पे घर का आसपास जहाँ भी जगह हो वहाँ वृक्ष लगाई दोगा तो बहुत जल्दी चेतेगा और बहुत जल्दी बड़ा होगा। तो भाई बहनों, वृक्ष लगाओ और वृक्ष लगाने का साथ साथ हम लोग एक गीत भी सुन ला जी गाए बेन माया देवी पटेल ने।

भाई बहनों, घनी गर्मी पड़े ने गर्मी का बाद जैसे पानी पड़े अपना किसान भाइयों की व्यस्तता थोड़ी बढ़ी जावे ने समय आई जावे बहुणी को। अपना किसान भाई होन बहुणी में लग्या होगा अने कई भाइयों ने करी भी ली होगी, पर बहुणी जो भाइयों करी दिया है उनका लिए कुछ सुझाव हम लेके आया है

0: कि बोवणी करते वक्त अपन कौन सी विधि ना अपनावा और कौन कौन सी बात उनको ध्यान रखा जिससे कि अपनी बोवणी सफल हो और अच्छा उत्पादन अपने मिले। तो सुना अपन भेंट वार्ता जिमें डॉक्टर के एस भार्गव कृषि विज्ञान केंद्र देवास से है, उनसे बात करी है राजेश जी ने। तो सुना भी कई जानकारी अपने दई है।
1: किसान भाइयों राम राम। सोयाबीन की बुआई की विधियां, इस विषय के बारे में जानकारी देने के लिए हम अपने कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र देवास के वैज्ञानिक डॉक्टर के एस भार्गव जी को आमंत्रित किया है। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अब करीब करीब हमारे क्षेत्र में सोयाबीन की बुआई कार्य करीब करीब शुरू हो चुकी है।
2: बिल्कुल।
1: और कई किसान भाई नहीं भी किए।
2: नहीं किए।
1: तो बुआई के पूर्व सबसे पहले हम आपसे जानना ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में सोयाबीन की प्रचलित किस्में कौन कौन सी हैं।
2: सोयाबीन की जो प्रचलित किस्मों की बात करें तो उसमें मैं बताना चाहूँगा, आजकल जो किसानों की सबसे लोकप्रिय जो एक वैरायटी है उसका नाम है JS 9560। आजकल NRC 150 ही बहुत अच्छी चल रही है। RBS 24 ही बहुत अच्छी वैरायटी है। तो इस तरह की कई वैरायटी हैं जो किसानों के बीच में बहुत प्रचलित है।
1: पीला रोग मोजिक रोग सोयाबीन में जो लगता है इसकी प्रतिरोधी किस्म कुछ है क्या?
2: पीला रोग जो किस्म के इसमें प्रतिरोधी के बारे में बताना चाहूँगा, पीला रोग जो है ज़्यादातर जो पीला रोग जो अपन बात करते हैं ये येलो मोजेक नाम की एक बीमारी है और ये मक्खियों के कारण फैलती है। तो मक्खियों के कारण फैलती है, तो अगर आप इसको सफ़ेद मक्खी को अगर इसमें कंट्रोल करेंगे तो निश्चित ही पीला रोग आपका कम से कम आएगा।
1: कौन सी दवाई से करते हैं
2: इसके लिए? आप एक तो इमिडाक्लोरोपिड करके एक दवाई आती है और दूसरा मक्खी मारने के जो भी रस चूसे कीड़े हैं उनकी जो भी है उसको आप छिड़काव करेंगे तो निश्चित ही मर जाएंगी।
1: हम आपसे जानना चाहते हैं कि सोयाबीन की बुआई का समय चल रहा है और कई किसान भाई बोनी भी करने वाले हैं, तो कैसे बोनी करना चाहिए, इसकी क्या विधि है?
2: देखिए, ये जो आपने विषय पूछा ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है सोयाबीन की बुआई के बारे में जो मैं बात करना चाहूँगा। सोयाबीन क्या है मुख्य तरह से आजकल सामान्य किसान भाई कैसे करते हैं, जो अपनी सामान्य सीड ड्रिल है जिसके किसान भाई डबल पेटी वाली सीड ड्रिल बोलते हैं, या वैज्ञानिक भाषा में आप उसे बात करेंगे तो सीड कम फर्टी ड्रिल, एक जो मशीन रहती है उसके माध्यम से लोग बुआई करते हैं, हमारे किसान भाई बुआई करते हैं। उसमें क्या रहता है कि पीछे एक पंजी लगी रहती है, वो पंजी का काम क्या है, जब हमारा बीज जो है जमीन पर डलता है तो पंजी दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी मिट्टी को उसके ऊपर डाल देती है जिससे कि बीज हमारा अच्छे से ढक जाता है और अंकुरण आसानी से हो जाता है। पर इस विधि में क्या होता है, जैसे कि कभी बरसात बहुत तेज हो गई तो जो थोड़ी सी जो मेड़ बन रही है, जो मिट्टी डल रही है, वो पूरी एकदम से सपाट हो जाती है और कई बार हमारे फसलों को अंकुरण में बहुत ज्यादा समस्या आती है, बीज अंकुरित नहीं हो पाता है, जहाँ पानी भर जाए वहाँ पर फसल हमारी सड़ जाती है। तो इसके निदान के लिए हमारे जो वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि दो विधियाँ जो खासकर बहुत प्रचलित है, एक है ब्रॉड बेड फरो पद्धति, एक है रेज्ड बेड। ये दो विधियों से अगर आप बुआई करेंगे किसान भाई तो निश्चित आपके माने कि आपके जो अंकुरण क्षमता अंकुरण जो है वो अच्छे से होगा। साथ ही साथ जैसे कई किसान भाई ये कहते हैं साहब हमारे खेत भर गए उनमें सड़ जाती है, तो जो भरे हुए खेत जहाँ पानी रुकता है तो वहाँ पर भी आपका फसल सुरक्षित रहेगी। क्यों सुरक्षित रहेगी इसके पीछे मैं कारण बताना चाहूँगा कि जो हम मेड़ पे उस पर मतलब जैसे रेज बेड पद्धति की बात करें तो मेड़ रहती है, एक मेड़ बन जाती है, मेड़ के ऊपर हम दो लाइन निकालते हैं जैसे कि देसी बात में चांस बोलते हैं, तो एक मेड़ के ऊपर दो चांस निकलती हैं, उस चांस के दोनों के बीच की दूरी हम लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर के आसपास रखते हैं। इसी के साथ में एक बगल में एक नाली बनती है जैसे कि फरो बोलते हैं, रेज बेड फरो सिस्टम में एक नाली बनती है, इस नाली की जो गहराई है लगभग आप मान के चलिए 4 इंच से लेके लगभग 5 इंच के 6 इंच के आसपास तक रहती है। अलग अलग मशीन के हिसाब से अलग अलग बदल जाती है लेकिन मिनिमम 4 इंच तो रहती है, जिसके कारण क्या होता है जब बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है जो जिनमें हमारे खेत भर जाते हैं तो उसमें आसानी से नाली से पानी निकल के चला जाता है, हमारी फसल सुरक्षित रह जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है इसी पद्धति में जैसे कभी किसान भाई कहते हैं कि बरसात की खींच पड़ गई यानी कि सूखा आ गया, थोड़ा मतलब ड्राई स्पेल आ गया, दूसरी बात करें पानी के 8-10 दिन के लिए हो गया, तो ये जो नाली बनती जिसे हम फरो बोलते हैं ये पानी क्या इसको नमी को संरक्षित करने का भी काम करती है। तो ये जो हमारी और एक बार जो हम इस मशीन जो रहती है हमारी इसमें एक बार में 4 लाइन निकलती हैं और 3 हमारी नालियां बन जाती हैं, तो 4 लाइन और 3 नाली बनते हैं, ये हमारी होती है रेज्ड बेड फरो पद्धति। अभी वैज्ञानिकों ने एक नई मशीन और डेवलप किया जिसे बोलते हैं ब्रॉड बेड फरो पद्धति। ब्रॉड बेड फरो पद्धति में लगभग 4 से 5 लाइन एक बेड के ऊपर निकलती है और साथ में 2 नालियां बनती हैं आजू बाजू में, तो इनके माध्यम से पानी निकल के बाहर चला जाता है और नमी को संरक्षित करके रखती है। दूसरा ये आपने कई बार सुना होगा।

0: लोग ये कहते हैं कि मेड़ पे हमारी फसल सुरक्षित रहती है, अंदर फसल खराब हो जाती है। तो जो हम इसमें जो रेज बेड पद्धति और ब्रॉड बेड पद्धति जो बना रहे हैं, ये जो बॉर्डर इफेक्ट है वो हमें हर लाइन के आसपास मिल जाता है, जिससे हमारी फसल की खराब कम होती है। दूसरा एक और चीज़ बताना चाहूंगा, जो हमारी रेज बेड पद्धति है इसमें क्या रहता है, बेड थोड़ी ऊंची बनती है। जब बेड ऊंची बनती है तो एक हम बात करते हैं कि फसल में एक एरेशन होना चाहिए, सॉइल एरेशन। सॉइल एरेशन का मतलब होता है जमीन जो रहती है हमारे, उसमें जो जड़ जाती है, जड़ों को हवा सुचारू रूप से मिलना चाहिए। तो रेज बेड पद्धति में क्या, जड़ों में हवा भी सुचारू रूप से मिलती है, जिससे कि जो सोयाबीन फसल में मुख्य चीज रहती है इसकी गठान है, जड़ों में गठाने बनती है। वो गठानों को आप देखेंगे तो गठानों में राइजोबियम बनता है, जो गठान जिसमें अच्छी गठान है उस पर राइजोबियम, ये क्या करते हैं वातावरण में जो नाइट्रोजन है उसको लेके पौधों को देती है। तो जिसमें गर्ड पद्धति में अच्छे से लगाएंगे तो उसमें हमारा जड़ों में एरेशन अच्छे से होगा। दूसरा, ये जो नाली हमारे हम बनाते हैं, ये नाली हमारे चलने के लिए भी कई किसान भाई इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कई हमें दवाई छिड़कना है या खाद डालना है, तो पाथ भी जो बोलते हैं उसके रूप में भी ये काम कर सकती है। तो अगर ये रेज बेड पद्धति और आप ब्रॉड बेड फरो पद्धति, इन दोनों से लगाएंगे, इन दोनों पद्धतियों में हमारे कीड़े बीमारी कम आएंगे, हमारी फसल सुरक्षित रहेगी, एरेशन अच्छे से होगा, साथ ही साथ जल संरक्षण भी होगा। इन सारे कंबाइंड फैक्टर को देखेंगे तो लगभग हमारी फसल में 15 से 25% तक की सोयाबीन की उपज में वृद्धि पाई जाती है इसमें।
1: डॉक्टर साहब, अब आप हमारे किसान भाइयों को ये बतलाएं कि ये जो रेज्ड बेड जिसका आपने जिक्र किया, दोनों ब्रॉड
0: जी,
1: बैंड का, तो ये जो है इसका क्या महत्व है?
0: इसकी
1: जैसे ज्यादा वर्षा हो गई या
0: हाँ,
1: कम वर्षा हो गई, इन स्थितियों में ये किस प्रकार काम
0: ये
1: करता
0: देखिए मैंने बताया ना आपको, ज्यादा बरसात अगर हो जाती है तो जो नाली बनती है, नाली जो लगभग 30 सेंटीमीटर चौड़ी नाली
1: है?
0: बनती
1: जी
0: है, इसमें 30 से 40 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बनती है और जिसकी गहराई लगभग 4 से 6 इंच के आसपास रहती है, तो आसानी से पानी निकल के इसमें से बाहर चला जाएगा। तो हमारी ज्यादा वर्षा की स्थिति में आप देखें हमारी फसल बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। इसी तरह आपने बताया कम वर्षा की स्थिति, कम वर्षा की स्थिति जब नालियां बनी होती है, नालियों में पानी रुकता है, और पानी रुकेगा तो पानी जमीन में जाएगा और नमी को हमारे संरक्षित करेगा। तो ये दोनों ही मतलब कम वर्षा की स्थिति और ज्यादा वर्षा की स्थिति, दोनों ही स्थितियों में हमारा उत्पादन में बिल्कुल विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमें निश्चित ही एक अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा।
1: सोयाबीन बुआई की ये जो वैज्ञानिक विधि है, इसको अधिक से अधिक किसान अपना सके, इसके लिए आप कृषि विज्ञान
0: हाँ,
1: केंद्र की ओर से क्या सार्थक प्रयास
0: इसमें
1: कर
0: मैं
1: रहे
0: बताना
1: हैं
0: चाहूंगा,
1: और प्रशिक्षण की क्या
0: कृषि
1: व्यवस्था है?
0: विज्ञान केंद्र जिस हर जिले में हमारे में कृषि विज्ञान केंद्र है, जिसमें अपन मालवा निवाड़ की बात करें तो राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत बहुत सारे कृषि विज्ञान केंद्र कार्य कर रहे हैं और हर जगह हमारे किसान भाइयों को इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है, प्रदर्शन भी खेतों पर लगाए जा रहे हैं किसानों के पे। साथ ही साथ बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश शासन की तरफ से कस्टम हायरिंग सेंटर भी कई जगह हमारे काम कर रहे हैं, और कस्टम हायरिंग सेंटर जो है हमारे हर जगह, हर जब एक मशीन वहां दी गई है कस्टम हायरिंग सेंटर पे, कस्टम हायरिंग सेंटर पे मशीन की सुविधा और भी है, अच्छी मशीनें भी आई हैं, जिसमें कि आप ब्रॉड बेड पद्धति में अगर कई किसान भाई चाहें तो सोयाबीन के साथ साथ दूसरी फसल भी उसमें लगा सकते हैं, यानी इंटरक्रॉपिंग भी उसमें
1: जी
0: मशीन में व्यवस्था मतलब उसमें मैनेजमेंट है, उस तरह से है कि इंटरक्रॉपिंग भी आप दूसरी फसल भी आसानी, जैसे आप कोई कई किसान भाई ऐसे रहते हैं जो हमारे सोयाबीन के साथ आप देखेंगे अरहर लगाते हैं, तो वो इंटरक्रॉपिंग भी आसानी से कर सकते हैं उसमें। तो ये हमारे कस्टम हायरिंग सेंटर पे हर कृषि विज्ञान केंद्र पे इसका प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है, किसान भाई केवीके में आके प्रशिक्षण भी ले सकते हैं इसके बारे में।
1: जी, और लिए भी हैं?
0: कई किसान भाई लगभग मैं आपको बताऊं, कृषि विज्ञान केंद्र देवास में मैं 2014 से इस पे काम कर रहा हूँ
1: जी
0: और मैंने कई किसान भाइयों के यहाँ इस पे हमने रेज बेड और आपका ब्रॉड बेड पर प्रदर्शन लगाए हुए हैं, और अभी CIA भोपाल से भी एक नई मशीन आई थी इस बार, अभी उसके भी प्रदर्शन कई गांव में लगा रहे हैं।
1: बोनी की ये जो पद्धति है, इससे करीब करीब सोयाबीन उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
0: लगभग आप मान के चलिए इसमें जो हमारे प्रदर्शन में हमने देखा 30% तक हमने उपज में वृद्धि देखी है इसमें, और सामान्यतः 15 से 30% तो इजीली आई जाती है इसमें।
1: अंत में चलते चलते हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि सोयाबीन की जो बुआई की जो विधियां जो आपने जिक्र किया, और क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि किसान कई किसान भाई ये उनके बीज दर बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं,
1: जी
0: तो ज्यादा बीज से ज्यादा उत्पादन नहीं होगा, सही विधि से बीज लगाएंगे तो ज्यादा उत्पादन होगा। कई किसान भाई ऐसे हैं जो हमारे 1 हेक्टेयर में लगभग 1.5 क्विंटल तक बीज का
1: बीज के
0: उपयोग,
1: बीच की दूरी और कतारों के बीच की
0: कतार के
1: दूरी,
0: बीच दूरी
1: इसको ध्यान में रखना
0: बिल्कुल
1: है।
0: ध्यान रखना चाहिए, लगभग 30 से 40 सेंट 40 सेंटीमीटर से नीचे तो कतार से कतार की दूरी रहनी नहीं चाहिए, इससे ज्यादा हो तो अच्छी बात है, फैलने वाली जातियों के लिए और ज्यादा है, कम फैलने वाली है तो लगभग 40 सेंटीमीटर रखना चाहिए।
1: और रेस्ट बेड अपनाए तो
0: रेस्ट बेड अपनाएंगे तो निश्चित ही आपका समझ लीजिए एक तरह का आपका बीमा हो गया, आपका उत्पादन निश्चित ही आपको अच्छे से प्राप्त होगा, चाहे

भार्गव कृषि विज्ञान केंद्र देवास से था और इनसे बात चर्चा कर रहा था राजेश जी। आने देखो इतनी अच्छी वार्ता सुनने का बाद एक लोकगीत सुनो तो और बने हैं मीठा मीठा लोकगीत अपना जीवन में आनंद भरे अने आनंद के साथ करियो हो कोई भी काम रहे ऊक तो सफल होवे जोवे तो क्यों नहीं अपन भी अपना कार्यक्रम के सफल बनावा और सुना यो लोकगीत जी गावे भाई प्रेम कुमार सेन ने।

0: हवा को चले रोज सन्नाटो,
1: हवा को चले रोज सन्नाटो,
0: अब तुम्हारा झाड़ मत काटो।

0: भाई बहनों, अपन ने मीठा सा लोकगीत को आनंद लियो। आनंद कहने की हमारा कार्यक्रम भी एक परोसी हुई थाली की तरह है, जिसमें पोषण से भरी हुई आज की बात और वार्ता भेंट वार्ता रहे, आने मीठा मीठा लोकगीत रहे, आने मीठा लोकगीत के साथे कविता पाठ को चटकारो मिली जाए तो स्वाद भी दुगनो आई जाएगा ने भोजन को आनंद भी आएगा। तो क्यों नहीं एक कविता पाठ को चटकारो भी लेवा, जिमें कवि है सज्जाद अहमद कुरैशी, सुना उनको कविता पाठ।
1: मेरी पहली कविता का शीर्षक है विकास, जनहित की योजनाओं पर मेरा बयान है, पथ पर विकास की मेरा भारत महान है। हर तरफ बह रही है ये गंगा विकास की, भारत महान है मेरा भारत महान है। पढ़ने लगे हर आंख, लिखने लगे हर हाथ, आदर्श नागरिक सभी भारत के बने हम। शिक्षा का और एक प्रसार करें हम, हर शहर में हर गांव में प्रसार करें हम। शिक्षा से समझ जाए सभी देश के बच्चे, सरकार की कोशिशों को नमस्कार करें हम। घर जैसे ही सफाई अब अस्पताल में, हर रोग की दवाई है अब अस्पताल में। शहरों में अस्पताल है, गांव में अस्पताल, होती है इनमें खूब मरीजों की देखभाल। निःशुल्क ही मशीनों से होती है अब तो जांच, मुफ्त की दवाई है मुफ्त का इलाज।

सब तंदुरुस्त रहें, उम्र भी बढ़े, बूढ़े जो हम घाटी चढ़े दौड़ कर चलें। बालक बालिकाओं का पूरा विकास है, यहाँ पौष्टिक आहार है, तन पर लिबास है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए होती है देखभाल, पढ़ने को पाठशाला भी आसपास है, मिलती है मुफ्त किताबें पढ़ने के वास्ते, मिलते हैं यूनिफॉर्म पहनने के वास्ते, शिक्षा हर एक किस्म की दी जाती है इन्हें, आदर्श नागरिक इन्हें बनने के वास्ते, समूह से महिलाओं का होता है अब विकास, उत्पीड़न से दूर महिलाएं आम खास, हस्तकला के वास्ते मिलता है लोन भी, रहने को बेवा को मिलता है अब निवास, असहाय बूढ़े लोगों को मिलती है पेंशन, इनको नहीं आर्थिक अब कुछ भी टेंशन, मजदूर को मजदूरी जो मिलती है बराबर, गांव में रोजगार से छूटता नहीं है घर, सब हाथ को अब काम है, नारी हो या नर, हालात जी राम जी से होंगे खूब बेहतर, गांव जो है तो बढ़ते हैं पैद भी, शहर में है सफाई विकास के नाम पर, दिखती है खूबसूरती हर एक मुकाम पर, शहरों में रोशनी है सजावट भी खूब है, मैदान खेल के यहाँ बागो बहार है, पौधों की छायादार यह लंबी कतार है, रखा है अल्पसंख्यकों का बहुत ख्याल, बेहतर है उनकी जिंदगी बेहतर है उनका हाल, अल्पसंख्यकों के लिए रोजगार भी मिलते हैं, बैंक से इन्हें पैसे उधार भी मिलते हैं, अल्पसंख्यकों का अधिकार भी, सभी के रहने सहन में कोई नहीं है कमी, पूरे हुए सपने भी निर्मल ग्राम के, सारे ही शुद्ध हो गए प्रेजल ग्राम के, खेतों में जो सिंचाई के साधन थे बढ़ गए, जैसे जवान हो गए जंगल ग्राम के। मेरी अगली कविता का शीर्षक है स्क्रीन वाला गांव। एक गांव था जहां शाम को चूल्हे की लकड़ी चटकती थी और रेडियो पर खबरें बजती थी, आज उसी गांव में शाम को मोबाइल की स्क्रीन चटकती है और खबरें नहीं रीले बजती हैं, बूरा बरगद अब भी है पर उसके नीचे चौपाल नहीं चार्जिंग पॉइंट है, बच्चे अब गिल्ली डंडा भूल गए, अंगूठा चलाना सीख गए धरती पर लकीरें खींचने से पहले, माँ अब भी बोलती है पर साथ में स्टेशन भी देखती है कि पड़ोसन ने क्या पकाया आज, मैं पूछता हूँ इस गांव से तू आगे बढ़ा या कहीं छूट गया, तेरी मिट्टी की सौंधी गंध अब वाईफाई के सिग्नल में क्यों घुल मिल गई है, सुनो विकास जरूरी है पर जड़े मत काटो, क्योंकि स्किन टूट सकती है पर बरगद का साया पीढ़ियों को चाहिए। अगली कविता का शीर्षक है परीक्षा की घड़ी। घड़ी की टिक टिक अब दिल की धड़कन तेज है, कल फिर परीक्षा है, सपनों की नंबरों की समाज की, बेटा पूछता है पापा असफल हो गया तो, पापा चुप हैं क्योंकि उनके पास भी सिर्फ सफलता के उदाहरण है संघर्ष के नहीं। नई शिक्षा नीति कहती है बच्चा रटेगा नहीं गढ़ेगा, पर बाजार कहता है गढ़ने का वक्त नहीं बेटा रैंक लाओ, मैं उस बच्चे से कहना चाहता हूं तू अंक नहीं अग्नि है, तुझे जलना है किसी मार्कशीट पर नहीं, इस देश के भविष्य में याद रखना कलम तलवार से ताकतवर होती है, पर तभी जब वो अपने मन से चलती हो किसी के डर से नहीं। अगली कविता का शीर्षक है तिरंगे की सिलवटें। मैंने तिरंगा देखा सरहद पर शान से लहराते, मैंने तिरंगा देखा नेता की कार पर सिकुड़ते, मैंने तिरंगा देखा शहीद के कफन में लिपटते, मैंने तिरंगा देखा व्हाट्सएप की डीपी में एक दिन चमकते। ये तीन रंग सिर्फ कपड़े पर नहीं हमारी नसों में होने चाहिए, केसरिया
त्याग का, सिर्फ नारों का नहीं सफेद शांति का, सिर्फ सन्नाटे का नहीं हरा समृद्धि का, सिर्फ डीपी का नहीं, अब जरूरत है कि हम चक्र को समझें जो चौबीसों घंटे चलता है, रुकता नहीं थकता नहीं, वैसे ही हमें चलना है नफरत के खिलाफ, भूख के खिलाफ और अपने ही आलस के खिलाफ। अगली कविता का शीर्षक है मैं कौन हूँ। मैं नारी हूँ पर सिर्फ एक शब्द नहीं, मैं एक पूरी सदी हूँ। मैं झांसी की रानी का वो घाव हूँ जो तलवार से नहीं संकल्प से भरा था। मैं सावित्री बाई का वो स्लेट हूँ जिस पर पहली बार एक बेटी ने अपना नाम लिखा था। मैं सरोजनी की वो कविता हूँ जो गुलामी की रात में आज़ादी का सूरज उगाती थी। मैं कल्पना चावड़ा का वो सपना हूँ जो धरती से टूट कर तारों में जा बचा। मुझे अबला मत कहो, मैंने ही तो इस देश को अपनी गोद में पाला है, मेरी ही हथेली ने उसे उठाया है। अगली कविता का शीर्षक है इतिहास की गलियों से। याद करो कुरुक्षेत्र, जब गंधारी ने पट्टी बांधी थी तो सिर्फ आंखों पर नहीं अन्याय पर बांधी थी। मौन भी एक युद्ध होता है और मैंने वह युद्ध लड़ा है। याद करो 1857, जब लक्ष्मीबाई ने कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। वह झांसी सिर्फ किला नहीं था, वह हर उस व्यक्ति का स्वाभिमान था जिसे दुनिया कमजोर समझती है। याद करो डांडी यात्रा, जब नमक उठाने वालों ने कस्तूरबा का मौन भी शामिल था। क्रांति सिर्फ नारे से नहीं होती, चुपचाप सूला फूंकती औरतें भी आज़ादी की आग जलाती हैं। अगली कविता का शीर्षक है खेत से अंतरिक्ष तक। आज मैं खेत में हूँ, धान रोपती, मिट्टी से बात करती, मेरे हाथ में दाती है पर नज़र आसमान पर है क्योंकि मेरी बेटी स्कूल जा रही है। आज मैं लैब में हूँ, मंगलयान की गणना करती, मैंने चूड़ियाँ पहनी हैं पर उनके खनकने की आवाज़ रॉकेट की गर्जना से कम नहीं है। मैं सीमा पर हूँ, वर्दी में राइफल ताने, जब मैं सैल्यूट करती हूँ तो तिरंगा और तन जाता है क्योंकि उसे पता है उसकी रखवाली में अब बेटियाँ भी खड़ी हैं। मैं पंचायत में हूँ, फैसले सुनाती, मैं स्टार्टअप में हूँ, दुनिया बदलती, मैं घर में हूँ, संचकार गढ़ती। मुझे मत बताओ कि मेरी जगह कहाँ है, जहाँ भारत करा है वही मेरी जगह है। अगली कविता का शीर्षक है मेरी परिभाषा। देश प्रेम क्या है, सिर्फ 15 अगस्त को डीपी बदलना नहीं, सिर्फ 26 जनवरी को देशभक्ति के गीत गाना नहीं। देश प्रेम है रात 2 बजे अस्पताल में ड्यूटी करती नर्स का जागना, क्योंकि उसे पता है उसके हाथ में किसी का भारत सो रहा है। देश प्रेम है स्कूल में टाट पट्टी पर बैठी उस शिक्षिका का पढ़ाना, जो जानती है कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा हर अक्षर किसी गरीब के घर का चूल्हा जलाएगा। देश प्रेम है अपने बेटे को कहना बेटा फौज में जाना, पर पहले इंसान बनकर जाना, गोली चलाना पर नफरत मत चलाना। देश प्रेम है सड़क पर कचरा ना फेंकना क्योंकि ये धरती मेरी माँ है, और माँ के आंगन में कौन गंदगी करता है। अगली कविता का शीर्षक है चुनौती। हाँ माना अभी रास्ते में अंधेरा है, कहीं दहेज की आग है, कहीं भ्रूण की सिसकी है, कहीं तेजाब का जख्म है, कहीं सवालों का पहरा है,

0: लिए क्यों निकली, इतनी रात को कहाँ थी? पर सुनो, अब बेटी पूछती है मैं क्यों ना निकलूं, ये सड़क भी मेरी है, ये रात भी मेरी है, ये देश भी मेरा है। मैं डरने वाली नहीं, क्योंकि मेरे पीछे सदियों का इतिहास खड़ा है और मेरे आगे मेरी बेटी का भविष्य। मैं चाहती हूं कि अगली जनगणना में जब बेटियों की संख्या गिनी जाए तो आंसू ना गिने जाएं, सपने गिने जाएं। मैं चाहती हूं कि जब तिरंगा सलाम करे तो आजाद झुकाओ उन औरतों के लिए हो जिन्होंने बिना वर्दी पहने इस देश को बचाया। अगली कविता का शीर्षक है शिखर की इबारत। एक शिखर है, मिट्टी का, मेहनत का, उम्मीद का, उस पर एक बच्ची बैठी है। कंधे पर लाल दुपट्टा नहीं, पूरे देश का जिम्मा है। हाथ में कलम है, ये शाही नहीं भरती, सदी भरती है। सामने सूरज है, बेटी कहती है सुनो सूरज, तू आग का गोला है, मैं आकांक्षा का। तू रोज तपता है, मैं रोज रसती हूं। देखें पहले कौन पूरा आसमान रोशन करता है। नीचे एक किताब है, रटने के लिए नहीं, रास्ता बनाने के लिए। दिया है आर्टी के लिए नहीं, क्रांति के लिए। पीछे खेत है, कारखाना है, कोडिंग क्लास है। ये तस्वीर नहीं, ये 2047 के भारत का ब्लू प्रिंट है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है अक्षर से आविष्कार तक। बेटी है, पराया धन है, पढ़ लिख कर क्या करेगी? आज बेटी जवाब दे रही है, पराया धन नहीं, पूरे देश का फंड हूं, पढ़ लिख कर चांद पर तिरंगा गाड़ूंगी। सावित्री बाई फूले, जब आप पर कीचड़ फेंका गया, आपने छाटा नहीं खोला, स्कूल खोला। उसी दिन सरस्वती ने वीणा छोड़कर लैपटॉप उतार लिया। आज देखो रिया 12वीं में है और ड्रोन से खेत नापती है। पिता से कहती है बाबा यूरिया कम डालो, मिट्टी का डेटा ये कह रहा है।
1: भाई बहनों, अभी अपन ने कविता पाठ सुनियो, जिमें कविता कवि का था सज्जाद अहमद कुरैशी। अने बड़ी अच्छी अच्छी कविता इनने अपने सुनाई, अने इनकी की प्यारी सी कविता का साथेज अब चलने की वक्त हुई रही है। तो भाई बहनों, काल फिर सुन जो तम हमारो कार्यक्रम खेती गृहस्थी। आज मनीषा शर्मा के दोविदा, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे न्यूज रील सुर्खियों में। इसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किया गया। सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी से व्यापार, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा के नए अवसरों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोधकी।
2: अम्बेसडर तायल, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जापान की प्रधानमंत्री

0: सनाए तकाईची 16th इंडिया जापान एनुअल समिट के लिए 3 दिन के भारत के दौरे पर हैं। वर्तमान में लगातार अनिश्चित और बदलते वैश्विक माहौल में आप दोनों देशों के बीच के आपसी रिश्ते को कितना अहम मानते हैं?
1: पिछले 2-3 साल से जो विश्व देख रहा है कि विश्व में जो भी सामरिक समीकरण थे वो बदल रहे हैं, दो देशों के बीच में तनाव बढ़ रहा है, और इस सब बैकग्राउंड में भारत और जापान के जो संबंध हैं वो बहुत स्थिर हैं, बहुत स्टेबल हैं, प्रेडिक्टेबल हैं, और एक बहुत ही सशक्त नींव के ऊपर ये रिश्ते खड़े हुए हैं। जो जापान की प्रधानमंत्री सने ताकाशी जी भारत में हैं, और ये 16वीं भारत जापान की एनुअल समिट है, जो ये दिखाती है, ये बतलाती है कि 2001 से समझ लीजिए या उससे पहले भी, आज तक जापान में भी प्रधानमंत्री बदले हैं। ये शायद हमारे प्रधानमंत्री के 4th या 5वें जापानी प्रधानमंत्री से बातचीत है, भारत में भी प्रधानमंत्री बदले, पर भारत और जापान की जो सोच है, जो मित्रता है, वो प्रगाढ़ है और उसकी नींव बहुत मजबूत है, और इस रीजन का, इंडो पैसिफिक क्षेत्र का और विश्व में शांति और सद्भावना का एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग केंद्र बिंदु है।
0: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री तकाईची की मौजूदगी में कई MOUs पर हस्ताक्षर हुए। आपके हिसाब से भारत और जापान दोनों के नजरिए से सबसे अहम समझौते कौन से हैं?
1: जिस कगार पर इस समय विश्व खड़ा हुआ है और जिस तरह आगे बढ़ रहा है, मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी और उसके जो भी क्रिटिकल मिनरल्स हो या इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो, वो आगे चलने में बहुत ही अहम मुद्दे भारत और जापान के सामने रहेंगे
0: जी।
1: तो जो 3 MOUs तो बहुत कई साइन हुए हैं, और उसमें जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटी एक बहुत अहम है, जॉइंट स्टेटमेंट ऑन कोऑपरेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि जिस तरह से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही अहम मुद्दे के रूप में उभर के सामने आया है और हर देश उससे जूझने का प्रयत्न कर रहा है, एनर्जी रेजिलियंस, ये जो पिछले साल देखा और जो फरवरी के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुई
0: जी।
1: और उससे पूरे एशिया पर बहुत प्रभाव पड़ा, और उसमें भी भारत और जापान आगे मिलजुल कर सहयोग के साथ काम करेंगे।
0: आज की जो ये जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट थी, इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और जापान आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक हैं, और एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझी प्राथमिकता है। तो पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: प्राइम मिनिस्टर ताकाईची की यात्रा से हम अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: अम्बेसडर ताल, जैसा भी आप बता रहे थे कि टेक्नोलॉजी इस समिट का एक तरह से कह सकते हैं कि सेंटर पीस बनकर उभरा है, तो और भारत और जापान ने आज AI की फील्ड में एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारत की सॉफ्टवेयर ताकत और जापान की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज AI और एडवांस टेक्नोलॉजी में एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं?
1: देखिए, अगर आप पीछे देखें तो जापान ने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में एक बहुत ही अच्छा योगदान किया है, चाहे वो हम मेट्रो देखें
0: जी,
1: सुजुकी कार इन्वेस्टमेंट देखें, पूरा जो बॉम्बे अहमदाबाद ट्रेन बन रही है वो देखें, पर अब जो नया भारत बन रहा है और विश्व में जिस तरह से प्रगति हो रही है, उसमें टेक्नोलॉजी का स्थान बहुत ऊपर आ रहा है, और जो देश टेक्नोलॉजी में सहयोग करेंगे वो विश्व में आगे बढ़ेंगे। यहाँ भारत और जापान में कॉम्प्लीमेंटेरिटीज हैं। जापान प्रिसीजन इक्विपमेंट में, हार्डवेयर में दुनिया में बहुत आगे, और भारत सॉफ्टवेयर में, टैलेंट में, स्किल्स में बहुत आगे है, और भारत और जापान की ये साझेदारी दोनों देशों के लिए एक बहुत ही अच्छी साझेदारी होगी।
0: अम्बेसडर तायल, जैसे कि प्रधानमंत्री को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि एक रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक जापान और इंडिया की एक साझी प्राथमिकता है। इसी तरह नई दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने भी एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क की दिशा में कोशिश करने की बात कही थी। आप दोनों प्रधानमंत्रियों के इन बयानों को कैसे देखते हैं?
1: इस समय जो विश्व में स्थिति है, कोविड से जो शुरू हुआ और उसके बाद युद्ध रशिया यूक्रेन का, उसके बाद ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स का, उससे विश्व की खासतौर से एशिया की जो भी इकोनॉमीज हैं उन पर बहुत ही खराब प्रभाव पड़ा है। और एक आवश्यक है कि कोई भी देश जो विश्व में इस समय व्यापार हो रहा है और जो फ्री एंड ओपन इंडियन ओशन की बात करते हैं, पैसिफिक की बात करते हैं, सी लाइंस की बात करते हैं, उस पर कोई देश उसमें खलल न डाले, ये बहुत ही आवश्यक है। और हर देश का आर्थिक प्रगति इस प्रिंसिपल के ऊपर निर्भर है। पर जो 28 फरवरी के बाद युद्ध हुआ पश्चिम एशिया में और अमेरिका और ईरान के बीच में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिस तरह से बंद की गई, पूरा वहां से जो तेल का निर्यात था उस पे आंच आई, इस सब के संदर्भ में ये बहुत आवश्यक है कि हर देश
0: जी
1: एक मूल्य को समझे, एक वैल्यू को, कि फ्री और ओपन सी लाइंस, कि कुछ भी लड़ाई हो, कुछ भी मतभेद हो, पर विश्व में जो व्यापार है, जो शिप्स का आना जाना है, वो जहां से भी जाते हैं उन पर कोई भी देश खलल न डाले। मैं समझता हूं कि भारत और जापान और सभी देश जो हम एशिया के हैं और विश्व के हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम मानते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स का। और इसमें भारत और जापान के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, क्योंकि दोनों देश गल्फ कंट्रीज से काफी तेल भी आयात करते हैं, गैस भी आयात करते हैं, और इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा भारत और जापान के लिए है।
0: इससे पहले कि मैं आपसे अपना अगला सवाल करूं, आइए पहले सुनते हैं कि आज की ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट में जापान की प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया, चलिए उसको सुनते हैं।
3: You called me a beautiful younger sister, Prime Minister Modi. The big meeting, we confirmed that we are on the same page and developed this relationship as brother and sister. The following points at the center of our cooperation. First, to deepen the strategic cooperation between Japan and India. Our two countries share the vision on the profile of international order we should establish under the current international situation. I recently announced the updated FOIP, Free and Open Indo-Pacific, which focuses on self-reliance and resilience to realize FOIP. On the other hand, Prime Minister Modi positions the ocean as a shared space that supports regional stability and growth and is promoting the Mahasagar, the Great Ocean Initiative, for countries across the Indian Ocean.
0: भारत और जापान ने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक जॉइंट रोड मैप भी तैयार किया है, जिसके जरिए उनका मकसद सेमीकंडक्टर और एडवांस मटेरियल सहित कई स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करना है। ये देखते हुए कि भारत के पास कई क्रिटिकल मिनरल्स का बड़ा रिजर्व है और जापान के पास मेटलर्जी और बैटरी टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड्स में वर्ल्ड लीडिंग एक्सपर्टीज है, क्या आप कहेंगे कि दोनों देशों के लिए जो इकोनॉमिक हमने सिक्योरिटी रोडमैप तैयार किया है, दोनों ही देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन है, खासकर दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए?
1: जी हाँ, बिल्कुल। जापान का ये अनुभव रहा है पिछले 7-8 साल में कि कई बार जब उनके चाइना से कुछ मतभेद हुआ तो चाइना ने क्रिटिकल मिनरल्स का निर्यात जापान के लिए रोक दिया। जापान ने पहले ही उसमें प्रयास किया है और ऑस्ट्रेलिया से वो क्रिटिकल मिनरल्स मंगा रहे हैं और मलेशिया में उनको रिफाइन कर रहे हैं। और जिस तरह से दुनिया ने देखा पिछले 6 महीने में, 1 साल में, कि एक ही देश चाइना का बहुत ही डोमिनेंस है, बहुत मोनोपोली है क्रिटिकल मिनरल्स पर भी, मैग्नेट्स वगैरह पर, उसलिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो डेमोक्रेसीज हैं दुनिया में और भारत जापान मिलकर काम करें। और इस तरह क्रिटिकल मिनरल्स भारत में हैं बहुत, पर उनको रिफाइन करना ये एक मेटलर्जी का विषय है और उसमें जापान को एक्सपर्टीज है, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही मुख्य समझौता भारत और जापान के बीच में, दोनों प्रधानमंत्री के बीच में हुआ है। और कैसे दुनिया में जो सप्लाई चेन्स हैं, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल्स की हों, फार्मास्यूटिकल्स की हों, उनको ऐसे बढ़ाया जाए कि किसी एक देश का उस पर बहुत अधिक मोनोपोली ना रहे। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय दोनों प्रधानमंत्रियों ने आज लिया।
0: अम्बेसडर तायल, जैसे भी आप कह रहे थे कि एनर्जी सिक्योरिटी की हम बात कर रहे थे, तो पिछले कुछ महीनों की जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो हुई हैं, उन्होंने एनर्जी सिक्योरिटी की अहमियत को एक बार फिर से उजागर किया है। इस संदर्भ में आप आज नई दिल्ली और टोक्यो के बीच साइन किए गए इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं?
1: देखिए, बायोगैस और जितना भी, चाहे वो तेल हो और लिक्विफाइड नेचुरल गैस हो, उसको किस तरह एक उनका स्टॉक किया जाए, उनको किस तरह, जिससे कि अगर कोई सप्लाई चेन में कहीं कोई डिसरप्शन हो तो एकदम उसका प्रभाव खरीदारों पर ना पड़े जो उसको इस्तेमाल करते हैं, उन पर ना पड़े। तो इसमें दोनों देशों की कंपनियों को साथ काम करना पड़ेगा, और बायोगैस और लिक्विड लिक्विफाइड नेचुरल गैस
0: जी,
1: इसमें मैं समझता हूँ कि दोनों देशों ने साथ काम करने के लिए अच्छे निर्णय आज लिए हैं।
0: जापान भारत के सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में से एक है। आज की जो दोनों मुलाकात हुई दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच, उसके बाद जापान द्वारा भारत में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की एक प्लेज ली गई। इसके साथ ही दोनों ने अगले एक दशक में जापान से भारत में $10 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट और भारत में काम करने वाली जापानीज कंपनीज की संख्या को दुगना करने का एक टारगेट रखा है। ये देखते हुए कि भारत और जापान एशिया की सबसे बड़ी दो अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये जो लक्ष्य सेट किया गया है, इससे न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था बल्कि आपको क्या लगता है कि इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा फायदा होगा?
1: जी, बहुत फायदा होगा। ये पिछले वर्ष एक जॉइंट विजन स्टेटमेंट साइन हुआ था भारत और जापान का, जब हमारे प्रधानमंत्री 15वीं समिट के लिए जापान गए थे, और उसमें ये निर्णय लिया गया था कि 10 ट्रिलियन येन जापान भारत में निवेश करेगा अगले 10 वर्षों में। और आज करीब 120 MOU साइन हुए हैं, जिसमें उनका अगर पूरी उसका देखा जाए तो शायद $12 बिलियन के करीब वो निवेश जापानीज कंपनियां भारत में करेंगी। एक जापान इंडिया इकोनॉमिक फोरम मीटिंग भी है, जिसमें 150 जापानीज कंपनी आके यहाँ पर उसमें भागीदारी करेंगी। तो जिस तरह भारत और जापान को एशिया में आर्थिक प्रगति का एंजिन होना चाहिए
0: जी,
1: एक स्रोत होना चाहिए, और अगर बड़ी इकोनॉमी जापान, इंडो पैसिफिक में चाइना के बाद जापान आता है या फिर भारत है, तो दोनों अगर मिलकर काम करेंगे और दोनों की आर्थिक प्रगति होगी तो पूरे रीजन में, क्योंकि देखिए निर्यात आयात, आजकल कोई भी इकोनॉमी, कोई भी अर्थव्यवस्था केवल अकेले काम नहीं करती
0: है। बिल्कुल,
1: वो सब देशों से, कहीं से आयात होता है, कहीं से निर्यात होता है, पूरा ग्लोबलाइजेशन है इकोनॉमीज का, और उसमें भारत और जापान की आर्थिक प्रगति अगर तेजी से होगी तो पूरे रीजन को उससे बहुत आर्थिक लाभ होगा।
0: अम्बेसडर तायल, आप आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी विचार हमारे साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
4: अभी आप सुन रहे थे भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी से व्यापार, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा के नए अवसरों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
5: सुर्खियों में
6: अभी आपने ये कार्यक्रम सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।
7: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

दोस्तों, मोहब्बत एक ऐसा एहसास जो शब्दों में बयां नहीं होता, बल्कि दिल की धड़कनों में महसूस किया जाता है। कभी मुस्कुराहट बनकर होठों पर आ जाती है, तो कभी याद बनकर आंखों में उतर जाती है। मोहब्बत कोई मौसम नहीं जो गुजर जाए, मोहब्बत कोई लम्हा नहीं जो ठहर जाए। ये तो रूह का रिश्ता है जनाब, जो उम्र की सरहदों से भी आगे निकल जाए। कभी मुस्कान बनकर दिल में उतरती है, कभी आंसू बनकर पलकों पर बिखरती है, मगर जो सच्ची हो वो हर हाल में साथ निभाती है।

जब पहली बार किसी की नजर दिल को छू जाए तो लगता है जैसे दुनिया बदल सी जाए। हवाएं भी गीत गुनगुनाने लगती हैं, राहें भी फूल बिछाने लगती हैं। एक नाम हर धड़कन में बस जाता है और वही नाम जिंदगी का मतलब बन जाता है। यही तो मोहब्बत की पहली दस्तक होती है।

लेकिन मोहब्बत का सफर आसान कहाँ होता है। हर मुस्कुराहट के पीछे एक इम्तिहान होता है। कभी इंतजार की रातें लंबी लगती हैं, कभी मुलाकात के पल छोटे लगते हैं, लेकिन जो दिल सच्चे हो वे हर दूरी को मिटा देते हैं और हर मुश्किल को प्यार में बदल देते हैं।

तेरी यादों का दिया आज भी जलता है, दिल तेरे नाम से आज भी बहलता है। वक्त ने लाख कोशिश की हमें बदलने की, मगर प्यार का रंग कहाँ बदलता है। कुछ रिश्ते किताबों में नहीं मिलते, वे सीधे दिल के पन्नों पर

मोहब्बत की खुशबू फूलों से नहीं आती, ये तो दिल की गहराइयों से निकलती है। जिसे एक बार महसूस हो जाए वो जिंदगी भर साथ चलती है। ना कोई भाषा, ना कोई सीमा, बस एहसासों की एक दुनिया होती है, जहां दो दिलों की अपनी एक कहानी होती है।

मोहब्बत का मतलब सिर्फ मिलना नहीं होता, कभी कभी दूर रहकर भी प्यार निभाना होता है। किसी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेना, यही इश्क का सबसे खूबसूरत रूप होता है। जहां शिकायत कम और दुआएं ज्यादा होती हैं, जहां खुद से पहले दूसरे का ख्याल आता है, वही सच्ची मोहब्बत होती है।

इस गीत के साथ ही दिल ने फिर याद किया समाप्त होता है। अब दीजिए इजाजत अपनी रेडियो दोस्त रूपाली चौहान को। नमस्कार। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देशभर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता

0: के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची, और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
3: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
4: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
3: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको।

0: अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
4: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर सीसीटीवी निगरानी और RFID आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
3: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
5: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज को जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देशभर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth, holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announce energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Centre launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of western and central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership, addressing the India-Japan

श्रोताओं, चित्रगीत में अगले गीत से पहले ये सूचना सुनिए। साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे और जन जागरूकता के लिए विविध भारती इंदौर FM 101.6 MHz आपके लिए लेकर आ रहा है इस शुक्रवार दिनांक 3 जुलाई 2026 सुबह 11:32 से 12 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहें सावधान। ये कार्यक्रम शुक्रवार यानी कल दिनांक 3 जुलाई 2026 को सुबह 11:32 से 12 बजे तक FM 101.6 MHz विविध भारती चैनल पर प्रसारित हो रहा है। इस सजीव फोन इन कार्यक्रम के विशेषज्ञ होंगे DSP नरेंद्र सिंह रघुवंशी, स्टेट साइबर सेल इंदौर। श्रोता साइबर अपराधों से जुड़ी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान सीधे प्राप्त कर सकेंगे। हमारे फ़ोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। फ़ोन नंबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं, 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। शुक्रवार यानी कल 3 जुलाई 2026 को सुबह 11:32 से 12 बजे तक विविध भारती चैनल पर। तो आप भी फोन करके साइबर क्राइम रोकने हेतु विशेष सावधानियां विशेषज्ञ DSP नरेंद्र सिंह रघुवंशी, स्टेट साइबर सेल इंदौर से जान सकते हैं। आप शुक्रवार यानी कल दिनांक 3 जुलाई 2026 को सुबह 11:32 से 12 बजे तक विविध भारती 101.6 MHz पर यह कार्यक्रम सुन सकते हैं। और इसके अलावा ये कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। और चित्रगीत में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में। इस

और अब चित्रगीत की अंतिम प्रस्तुति, मुकेश की आवाज़ में अनीता फिल्म से ये गीत, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

इस गीत के साथ ही चित्रगीत समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन।

मन भवन के सभी श्रोता स्वीकारें आपकी रेडियो दोस्त रूपाली चव्हाण का नमस्कार। श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम मन भवन में। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके ढेर सारे खतों को लेकर और आपकी पसंद के फरमाइशी गीतों को लेकर। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं कश्मीर की कली। इस फिल्म से एस एच बिहारी का लिखा ये गीत, जिसे आवाज़ें दी हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने, संगीत है ओपी नैयर का, और इसे सुनना चाहा है बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि वाघ, पंजाब राव निम्बाड़कर और संदीप पाटिल ने। चंदन नगर सातारा से सतीश वाघमारे, अतीश, स्वाति, वर्षा, श्रमण, श्रुमेण ने। वारणा शाहपुर से विजय चौहान, तेजस्विनी और माय चौहान ने। यवतमाल से जयराम

सिंगणकर, दिशांत कुमार, वंदना, अर्पिता और समस्त सिंगणकर परिवार ने। राजपुर से हमारे श्रोता हैं संतोष पाटिल, लाड़की, नेहा, संजू, वर्खा, भाग्यश्री, सानवी, पार्थ और समस्त पाटिल परिवार। नेपाल पैलेस सागर से इसी गीत की फरमाइश की है तिलक राणा, मीना, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। भोपाल से श्रवण सिंह गिन्नारे, रेखा, विनीता और शेर सिंह ने। खंडवा से योगेश गुजराती, महिमा, रेखा और अभय गुजराती ने। इसी गीत को पसंद किया है भीकन गांव से संतोष सातले, चंदन, सारिका, रोहित, शुभम, शैलेंद्र, कंचन और उनके पूरे परिवार ने। जालना से डॉक्टर नामदेव भूतेकर, अभिषेक, गणेश, कार्तिक, अश्विनी। औरंगाबाद से वैष्णवी जगदाले, वैभव, गौरव और उनके सभी साथी। तो आप सभी की फरमाइश पर कश्मीर की कली फिल्म से ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं फतेहगढ़ से विनोद पुरी, रंजू, अशोक, सुशील, बीके पुरी, कैलाश और आर एस पुरी, कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली।

मीना, आदित्य अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। समाजवाद इंदिरा नगर से सोनू गुंजाल, कनिका सोनू ने, पूजा और विनोद सोनू ने। अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया, अस्मा, सालिया, शोएब, राउफ भाई और शहीद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। नागपुर से शैलेश गवहाणकर, वैशाली, ध्वनि, परी, श्वेता, सुमित और उनके परिवार के सभी सदस्य। मक्सी से दयाराम जाटव, चैन सिंह आरोल, नानूराम कांसोटिया, नंदकिशोर और दीपक कांसोटिया। उमाली महाराष्ट्र से उद्धव धोरण, स्वरूपा, अनूप कुमार। खामगांव से विजय शेगोकार, रेणुका, ऋषिकेश और जयश्री। सुदामानगर इंदौर से अनिल भंडारे, उषा, समता, चित्रा और निशा। खरगोन से हमारे श्रोता हैं महेश मकासरे, गायत्री, प्रमोद, छाया, प्रांजलि, आशीष और उनके सभी साथी। राजापेठ अमरावती से दिलीप लकड़े, सुरेखा, डॉक्टर सारंग और शुभम। रतलाम से मुकेश कुमार वर्मा, माया, अंबाराम, यतिन, मोहनलाल और विनोद कुमार शर्मा। तो आप सभी की फरमाइश पर किशोर कुमार की आवाज़ में मजरूह सुल्तानपुरी की रचना, जिसकी धुन बनाई है SD बर्मन ने और फिल्म का नाम है चलती का नाम गाड़ी।

श्रोताओं, अगले गीत की फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं धर्मपुरी जिलाधार से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर, अयान, फैज़ान, सुमेरा, कशिश, साइमा, हसनैन और खुशी। राजस्थान से मोहम्मद अफ़ान खान और अयाम खान। खरसोद कलां ज़िला उज्जैन से असलम खां दुलावत, शबीना दुलावत, फिरदौस, फलक, अफसा और अयान। राजपुर से घीसु दिलवारे, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ और कुणाल। राजनगर मधुबनी से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा, रंका रानी, मौसम, संगीता, रुद्र, रिद्धि। लखनऊ से मुकेश गुप्ता, रानी, कुसुम, पलक और पंखुरी। कांति निकेतन से मंजीत, सोनाली, सूर्यांशी, कोमल, मेनका, माधवी, साध्वी, तन्मय और गुनगुन। संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, शीतल, राजदीप और राशि पाटिल। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश और सौरव शर्मा। सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतसा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर और महराज जहां। खंडवा से राजेश कुमार धनजे, राहुल, विशाल, शीला और गायत्री। मानपुर से महिमा वैद, नीतू, रानी और विजय। और गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। आप सभी सुनना चाहते हैं कालीघटा फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा ये गीत, जिसकी धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मयूर पंख फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले की। गीत को लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत है शंकर जयकिशन का। इसे सुनना चाहा है संस्कृति नगर इंदौर से बबलू केशरी, छाया, हर्ष, मिताश और सोमतीबाई ने। गांधी चौक बाल मेड़ से बबलेश पवार, डेनी और मास्टर मनीष ने। नीमच से गोविंद पाटीदार, ममता, पूजा, मधुसूदन, यशस्वी और हंसवी पाटीदार। मोरटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल ने। हिंगोली से शाहजी बोड़खे, नंदा, हनुमान, सारिका, सुरेखा, आरवी और समस्त बोड़खे परिवार। देवास से राजू अग्रवाल, शांति महाजन, राकेश, चीकू और सल्लू। देवास से ही मुरारी लाल वर्मा, मनीष और कमल निगम, हरिराम माली, विष्णु, कपिल, निरंजन, नागू सिंह कुमावत, राजकुमार और अभिषेक कुमावत। देवास से ही जाकिर हुसैन नजमी, नवीन वर्मा और विराट वर्मा। जरूर वरूर से बाबा साहेब वाड़ोदे और चंद्रप्रभा, प्रियंका, पंकज और आर्या। वन बघेरा से योगेश, आशा, नीरज, नीलेश और अंजलि। छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय, तुषार, डॉली, पूजा और प्रभा देवी। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला, विशाल और निशा। बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन, गायत्री, वैष्णवी, चंचल और अर्जुन गवनेकर। भोपाल से श्रवण सिंह गिन्नारे, रेखा, विनीता, गौरव, सौरभ और शेर सिंह। तो आप सभी की फरमाइश पर मयूर पंख फिल्म से ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है नवरंग फिल्म से। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका और सनप्रीत पंचोलिया, मोहाली पंजाब से बब्बन मल्होत्रा और ओम प्रकाश, गुमाश्ता नगर से अनिल कवचाले, नेहा फंड से सीमा, सबीहा, फजल, पूजा, सुषमा और स्मिता, गांधी चौक रोपड़ से हरदेव, मीका, बलविंदर, बिरक, जयतेग और उनके परिवार के सभी सदस्य, बठिंडा से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी, जे एस नायक, शोभा और समस्त डागला परिवार, मुखर्जी नगर इंदौर से जगदीश चौहान, ललिता, अंजू, विशाल, उर्वशी, प्रियंका, प्रियांशी, डॉक्टर मधु वर्मा, सुनीता, शारदा, किरण, रानू, विक्की, यशवंत, धर्मेंद्र, ऋतिक, लक्की, शौर्य, मुकु चौहान, महेंद्र, मालती, बसंती बाई, किशन लाल, राजा राम और ओमकार, सोमानी नगर इंदौर से बी आर नामदेव, राजश्री, रौनक, रोशनी, धीरज और सुवती, बरेली केंट रेलवे केबिन के पास से दिनेश कुमार, रागिनी और मुस्कान, सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, बेगम इशरत, नवासा, हुमेरा, सुमेरा, अबीहा, शाहीन, नाजिया, चीना, हमज़ा, अरहान, पूनम कुमारी और ममता रानी, पलसीकर कॉलोनी इंदौर से धनेश मटाई, राकेश, उमेश सहजवानी, हनी, जिम्मी, अमिता, दियाना, जियांश और उनके परिवार के सभी सदस्य। आप सभी की फरमाइश पर नवरंग फिल्म से ये गीत।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज़ों में अभी आपने सुना नवरंग फिल्म से ये गीत, जिसे लिखा था भरत व्यास ने। इस गीत के साथ ही मन भवन कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। दीजिए इजाज़त अपनी रेडियो दोस्त रूपाली चव्हाण को इस वादे के साथ कि आप हमें यूं ही खत लिखते रहेंगे। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज आप सुनेंगे राजस देशपांडे का शास्त्रीय गायन। तबला संगत कर रहे हैं विनय राठौर, हारमोनियम संगत है आलोक गंधर्व की। राजस देशपांडे आज पेश कर रहे हैं राग पूरिया कल्याण।

0: अभी आपने सुना राजेश देशपांडे का शास्त्रीय गायन, राग पूरिया कल्याण में। तबला संगत कर रहे थे विनय राठौर और हारमोनियम पर थे आलोक गंधर्व। शास्त्रीय संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: ढलती जाए रात।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन
2: कौन लाया, कौन लाया?
0: विविध भारती पर आ रहा है कौन।
3: कुछ ही बोलो में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

यह आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं विविध भारती का इंदौर केंद्र। इस समय रात्रि के 11:05 हुए हैं। हमारी ये सभा यहीं पर समाप्त होती है। सवेरे 5:53 पर इन मीटर्स पर आपसे पुनः भेंट होगी। अब अनुमति दीजिए। जय हिंद।